हम बोल रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला से और आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना। तो श्रोताओं बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा भजन।

ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो श्रोताओं, बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा भजन।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये है आप सभी का मन पसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना।

91.2 MHz पर ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला। तो श्रोताओं, आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे थे भक्ति संगीत आराधना अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो श्रोताओं आज के कार्यक्रम में बस इतना ही, तो आप सभी यूं ही बने रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

ज्ञानवनश मिला तो मेगा हर्ट्स पर ए तुम्हारा सारे दा अपना रेडियो गुंचन धर्मशाला कहने श्रोताओं मैं या तुम्हारा भी अपनी रेडियो दोस्त रुचिका हाजिर हुई हूँ कार्यक्रम लेकर ही माटी दी महक ता श्रोताओं कर देना अज दे कार्यक्रम दी शुरुआत इस प्यारे दे गीत दे कन्ने तुम्हारा सारे ये बनी रिया रेडियो गुंचन धर्मशाला ने गूंज अखे पंडी।

91.2 MHz पर ए तोहंदा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कने तोहा सारी कार्यक्रम सुना देना माटी दी महक।

ये तो हम अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कने श्रोताओ तो हाँ कार्यक्रम सुना देना माटी दी महक अपनी रेडियो दोस्त रुचिका कने तो हाँ सारे इन्हीं बनी रिया रेडियो गुंजन धर्मशाला ने गूंज अपने पंदी।

ये तुहां सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कने श्रोताओ इस वक्त तुहां सारे कार्यक्रम सुना दे ना माटी दी महक जी श्रोताओ ता बढ़ते ना कार्यक्रम च अगे कने सुन दे ना कार्यक्रम दा अगला गीत तुहां सारे इये बनी रिया रेडियो गुंजन धर्मशाला ने गूंज अपने पंदी।

बोला करते हैं ना रेडियो गुंजन धर्मशाला ते गणेश होताओ तो हाँ सारे ही इस वक्त कार्यक्रम सुना देना माटी दी महक जी श्रोताओ ता बढ़ देना कार्यक्रम जो अगे कने सुन देना कार्यक्रम दा प्यारा दिया अगला गीत तो हाँ सारे ये बनी दिया रेडियो गुंजन धर्मशाला ने गूंज अपने बंदी।

0: लो आ गई फायर ब्रिगेड।
1: चुप कर माँ, कितनी बार कहा है बिजली बचाओ,
2: अरे 5 मिनट पहले ही तो चलाया है, और ये क्या बिजली बचाओ करती रहती हो, बिल भर देंगे पापा।
1: माँ बात बिल की नहीं है, बात खपत की है। देखो बिजली कहाँ से आती है, थर्मल पावर से। जितना ज्यादा लोड बढ़ेगा उतना ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ेगा, और पता है इससे जो फ्लाई ऐश निकलती है वो हवा पानी और मिट्टी तीनों को प्रदूषित करती है।
0: हमें उससे क्या,
1: उपभोग कम तो मांग कम, पावर प्लांट से प्रोडक्शन का बोझ कम, समझे?
0: आना समझ गया।
1: मम्मा पानी बंद करो, ये भी बिजली से ही आता है।
3: सुविधाओं का इस्तेमाल समझदारी से करें, जरूरत के अनुसार ही पानी और बिजली खर्च करें। उत्पादन का बोझ होगा कम तो सुरक्षित पर्यावरण और हम।

0: देखिए आपकी खांसी तेज चल रही है, तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना होगा।
1: तुम तो यूं ही घबरा जाती हो।
2: अच्छा मेरी एग्जाम कब है?
1: एग्जाम?
2: हाँ, और हम दोनों का टीकाकरण कार्ड कहाँ है?
1: बेटा ये सब माँ को पता होगा ना।
2: पापा जब सब माँ को पता है तो आप उनकी बात मानो ना।
3: चलो अस्पताल चलते हैं।
4: इसे निमोनिया हुआ है, सही समय पर इसे यहाँ लाकर आपने बड़ी परेशानी होने से बचा लिया। अगर खांसी और जुकाम के साथ तेज सांस या पसली चलने लगे तो ये निमोनिया के लक्षण हैं। ऐसे में घरेलू इलाज नहीं, तुरंत अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं। सांस निमोनिया नहीं तो बचपन सही।
5: पार्थ याद रखना, जिंदगी कल से शुरू नहीं होती, क्योंकि वो कल कभी आता ही नहीं। जो तुम आज नहीं कर सकते उसे तुम कल भी कभी नहीं कर पाओगे। हम अक्सर कल के इंतजार में अपना आज खो देते हैं और फिर एक दिन बस अफसोस ही बाकी रह जाता है। अगर जीतना है तो आज से ही लड़ना सीखो, क्योंकि बहाने बनाने वालों के लिए मंजिल हमेशा दूर होती है। अपनी मेहनत को कल पर मत टालो, क्योंकि वक्त किसी का सगा नहीं होता। उठो और आज ही कुछ ऐसा करो कि तुम्हारा कल खुद बदल जाए।
6: क्या आप नहीं चाहते कि आपका व्यापार छूले आसमान की ऊंचाइयां? तो अपने व्यापार को कीजिए प्रचारित सही तरीके से सही जगह पर। अब विज्ञापन दीजिए और बन जाइए हर किसी की पहली पसंद। व्यापार को मिलेगी नई पहचान, ग्राहकों की संख्या में होगा जबरदस्त इजाफा और आपका मुनाफा बस पूछिए मत। हमारे साथ जुड़िए और देखिए फर्क खुद। अपने व्यापार को दें नई उड़ान। विज्ञापन देने के लिए आज ही संपर्क करें 9816473615 पर। आप बढ़ेंगे तभी तो देश बढ़ेगा।
7: हेलो सर, मैं फॉर्चुनेट लॉटरी से अनुज।
8: हाँ बोलिए।
7: बधाई हो सर, आपको 10 लाख की लॉटरी लगी है।
8: 10 लाख? सच्ची?
7: जी जी सर। एंड सर आपको क्लेम करने के लिए सिर्फ 10,000 की रजिस्ट्रेशन फी देनी होगी।
8: 10,000 की रजिस्ट्रेशन? क्यों?
7: सर ये वन टाइम प्रोसेसिंग फी है।
8: ओके।
7: इससे आपकी लॉटरी पे टैक्स भी नहीं लगेगा।
8: अच्छा।
7: सर मैं पेमेंट के लिंक भेज रहा हूँ, आप उस पे ट्रांसफर कर दीजिए।
8: अच्छा, ये लिंक?
7: यस सर।
9: मछली तो फंस गई।
10: और ये स्क्रीन का फोटो लो, हार्ड डिस्क, सारे हार्ड डिस्क उठाओ। याद रखिए, ऐसे फर्जी लॉटरी कॉल्स पे या उनसे आए मैसेजेस पे विश्वास ना करें, ना ही किसी अनजान लिंक पे क्लिक करें। तो सतर्क रहें, आइए मिलकर चीट्स को बीट करें।
11: चलो बच्चों खाना लग गया।
12: बट ये क्या माँ, ये तो हरी हरी सब्जियाँ है।
13: कुछ अच्छा नहीं बनाया।
11: अरे ये हरी सब्जी ही है सबसे अच्छी। हरी सब्जियाँ बच्चों

0: छह वर्ष तक के आयु के सभी बच्चे बने स्वस्थ और तंदुरुस्त।
1: सुनो, तुम पढ़ी लिखी हो?
2: हाँ बिल्कुल।
1: तो मेरे एक सवाल का जवाब दो।
2: पूछो।
1: रेडियो और अखबार में क्या फर्क है?
2: सिंपल, रेडियो में रोटी नहीं लपेट सकते।
1: वाटसन यूनिवर्सिटी से पढ़ी हो?
2: हाँ, तुम्हें कैसे पता?
1: बस गैस कर रहा था।
2: अरे गैस भी
3: कहाँ से आती?

0: छोड़ा, बिजली की रेल को छोड़ा, कल चांद और तारों में पहुंचेगा एटमी घोड़ा।
1: अरे भाई अरे भाई
0: अरे भाई, निकल के आ घर से, आ घर से, दुनिया की रौनक देख फिर से, देख ले फिर से।

हाँ जी अच्छा ख्याल है आपका दीदी, ये मुझको पता अपने बाप का, आपके बाप को चिट्ठी के जरिए बता दूंगा, अच्छा ख्याल है आपका।

सड़क टेढ़ी है देसी राग की, ई ई ई ई चल मोड़ ले टमटम, गले को गर्म कर ले, गले को गर्म कर ले, छोड़ अंग्रेजी में एक एटम, अंग्रेजी में एक एटम, अंग्रेजी में एक एटम।

0: आते हैं
1: मेरे जूते से
0: जूता पॉलिश करेगा जूता पॉलिश करेगा लेकिन तुम पर मरेगा चाहिए जमाना कहे हमको दिवा

0: हमको
1: जी मरो
0: डूबेगा नहीं तरेगा डूबेगा नहीं तरेगा प्यार से हम नहीं डरेगा चाहिए जमाना चाहे हमको दीवाना आज हमको मोहब्बत करेगा दुनिया से नहीं डरेगा चाहिए जमाना चाहे हमको दीवाना आज हमको मोहब्बत

हाय हाय ये निगाहें, हाय हाय हाय ये निगाहें, कर दे शराब जिसे चाहे मर।

0: लो आ गई फायर ब्रिगेड।
1: चुप कर माँ, कितनी बार कहा है बिजली बचाओ, अरे 5 मिनट पहले ही तो चलाया है, और ये क्या बिजली बचाओ करती रहती हो, बिल भर देंगे पापा। माँ बात बिल की नहीं है, बात खपत की है। देखो बिजली कहाँ से आती है, थर्मल पावर से। जितना ज्यादा लोड बढ़ेगा उतना ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ेगा, और पता है इससे जो फ्लाई ऐश निकलती है वो हवा पानी और मिट्टी तीनों को प्रदूषित करती है।
0: हमें उससे क्या,
1: उपभोग कम तो मांग कम, पावर प्लांट से प्रोडक्शन का बोझ कम, समझे?
0: आना समझ गया।
1: मम्मा पानी बंद करो, ये भी बिजली से ही आता है। सुविधाओं का इस्तेमाल समझदारी से करें, जरूरत के अनुसार ही पानी और बिजली खर्च करें। उत्पादन का बोझ होगा कम तो सुरक्षित पर्यावरण और हम।

0: देखिए इसकी खांसी तेज चल रही है, तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना होगा।
1: तुम तो यूं ही घबरा जाती हो।
2: अच्छा मेरी एग्जाम कब है?
1: एग्जाम?
2: हाँ, और हम दोनों का टीकाकरण कार्ड कहाँ है?
1: बेटा ये सब माँ को पता होगा ना।
2: पापा जब सब माँ को पता है तो आप उनकी बात मानो ना।
1: चलो अस्पताल चलते हैं।
3: इसे निमोनिया हुआ है, सही समय पर इसे यहाँ लाकर आपने बड़ी परेशानी होने से बचा लिया। अगर खांसी और जुकाम के साथ तेज सांस या पसली चलने लगे तो ये निमोनिया के लक्षण हैं। ऐसे में घरेलू इलाज नहीं, तुरंत अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं। सांस निमोनिया नहीं तो बचपन सही।
4: पार्थ याद रखना, जिंदगी कल से शुरू नहीं होती, क्योंकि वो कल कभी आता ही नहीं। जो तुम आज नहीं कर सकते उसे तुम कल भी कभी नहीं कर पाओगे। हम अक्सर कल के इंतजार में अपना आज खो देते हैं और फिर एक दिन बस अफसोस ही बाकी रह जाता है। अगर जीतना है तो आज से ही लड़ना सीखो, क्योंकि बहाने बनाने वालों के लिए मंजिल हमेशा दूर होती है। अपनी मेहनत को कल पर मत टालो, क्योंकि वक्त किसी का सगा नहीं होता। उठो और आज ही कुछ ऐसा करो कि तुम्हारा कल खुद बदल जाए।
5: क्या आप नहीं चाहते कि आपका व्यापार छूले आसमान की ऊंचाइयां? तो अपने व्यापार को कीजिए प्रचारित सही तरीके से सही जगह पर। अब विज्ञापन दीजिए और बन जाइए हर किसी की पहली पसंद। व्यापार को मिलेगी नई पहचान, ग्राहकों की संख्या में होगा जबरदस्त इजाफा और आपका मुनाफा बस पूछिए मत। हमारे साथ जुड़िए और देखिए फर्क खुद। अपने व्यापार को दें नई उड़ान। विज्ञापन देने के लिए आज ही संपर्क करें 9816473615 पर। आप बढ़ेंगे तभी तो देश बढ़ेगा।
6: हेलो सर, सर मैं फॉर्चुनेट लॉटरी से अनुज।
7: हाँ बोलिए।
6: बधाई हो सर, आपको 10 लाख की लॉटरी लगी है।
7: 10 लाख? सच्ची?
6: जी जी सर। एंड सर आपको क्लेम करने के लिए सिर्फ 10,000 की रजिस्ट्रेशन फी देनी होगी।
7: 10,000 की रजिस्ट्रेशन? क्यों?
6: सर ये वन टाइम प्रोसेसिंग फी है।
7: ओके।
6: इससे आपकी लॉटरी पे टैक्स भी नहीं लगेगा।
7: अच्छा
6: सर, मैं पेमेंट के लिंक भेज रहा हूँ, आप उस पे ट्रांसफर कर दीजिए।
7: अच्छा ये लिंक?
6: यस सर।
7: ओके।
8: मछली तो फंस गई।
9: शिंगे
10: और ये स्क्रीन का फोटो लो। हार्ड डिस्क, सारे हार्ड डिस्क उठाओ। याद रखिए, ऐसे फर्जी लॉटरी कॉल्स पे या उनसे आए मैसेजेस पे विश्वास ना करें, ना ही किसी अनजान लिंक पे क्लिक करें। तो सतर्क रहें, आइए मिलकर चीट्स को बीट करें।
11: चलो बच्चों खाना लग गया।
12: पर ये क्या माँ, ये तो हरी हरी सब्जियाँ है।
13: कुछ अच्छा नहीं बनाया।
14: अरे ये हरी सब्जी ही है सबसे अच्छी। हरी सब्जियाँ बच्चों खाओ।

0: विटामिन्स और मिनरल्स से ये सब है भरे। 6 वर्ष तक के आयु के सभी बच्चे बने स्वस्थ और तंदुरुस्त।
1: सुनो, तुम पढ़ी लिखी हो?
2: हाँ बिल्कुल।
1: तो मेरे एक सवाल का जवाब दो।
2: पूछो।
1: रेडियो और अखबार में क्या फर्क है?
2: सिंपल, रेडियो में रोटी नहीं लपेट सकते।
1: वाटसन यूनिवर्सिटी से पढ़ी हो?
2: हाँ, तुम्हें कैसे पता?
1: बस गेस कर रहा था।
2: तुम्हारे गेस भी
3: कौन है? ये लोग कहाँ से आते हैं?

जी श्रोताओं, हम पहुंच गए हैं स्टूडियो इस झमझमाती हुई बारिश में और बज गए हैं 9 सुबह के। तो आपको पता है 9 से लेकर के 11 बजे तक हम रहते हैं आपके साथ और कार्यक्रम होता है गुड मॉर्निंग धर्मशाला। और ये कार्यक्रम सुनते हैं आप अपने पसंदीदा चैनल 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला।

और बाहर तो रिमझिम रिमझिम बरसात लगी ही हुई है, कभी तेज हो जा रही है, कभी कम हो जा रही है। और आज है 6 जुलाई, यानी वीकेंड आपका ख़त्म हो गया है। वीकेंड से एक रात पहले भी मैं आपसे मिली थी, यानी कि सैटरडे को, परसों शाम की सभा में, संध्याकालीन सभा में हमारी हुई थी मुलाकात मेरे प्यारे दोस्त माइक के ज़रिए। हम पहुंचे थे आप सभी के रेडियो सेट्स पर, और अब जो हम सारी एनर्जी बटोर करके ले आए हैं आज के इस कार्यक्रम के लिए भी, तो आज सोमवार को भी मैं हूँ अभी आपके साथ। तो ये है हमारी प्रातःकालीन सभा। चलिए मौसम की बात कर लें, बात क्या करनी है। आप तो देख ही रहे हैं कि बाहर रिमझिम रिमझिम बरसात चली ही हुई है, और जैसा कि मौसम का अलर्ट बताया जा रहा था तो उस तरह से हमारा यहाँ पे मौसम बना हुआ है। तो फिर भी औपचारिकता के लिए हम बात कर ही लेते हैं। आज धर्मशाला में बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। संभावना नहीं है जी, बारिशें मतलब बौछारें पड़ रही हैं। और ये तो ना रात को ही शुरू हो गई थी, थोड़ी थोड़ी सी जब शुरू हुई ना तो मुझे लगा कि अब, मैंने आपसे पिछले कार्यक्रम में बताया था ना कि मेरे जो कमरे का लेंटर है वो हल्का सा जरा जगह जगह से टपक रहा था, मतलब एक ही जगह से टपक रहा था टप टप करके, तो मुझे ऐसा लगा कि उसका थोड़ा सा अरेंजमेंट कर देना चाहिए। तो मैंने उस पर थोड़ी सी हल्की सी तिरपाल डाली, और वो डालने के लिए मैं कल चली गई थी अपनी छत पर। और अगर नहीं गई होती उस वक्त, मैं आलस कर गई होती कि नहीं कोई बात नहीं, ज़्यादा बारिश तो नहीं आएगी, सुबह देखेंगे या जब आँख खुलेगी तब देखेंगे, लेकिन देखो वो अरेंजमेंट मैंने कर लिया तो आज जो झमाझम बारिश हुई है ना उससे हम बच गए, पानी अंदर नहीं आया। और इसके बारे में मैं कार्यक्रम में आगे भी बात करूंगी, और मौसम के बारे में भी और बातें करेंगे हम। फिलहाल चलते हैं एक गीत की ओर। तो जैसे कि हम कोई भी कार्य शुरू करते हैं तो पहले ईश्वर का नाम ले लेना चाहिए, तो ये भी गीत कुछ इसी तरह का है, लेकिन बहुत ज़्यादा मैं यूँ कहूँ कि आध्यात्मिक रूप में ही हम चले जाएंगे वैसा तो नहीं है, लेकिन हाँ ये हमारे जीवन की सच्चाई को बयान करता हुआ गीत है कि सुख के तो सब साथी होते हैं, लेकिन जब दुख पड़ता है ना तो कोई नहीं होता, अपना अंतर्मन ही हमारे साथ होता है।

मोहम्मद रफ़ी को आपने सुना गोपी फिल्म में, सुख के सब साथी दुख में न कोई, और कितना अच्छा मैसेज सुबह सुबह हमने सुन लिया है। और जीवन की सच्चाई को वैसे तो हम हर पल जानते ही हैं, लेकिन कई बार ना हम अपने ईगोज में भूल जाते हैं कि सच क्या है, हम इस दुनिया में किस लिए आए हैं, हमें किस तरह के कार्य करने हैं और क्या यहाँ पर कमा के जाना है। भाई आए हैं तो जीना भी ज़रूरी है, कमाना भी ज़रूरी है, परंतु ऐसा नहीं है कि हम अपने स्वार्थ में बाकी सबको भूल ही जाएं। और वैसे ये शिकायत ना हर किसी को, हर किसी के साथ होती है कि भाई सुख में तो सब साथ देते हैं, लेकिन दुख में लोग आनाकानी करने लग जाते हैं, इधर उधर बगले झांकने लग जाते हैं कि भाई अब इसके साथ बात की जाए या ना की जाए। लेकिन जो सच्चे रिश्ते होते हैं ना, वो कभी भी ऐसा नहीं करते हैं। और जब मैंने ये कहा कि हर किसी को ही एक दूसरे से ऐसी शिकायत होती है, तो इसका मतलब तो ये है ना कि हर को ही स्वार्थी हो गया ना, कि सबको अगर एक ही जैसी शिकायत है तो कोई भी ईमानदार नहीं है, है ना, किसी भी रिश्ते में। तो कोशिश कीजिए, पहले खुद पर अप्लाई कर लीजिए चीज़ें, और फिर तब हम शिकायत करें कि भैया समाज ऐसा है या वैसा है, या ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है। देखिए, जहाँ पर भी कुछ भी गलत हो रहा है ना, अब हम इसको थोड़ा सा अलग विषय पर लेकर के चले जा रहे हैं कि जहाँ पर भी कुछ भी गलत हो रहा है और आप वैसा नहीं करते हैं, तो आवाज़ उठाना भी ज़रूरी है। अगर आप देख करके चुप रह जाते हैं तो इसका मतलब कि आप भी उसी पार्टी में शामिल हैं। अब इस मेरी इस बात को किसी भी संदर्भ में आप ले सकते हैं, और आज तो हम खास बात करने वाले हैं अपने कार्यक्रम में, और वो खास क्या होने वाली है ये तो अब आप कार्यक्रम में बने रहेंगे हमारे साथ आखिर तक। वैसे तो थोड़ी देर में ही आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन आखिर तक बने रहेंगे तो कार्यक्रम का रोमांच और भी होता है, और हो सकता है कि आप हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा भी बन जाएं। तो विषय सुनने के बाद अगर आपको लगे कि आप कुछ कहना चाहते हैं इस विषय पर, तो हमें 7018117091 पर फ़ोन कॉल ज़रूर कीजिएगा। एक बार फिर से नंबर बता देती हूँ, 7018117091, और यह है हमारे स्टूडियो का लाइव फोन नंबर। रेडियो गुंजन धर्मशाला आपको ये एक अपॉर्चुनिटी देता है, हमारा एक चंक होता है, कुछ 10 बजे के बाद आप कॉल कर सकते हैं, तब तक हमारा विषय भी आप लोगों तक पहुंच ही जाएगा और आपको पता लग जाएगा कि हम किस पर आज बात करने वाले हैं। अगर आपकी उस विषय पर कोई कमांड हो, कुछ आप सोचते हो, कुछ आप मैसेज जनता तक पहुँचाना चाहते हो, तो ज़रूर ज़रूर हमें कॉल कीजिएगा।

क्षमा किसी का श्रोता हूँ, मुझे लगा कि ये गीत है लेकिन इसमें बोल तो है ही नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, हम आपको सुनवाते हैं एक ये प्यारा सा गीत, सितारा फिल्म का गीत है।

0: खूबसूरत हो ये गीत, और इसी तरह के गीत हम कार्यक्रम में आगे भी सुनेंगे, लेकिन अब समय हो गया है प्रादेशिक समाचारों का।
1: समाचार सुनिए, पहले मुख्य समाचार। प्रदेश भाजपा कोर समिति की महत्वपूर्ण बैठक कल शिमला में, प्रदेश की राजनीतिक संगठनात्मक और चुनावी मुद्दों पर होगा मंथन। आयुष मंत्री यादविंद्र गोमा ने कहा, प्रदेश सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र व संतुलित विकास के लिए प्रतिबद्ध। भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आज 125वीं जयंती। प्रधानमंत्री ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को बताया साहस, राष्ट्रवाद व निस्वार्थ सेवा का शाश्वत प्रतीक। सिरमौर जिला सीड प्रोडक्शन कार्यक्रम के तहत अन्य जिलों को भी उपलब्ध करवा रहा उच्च गुणवत्ता वाला गेहूं का बीज। और प्रदेश में मॉनसून आज से फिर होगा सक्रिय, 4 जिलों में भारी से बहुत भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश भाजपा कोर समिति की महत्वपूर्ण बैठक कल शिमला स्थित पार्टी कार्यालय दीप कमल में आयोजित होगी। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में प्रदेश की राजनीतिक संगठनात्मक और चुनावी मुद्दों पर मंथन होगा। इसके अलावा बैठक में बूथ सशक्तिकरण, आगामी जनसंपर्क अभियानों और आगामी चुनाव की तैयारियों पर भी मंथन किया जाएगा। कोर समिति की यह बैठक आगामी राजनीतिक व संगठनात्मक दिशा तय करने की दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जा रही है। बैठक में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल, शांता कुमार, प्रदेश संगठन महामंत्री सिद्धार्थन, सांसद व पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता भाग लेंगे। इसके अलावा स्थायी आमंत्रित सदस्यों के रूप में पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदान सिंह, प्रदेश प्रभारी श्रीकांत शर्मा व सह प्रभारी संजय टंडन भी मौजूद रहेंगे। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा है कि प्रदेश में आयोजित होने वाले पारंपरिक मेले और उत्सव राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वे कल चंबा जिले के भटियात उपमंडल के तहत चलामा में छिंज मेले के दौरान बोल रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि मेलों व त्योहारों को संरक्षित करना समाज के हर व्यक्ति का दायित्व है। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजनों से समाज में आपसी भाईचारा, सौहार्द व सामाजिक एकता को मजबूत करने में मदद मिलती है। आयुष मंत्री यादविंद्र गोमा ने कहा है कि प्रदेश सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र व संतुलित विकास के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। जयसिंहपुर के जलाड़ी में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि विकास कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जा रहा है और जनहित से जुड़े हर मुद्दे को गंभीरता के साथ सरकार के समक्ष रखा जाएगा। जयसिंहपुर के जलाड़ी और नाहलना में जनसमस्या सुनने के बाद उन्होंने कहा कि जल्द ही यहाँ पर डायलिसिस और खेल मैदान की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। राष्ट्र आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। संस्कृति मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल सरकार के साथ मिलकर इस अवसर पर कोलकाता में कार्यक्रम आयोजित किया है। यह कार्यक्रम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में संस्कृति मंत्रालय द्वारा पिछले वर्ष घोषित 2 वर्ष के आधिकारिक समारोहों के तहत होगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। इस दौरान केंद्रीय संस्कृति मंत्री और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे। इसके बाद भूमि पूजन होगा और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125 फुट ऊंची प्रतिमा की आधारशिला रखी जाएगी। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि उन्हें साहस, राष्ट्रवाद और निस्वार्थ सेवा का शाश्वत प्रतीक बताया है। प्रधानमंत्री ने एक आलेख में कहा कि डॉक्टर मुखर्जी का जीवन अखंड भारत के लिए उनकी अटल प्रतिबद्धता का प्रमाण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2019 में अनुच्छेद 370 और 35A निरस्त किए जाना उनके बलिदान के प्रति सर्वाधिक समुचित श्रद्धांजलि थी। प्रधानमंत्री ने देश की औद्योगिक प्रगति में डॉक्टर मुखर्जी के योगदान का भी जिक्र किया। सिरमौर जिला में कृषि विभाग द्वारा सीड प्रोडक्शन कार्यक्रम के तहत जिला के किसानों से गेहूं की खरीद कर रहा है। खास बात यह है कि जिला अपनी जरूरत पूरी करने के बाद अब प्रदेश के अन्य जिलों को भी उच्च गुणवत्ता वाला गेहूं का बीज उपलब्ध करवा रहा है। एक रिपोर्ट।
2: जिला में बीज के लिए 6000 क्विंटल गेहूं बीज की डिमांड रहती है। जिले की आवश्यकता पूरी करने के बाद शेष बीज की आपूर्ति हमीरपुर, कुल्लू, शिमला और मंडी जिलों में की जा रही है। अभी तक जिला में किसानों से करीब 11,000 क्विंटल गेहूं खरीदा जा चुका है। विभाग द्वारा करीब 350 किसानों से 3250 रुपए प्रति क्विंटल के निर्धारित मूल्य पर गेहूं की खरीद की गई है। जिला में गेहूं की मशीनों से ग्रेडिंग की जा रही है और ग्रेडिंग के बाद जो मोटा और उच्च गुणवत्ता वाला ए ग्रेड का दाना बचता है उसे कृषि विभाग द्वारा बीज के रूप में खरीदा जा रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए सिरमौर से सतीश शर्मा।
1: ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR Shimla News को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in, DTS सेवा और न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी सुने जा सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह में भाग लेंगे। मंत्रालय ने बताया कि सहकार से समृद्धि लक्ष्य के तहत इस समारोह का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री कई प्रमुख परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। इनमें 232 अनाज भंडारण गोदाम का उद्घाटन, सहकार वन तथा टिश्यू कल्चर केंद्र का भूमि पूजन, राष्ट्रीय सहकारिता डेटाबेस के तीसरे चरण की शुरुआत और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के दुग्ध आपूर्ति समीक्षा डैशबोर्ड पोर्टल का शुभारंभ शामिल है। इस दौरान वे अन्य पहलों का भी शुभारंभ करेंगे। राजधानी शिमला अपनी प्राकृतिक सुंदरता व मनमोहक पर्वतीय दृश्यों के लिए विश्वभर में प्रसिद्ध है। यहाँ आने

0: सैर करते हुए मनोरम वातावरण का आनंद ले सकते हैं। लगभग 8 हेक्टेयर क्षेत्र में विकसित इस परियोजना में 2.5 किलोमीटर लंबा नेचर ट्रेल तैयार किया गया है, जिसका उद्देश्य पर्यावरण जागरूकता बढ़ाना, प्रकृति के प्रति रुचि विकसित करना, जैव विविधता संरक्षण को प्रोत्साहन करना व सतत पर्यटन को बढ़ावा देना है। आकाशवाणी समाचार के लिए शिमला से योगराज शर्मा।
1: प्रदेश में आज से मॉनसून एक बार फिर रफ्तार पकड़ सकता है। मौसम विभाग ने आगामी 2 दिनों तक राज्य के ऊना, कांगड़ा, सिरमौर व सोलन जिले में भारी से बहुत भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि अन्य शेष जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम के अलर्ट को देखते हुए विभाग ने लोगों से नदी नालों, भूस्खलन संभावित क्षेत्रों और ऊंचाई वाले इलाकों में न जाने की सलाह दी है। हालांकि पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में मॉनसून की रफ्तार धीमी रही और कांगड़ा में सर्वाधिक 84.2 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। और अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर। मौसम से जुड़ी खबर को आज अधिकतर अखबारों ने अपनी प्रमुख खबर बनाया है। हिमाचल दस्तक की सुर्खी है, हिमाचल में 11 जुलाई तक भारी बारिश का ऑरेंज व येलो अलर्ट। अमर उजाला व दैनिक जागरण के एक जैसे शब्द है, चलती बस पर पहाड़ी से गिरा पत्थर, एक की मौत, 4 घायल, आज भी बारिश का अलर्ट। दैनिक भास्कर लिखता है, मॉनसून सुस्त, उमस के साथ 7 डिग्री तक उछला पारा, आज व कल भारी बारिश का अलर्ट। दिव्य हिमाचल बकौल मुख्यमंत्री लिखता है, तकनीकी शैक्षणिक संस्थानों में नई खोज करना सीखेंगे छात्र। पंजाब केसरी की एक खबर है, आपदा प्रभावित पशुपालकों के मुआवजे में हिमाचल सरकार ने की बढ़ोतरी। इस माह एक साथ मिलेगा 2 माह का सरसों तेल, शीर्षक से हिमाचल दस्तक लिखता है, प्रदेश के लाखों राशन कार्ड धारकों को मिलेगी बड़ी राहत। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश भाजपा कोर समिति की महत्वपूर्ण बैठक कल शिमला में, प्रदेश की राजनीतिक, संगठनात्मक और चुनावी मुद्दों पर होगा मंथन। आयुष मंत्री यादविंद्र गोमा ने कहा, प्रदेश सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र व संतुलित विकास के लिए प्रतिबद्ध। भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आज 125वीं जयंती, प्रधानमंत्री ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को बताया साहस, राष्ट्रवाद व निस्वार्थ सेवा का शाश्वत प्रतीक। सिरमौर जिला सीड प्रोडक्शन कार्यक्रम के तहत अन्य जिलों को भी उपलब्ध करवा रहा उच्च गुणवत्ता वाला गेहूं का बीज। और प्रदेश में मॉनसून आज से फिर होगा सक्रिय, 4 जिलों में भारी से बहुत भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 11 बजे। नमस्कार।

जी श्रोताओं, प्रादेशिक समाचारों में आप लोगों ने बहुत सारी जानकारियां जो हैं वो पाली होंगी और ये प्रादेशिक समाचार भी हमारे इसी कार्यक्रम का एक हिस्सा है, गुड मॉर्निंग धर्मशाला का, जिसे आप सुना करते हैं 91.2 एफएम रेडियो गुंजन धर्मशाला से, जो है आपका पसंदीदा रेडियो चैनल। और 9:30 हो चुके हैं, जैसा कि हमने वादा किया था कि हम आपसे आएंगे बातें करने, लेकिन फिलहाल अपनी बातों को थोड़ा सा विराम देंगे क्योंकि सुनवा रहे हैं आपको एक खूबसूरत सा गीत। उपकार फिल्म का ये गीत है महेंद्र कपूर की आवाज। आवाज सुन रहे हैं आप इस

कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला आप सुन रहे हैं 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला से, और मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। आप समझ गए होंगे इस गीत को सुन करके कि आज हम किस विषय पर बात करने वाले हैं आप सभी से। और आपको ये भी बता दूं कि आप हमें फेसबुक पेज से भी लाइव देख रहे हैं। तो भाई हम पहुंच गए हैं आप सभी के गांवों में, आपके रेडियो सेट्स में, आपके मोबाइल्स या रेडियो सेट्स के जरिए, यानी कि जहाँ से भी आप हमें सुन पा रहे हैं, आप समझ लीजिए कि हम आप सभी के गांवों में पहुंच चुके हैं। और आज बात होगी हमारे गांवों के बारे में। जी, आज अपनी बातों और गीतों के माध्यम से हम करेंगे आपके साथ गांवों की बातें। बेशक आप शहर में बैठ करके भी हमें सुन सकते हैं, हमने ये नहीं कहा है कि शहर के लोग हमें नहीं सुन सकते हैं, परंतु अपने पुराने दिन याद कीजिएगा जब हमारे सिर्फ गांव ही होते थे। ये शहरीकरण तो फिर बाद में शुरू हुआ। आजकल की जंजी को तो शायद याद भी नहीं होगा कि मतलब गांव का महत्व तो पता ही नहीं होगा उन्हें, है ना? केवल नाम ही सुना है उन्होंने गांव। अब गांव होता क्या है, क्या क्या गांव में होता है, और वैसे तो सिलेबस बुक्स में पढ़ाया जाता है कि हमें जो भी कुछ खाने को मिलता है वो हमारे गांवों से ही आता है। वैसे भी बेसिक नेसेसिटी क्या होती है, हम लोग शुरू से ही सुनते चले आ रहे हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। अब मकान को तो हम ले गए अपना शहर में, पीछे छूट गया हमारा गांव। लेकिन अब गांवों की भी ना शहरीकरणों की बात हो रही है। आज हम मना रहे हैं विश्व ग्रामीण विकास दिवस। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये दिवस मनाया जा रहा है और ग्रामीण मतलब कि जो गांव हैं हमारे, उनकी उनके विकास में ऐसा नहीं हम कह रहे हैं कि उनका विकास नहीं होना चाहिए, उनका विकास ज़रूर होना चाहिए, लेकिन किस स्तर तक होना चाहिए, क्या उन्हें भी शहर बना दिया जाना चाहिए। आज सभी बातों पर बात होने वाली है। और आप लोग अगर हमें सुन रहे हैं, अगर हमें यहाँ से फेसबुक पेज से देख रहे हैं और आप बात करना चाहते हैं इस विषय पर, कुछ कहना चाहते हैं अपने गांव के बारे में, आपका गांव कैसा है, या आप शहरों में चले गए हैं और आप अपने गांव को याद करते हैं, दिल में है अभी भी अपने गांव के लिए जगह, ज़रूर बात कीजिएगा हमसे। फ़ोन नंबर आपको बता दिया है हमने, फिर से एक बार बता देते हैं, 7018117091। अंग्रेजी वालों के लिए 7018117091 पर हमें फ़ोन करना ना भूलिएगा। लेकिन पहले थोड़ा सा सुन लीजिए कार्यक्रम में कि आगे बात किस विषय पर, मतलब किस तरह से हो रही है, चल रही है, आपको कहना है, क्या बातें रखनी है, अपने मोबाइल के थ्रू या फिर हमारे इस फ़ोन नंबर के थ्रू। मैं जंजी की बात कर रही थी, हमारी न्यू जनरेशन की बात कर रही थी, क्या इस बात को अगली बार के लिए टाल रही हूँ। एक और गीत सुन लेते हैं। आज सारे गीत जो हैं हमारे वो गांवों के परिवेश से ही जुड़े हुए हैं और मुझे लगता है कि आप लोग भी उससे ज़रूर कनेक्ट करेंगे।

पिंजरे वाली मुनिया। अच्छा लगा आपको गीत? तीसरी कसम फिल्म का ये गीत था मन्नाडे और साथियों की आवाजों में। ऊपर से देखने में ये गाना बेहद चुलबुला, मौज मस्ती भरा और पारंपरिक ग्रामीण मेले का हिस्सा लगता है, लेकिन इसके पीछे एक औरत की बेबसी, उसका दर्द, ग्रामीण जीवन की सामाजिक मर्यादाओं का ताना बाना छिपा है। गाने में जो मुनिया शब्द का इस्तेमाल हुआ है वो किसी चिड़िया या बच्ची के लिए नहीं, बल्कि फिल्म के मुख्य किरदार हीराबाई वहीदा रहमान द्वारा अभिनीत किया गया था। ये किरदार उसके लिए किया गया है। हीराबाई नौटंकी में नाचने गाने वाली एक थिएटर कलाकार हैं और वो लड़की जहाँ भी जाती है उसे लोग सिर्फ एक नाचने वाली मनोरंजन की वस्तु समझते थे और समाज की बंदिशें, नौटंकी, कंपनी के ठेकेदार और पुरुषों की वासना भरी निगाहें उसके लिए एक अदृश्य पिंजरा थी। वो चाहकर भी आम आज़ाद लड़की की तरह सम्मानजनक जीवन जी नहीं सकती थी और ग्रामीण हाट बाजार और पुरुषों का नज़रिया भी उस समय कुछ ऐसा ही रहता था। पहले के गांवों की अगर हम बात करें तो खैर आजकल तो गांवों का रूप स्वरूप बहुत बदल चुका है।

तो दोस्तों आज का दिन बेहद खास है। आज हम बात करेंगे उस माटी की जहां देश का दिल धड़कता है, यानी कि हमारे गांव। तो गांव की खासियत क्या है? वो सुबह की ताज़ी हवा, नीम के पेड़ के नीचे पंचायत और पनघट की बातें, शहर की भाग दौड़ से दूर जहां हर कोई एक दूसरे को नाम से जानता है। शहरों में होता है ऐसा? तो आज हमारे पास सारे मिट्टी से जुड़े हुए गीत हैं। और देखिए, जैसा कि हमने कहा कि हम पहुंच गए हैं आपके गांव में, और इसी तरह से इंतज़ार रहता है था ना लोगों को पहले कि कोई तो आए हमारे घर में। अब शायद ऐसा सोचा जाता है कि कोई ना ही आए तो अच्छा है, लेकिन नहीं, कई लोग अभी भी ऐसे हैं जो चाहते हैं हमारे घर में गेस्ट आए। तो आज आपके गाँव में गेस्ट पधार चुके हैं जिनका आपको इंतज़ार था।

तो दोस्तों, गांव सिर्फ ज़मीन का टुकड़ा नहीं, एक एहसास है। हमारे रीति रिवाज, हमारी परंपराएं और वो तीज त्यौहार जो सिर्फ गांव में ही अपनी असली रंगत में दिखते हैं। होली पर वो असली गुलाल और दीवार पर कुम्हार की चाक से बने वो दिए, ये कल्चरल फेस्टिवल्स तो हमारी असली पहचान है।

हाँ, हमारे गांव कोई आएगा प्रोफेसर फिल्म का ये गीत सुना अभी आपने। आशा भोसले और लता मंगेशकर की आवाज़ों में इन दोनों बहनों ने क्या प्यारा गीत गाया है ना।

आज है विश्व ग्रामीण विकास दिवस। सरकार जो है वो बहुत सारी योजनाएं लाती है गांवों के विकास के लिए कि गांवों को ऐसा बनाया जाना चाहिए, वैसा बनाया जाना चाहिए। लेकिन हाँ, पहले शहरों की तरफ अगर एक नज़र डाल ली जाए कि हमारे शहर जो हैं वो कहाँ तक सुरक्षित हैं, कंक्रीट के जंगल जो हैं वो बनते चले जा रहे हैं। खैर, विकास की जब बात होती है तो उसमें कोई रुकावट होनी नहीं चाहिए। विकास तो विकास ही है, चाहे वो किसी भी चीज़ का हो। और हमारा जो देश है वो तो पूरा का पूरा खुद ही एक विकासशील देश है। और मैं थोड़ी देर पहले ये बात कर रही थी कि क्या हमारी जो न्यू जनरेशन है, ये जनजी जो हैं, इन्हें पता है गांव के बारे में या केवल नाम सुना है गांव का?

0: से खुद कहते हैं कभी कि इस बार छुट्टियों में हमें गांव में ले चलो? चाहे देखो, अगर हम शहरों में भी रहते हैं ना, तो हमारे अपने गांव होते ही हैं। बातों बातों में बच्चे एक दूसरे को बताते हैं कि हमारा वो गांव है, हम छुट्टियों में वहां जाते हैं, या कभी कभार जब कोई पार्टी फंक्शन होता है तो हम वहां पर जाते हैं, मौज मस्ती करते हैं। या फिर कई तो बच्चे ऐसे हैं जिनको पता तो है हमारा गाँव है, लेकिन वो जाते कभी नहीं, खुद कभी कहते भी नहीं, क्योंकि उन्हें कहीं और जाना होता है घूमने के लिए। जिज्ञासा आप खुद अपने बच्चों में नहीं जगाएंगे, उन्हें अपने गाँव की बातें नहीं बताएंगे, तो उनमें ये भावना आएगी ही नहीं कभी भी कि हम जाकर के गाँव का परिवेश देखें कि कैसा होता है। अगर आप बहुत बिजी भी हैं, नहीं समय निकाल पा रहे हैं, तो भी बच्चे अगर बड़े हो गए हैं तो उन्हें खुद ही भेज दीजिए, आगे किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दीजिए, कोई ना कोई उन्हें रिसीव कर लेगा वहाँ। और गाँव में तो लोग एक दूसरे के साथ ऐसे मिलजुल करके रहते हैं ना कि शहरों में वो बात नहीं होती है, पता ही नहीं होता है कि साथ वाला दरवाज़ा किसका है, कौन वहाँ पर रहता है, जब तक कि उसके घर के बाहर नेम प्लेट ना लगी हो। तो गाँव की आबो हवा और शहरों की हवा में क्या फ़र्क है, ये तो आप सभी जानते ही हैं। शहरों में सुबह अलार्म से होती है, गांव में पक्षियों की चहचहाहट से। शहरों में प्रदूषण का धुआं है और हमारे गांव में शुद्ध ताज़ी हवा और खुले आसमान के नीचे सुकून की नींद। यहां रिश्तों में मिलावट नहीं है, और ना ही हवा में, ना पानी में। ऐसा ही एक गीत हम आपके समक्ष ला रहे हैं, जिसको कि सुनने में तो अच्छा लगेगा ही आपको, लेकिन अगर आप उसे देखेंगे, सुनने के बाद देखेंगे ज़रूर, ठीक है, देखिएगा, कहीं पर भी देखिएगा, अपने मोबाइल पे, यूट्यूब पे, तो आप पाएंगे कि गांव के परिवेश की वो बैलगाड़ी जिस पर कि वो गीत फिल्माया गया है बैठ करके, और बात हमारी हवा पानी की हो रही है, मन को छू जाने वाला गीत है। फिल्म का नाम है अनोखी रात और गीत गाया है मुकेश ने।
1: सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ।

गांव के लोग हमेशा से प्रकृति के सबसे करीब रहे हैं। गाने की पहली लाइन ही कहती है, ताल यानी तालाब मिले नदी के जल में। गांव का पूरा जीवन पानी के स्रोतों जैसे तालाब, कुएं, बावड़ी, बाउली और नदियों के इर्द गिर्द घूमता है। ये पंक्ति ग्रामीण भारत की जल संस्कृति और पर्यावरण के प्रति उनके सम्मान को दर्शाती है।

गांव का समाज अकेले रहने में विश्वास नहीं रखता, जैसे कि तालाब नदी में और नदी सागर में मिलकर के अपना वजूद बड़ा करती है, ठीक वैसे ही गांव के लोग आपसी सुख दुख त्योहारों और खेती बाड़ी में एक दूसरे से में समाहित रहते हैं। शहरों की तरह वहाँ मैं इंडिविजुअलिज्म नहीं है, बल्कि हम यानी कि कम्युनिटी की भावना होती है।

ओहरे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, और सागर मिले कौन से जल में, कोई जाने ना मुकेश की आवाज़ में। अभी आपने सुना अनोखी रात फिल्म का ये गीत। कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला आप सभी सुन रहे हैं 91.2 एफएम रेडियो गुंजन धर्मशाला से। तो गांव का इंसान बहुत कम में भी संतुष्ट रहता है। अनजानी नगरिया पर जीवन के गीत है ये। ग्रामीण मानस के अटूट विश्वास और ईश्वर प्रकृति के प्रति उनके समर्पण को दिखाता है, जहां वो कठिन परिस्थितियों में भी उम्मीद को नहीं खोता।

तो श्रोताओं, शहरों में लोग एक ही बिल्डिंग में रहकर भी अजनबी होते हैं, जैसा मैंने पहले भी कहा, लेकिन गांव में अगर किसी एक के घर में खुशी हो तो पूरा गांव नाचता है।

सब लोग एक दूसरे की खुशियों में शामिल होते हैं और अगर दुख हो तो पूरा गांव कंधे से कंधा मिलाकर के खड़ा हो जाता है। और यही तो असलियत है जो शायद कंक्रीट के जंगलों में कहीं खो गई है।

अब आती है एक बहुत बड़े सवाल पर कि आज विकास के नाम पर गांवों का शहरीकरण हो रहा है, चारों तरफ पक्की सड़कें, मॉल और फैक्ट्रियां आ रही हैं, लेकिन सोचिए अगर सारे गांव शहर बन गए तो हमारी माटी की जो महक है वो कहाँ जाएगी।

मतलब अगर मैं यूं कहूं कि हमारी शशि का जो कार्यक्रम है वो कहां जाएगा, वो शशि जो कार्यक्रम करती है यहाँ से माटी की महक, और उसमें आप सुनते हैं अपने प्यारे प्यारे से लोकगीत। यहाँ बात हो रही है हमारे गाँव की, तो हमारे रीति रिवाज, हमारी पुरानी संस्कृति सब खो जाएंगी क्या? गाँव को गाँव की तरह नहीं रहने देना चाहिए, तो गाँव की अपनी एक अलग स्वतंत्र पहचान नहीं होनी चाहिए। इसके बारे में कार्यक्रम में आगे करते हैं बात। फिलहाल लेते हैं हम एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक।

चिचोर फिल्म में अभी आपने सुना के जे यशुदास को, गोरी तेरा गाँव बड़ा प्यारा, मैं तो गया मारा के यहाँ रे। और हम लोग भी ना अब शहरों से गांवों की तरफ भागते चले जाते हैं, क्योंकि हमें मन का सुकून, आत्मा की शांति चाहिए, जो कि हमें यहीं इन्हीं गांवों में जाकर के मिलती है। और अभी मैं थोड़ी देर पहले ही कह रही थी कि अपने बच्चों को गांवों के महत्व का महत्व समझाइए, कि किस तरह से आप गन्ने के खेतों में घूमते थे, गन्ने चुरा चुरा कर तोड़ तोड़ करके खाते थे, या फिर आम के बागों में चले जाते थे और वहाँ से आम चुराते थे, और कैसे वो माली जो है वो डंडा लेकर के आपके पीछे पड़ जाता था, फिर आप लोग जब बच्चों की टोली होती थी तो भागते दौड़ते थे और एक बच्चा फिसल करके पीछे रह जाता था और उसकी पकड़ करके उसकी खूब धुनाई होती थी। कई बार माली भैया जो थे वो अगर उदार होते थे तो वो और आम दे देते थे, कोई बात नहीं ये भी ले जाओ। लेकिन याद आते हैं ना वो दिन, कहाँ खो गए हमारे वो गांव जो कि अब शहर बनने की कगार पर हैं।

तो श्रोताओ, बदलाव तो ज़रूरी है, लेकिन बदलाव ऐसा किस काम का जो कि हमारी जड़ों को ही काट दे। अगर गांव की पहचान खो गई तो हमारी संस्कृति की धरोहर भी खत्म हो जाएगी। हमारे गांवों का शहरीकरण हमें नहीं करना है, बल्कि गांवों को उनकी मौलिकता के साथ बचाए रखना है।

और आज विश्व ग्रामीण विकास दिवस है, इस पर तो हमने बात की ही नहीं है, हम गांव गांव गांव ही करते चले जा रहे हैं। तो आपको ये बता देती हूँ कि प्रतिवर्ष 6 जुलाई को मनाया जाता है ये दिन। संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA ने 6 सितंबर 2024 को एक संकल्प यानी कि रिजोल्यूशन पारित किया था और इस दिवस की स्थापना की थी। वो केवल इसलिए क्योंकि उस वक्त जो गाँव की स्थिति थी वो बहुत बहुत ज़्यादा दुखदाई थी, यानी कि उसको तब ये जो विकास है इसकी ज़रूरत थी। और इस दिवस का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण समुदायों के जीवन स्तर में सुधार, कृषि विकास, खाद्य सुरक्षा और सतत विकास यानी जो SDG यानी कि हमारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, जिसकी कि मैं अभी पिछले कुछ दिनों ही एक वर्कशॉप भी अटेंड करके आई हूँ। वहाँ पर समझ करके आई हूँ कि हमारे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, कि हमारी विकास में जो गोल्स यानी लक्ष्य सहायक हैं वो कैसे कैसे हैं, क्या क्या हैं, 17 हैं वो, 17 गोल्स हैं, 17 लक्ष्य, उन्हें समझना, उन्हें याद करना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। तो वो किस तरह से हमारे जीवन स्तर को ऊंचा करने के लिए, उच्चतर करने के लिए सहायक होते हैं, तो उन सभी गोल्स को, उन सभी लक्ष्यों को, गांव के महत्व को उजागर करना है। और ये दिन ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली 2/3 वैश्विक आबादी के सशक्तिकरण और विकास को समर्पित है। चलिए, अच्छी बात है किसी ने गाँव के बारे में सोचा तो सही, लेकिन इतना भी ना सोचिए कि गाँव को भी शहर बना दिया जाए। फिर हम अपने गाँवों को कहाँ खोजेंगे, फिर हम कहाँ जाएंगे मन की शांति लेने, सुकून लेने के लिए।

चलिए एक गीत सुनते हैं और फिर उसके बाद, मैंने आपसे कहा है ना कि हमारा एक फ़ोन नंबर है लाइव, आप जानते ही हैं नंबर 7018111709, उस पर कॉल करके अपने मन की बातें ज़रूर कीजिएगा। हमें पता है बहुत सारे लोग सुन रहे हैं हमें रेडियो गुंजन धर्मशाला से, और इस विषय के साथ रिलेट भी करते हैं हमारे गाँव में रहने वाले लोग, तो बात अगर हो जाए तो बहुत अच्छा है। और ऐसा ही एक गीत आ रहा है अब आप सभी के रेडियो सेट्स पर।

0: तो ये जो गीत अभी आपने सुना, ये हमने लिया था मोहम्मद रफी की आवाज में। आप सुन रहे थे ये गीत राजा और रंग फिल्म से। 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम। और जैसा कि मैं आपसे कह रही थी और मैंने आपको बार बार अपना फ़ोन नंबर भी बताया, तो हमारे साथ फ़ोन लाइन पर जुड़ी हैं, फ़ोन लाइन पर एक श्रोता जुड़े हुए हैं। आइए जानते हैं कौन है, क्या कहना चाहते हैं इस विषय पर। हेलो
1: हेलो
0: हेलो, हाँ जी नमस्कार।
1: नमस्कार, कैसे हैं आप?
0: जी मैं ठीक हूँ, आप बताएं आप कौन बोल रहे हैं। पहले तो आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
1: मैं सुनीता डोगरा और फेमस हूँ मैं चोटी पिंजा स्पेशलिस्ट के नाम से।
0: बहुत बहुत स्वागत आपका, धन्यवाद धन्यवाद। हाँ जी, क्या कहना चाहते हैं फिर आप? तो शायद मुझे
1: चोटी पिंजा स्पेशलिस्ट के नाम से फेमस हूँ और इंस्टाग्राम पे मेरा है इट्स टीटू।
0: जी जी
1: हाँ जी हाँ जी,
0: आप कार्यक्रम सुन रहे हैं आज?
1: हाँ जी,
0: तो
1: बहुत अच्छा, बहुत अच्छा होता है आपका प्रोग्राम, बहुत अच्छे अच्छे जो आप उन वो लेके आते हैं, टॉपिक लेके आते हैं, उन पे बात करते हैं, बहुत अच्छा लगता है।
0: जी धन्यवाद। पिछले कुछ दिनों तो आप चंडीगढ़ में थे, आपके रील से व्लॉग से हमें पता लगा, अब क्या वापस आ गए हैं?
1: हाँ जी मैं वापस आ गई हूँ, अब मेरे थोड़े मदर बीमार थे, अब थोड़ा ठीक है इसलिए। और फिर आपको पता है मैं बहुत दिन तक शहर में रह नहीं सकती हूँ क्योंकि वहाँ और यहाँ में बहुत ज्यादा फर्क है। अच्छा। तो याद आती है हमें अपने फिर गांव की, हिमाचल की, फिर आना पड़ता है, वहां तो मैं नहीं रह सकती हूँ।
0: अच्छा अच्छा, शहर में और गांव में फिर क्या फर्क है वो बताएं?
1: देखिए बहुत ज्यादा फर्क है, जो हिमाचल को देवभूमि बोला जाता है या फिर स्वर्ग जैसे बोला जाता है ना हिमाचल को,
0: जी
1: तो वो सच में ही बोला जाता है। क्योंकि शहरों में तो देखो भाग दौड़, मतलब 2 मिनट भी आपको, मतलब फैसिलिटीज बोलो तो बहुत ज्यादा है वहां पे, लेकिन अगर आप सुकून ढूंढोगे तो वहां शहरों में कोई सुकून नहीं मिलेगा आपको।
0: अच्छा, आपने
1: हर इंसान दौड़ा दौड़ा दौड़ा चले जा रहा है और मतलब पैसा है लेकिन सुकून नहीं है वहां पे। और हमारे गांव में जो है, यहाँ पे आके तो मतलब आने पर ऐसे लगता है कि मिट्टी की खुशबू है, पहाड़ों की खुशबू, पेड़ है, हरियाली है, आजकल बरसात लगी हुई है, हर जगह हरियाली दिख रही है। और मुझे लगता है कि हमें और हमारी जो आने वाली जो ये जनरेशन है, जो हमारी पीढ़ी है,

0: रहे हैं।
1: जी, तो अब जैसे कि अब शहरीकरण हो रहा है हर चीज़ का, तो गांव का भी शायद इस तरह से कहते हैं कि अब ग्रामीण विकास दिवस है, तो गांव को भी कोशिश की जा रही है कि उसी लेवल पे लाया जाए, तो फिर गांव नहीं बचेंगे ना। लेकिन
0: गांव
1: आप
0: नहीं
1: देखिए,
0: बचेंगे। मेरे को
1: हाँ
0: लगता है कि चलो जो थोड़ा बहुत जरूरी है ना वो तो चलो करना चाहिए। अब देखिए
1: होना चाहिए।
0: जैसे सड़कें बनी, 4 लेन बनी ना,
1: जी
0: लेकिन उसमें नुकसान कितना ज्यादा हुआ।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: आप ये सोचिए कि जब भी कुछ अच्छा होता है उसके साथ खराब भी बहुत ज्यादा होता
1: पेड़
0: है।
1: बहुत काटे
0: मतलब
1: गए।
0: सड़कें तो मिल गई लोगों को, लेकिन बहुत सारे लोगों के जो है घर उजड़ गए, मकान चले गए, और पेड़ कितनी मात्रा में कटे हैं। तो मतलब शहरों को ही शहर रहने दो और गांवों को गांव ही रहने दो, मैं तो ये
1: उस पर ये तर्क
0: चाहती
1: दिया
0: हूँ।
1: जाता है कि पेड़ हम लगाएंगे, लेकिन अब ये सोचने वाली बात है कि वो पेड़ कब बड़ा होगा, कब वो छाया देगा, हवा कब देगा, मतलब उसको टाइम तो लगेगा ना।
0: नहीं काटने चाहिए पेड़, मैं वही तो बोल रही हूँ कि फर्क नहीं बचेगा ना, क्योंकि वहां तो देखिए वहां जाओ तो कहीं पेड़ नहीं दिखता है आपको। चंडीगढ़ में फिर भी थोड़ी बहुत हरियाली है, बाकी शहरों में आप जाओगे ना तो आपको कहीं पेड़ नहीं दिखेंगे।
1: जी जी बिल्कुल। और
0: तो
1: गांव की अगर बात मैं ये करूं कि गांव में पहले से काफी बदलाव ये आया है कि शौचालय की जो व्यवस्था है वो अच्छी हो गई है, सुचारू हो गई है, और लोग उस चीज को समझ भी रहे हैं, है ना।
0: हाँ,
1: तो
0: वो चीज तो अब नहीं बची है। बहुत पहले ये चीज थी कि जब घरों में नहीं होते थे या बुजुर्ग जो थे हमारे वो नहीं बनाना चाहते थे, लेकिन अब ये है कि अब हर घर में आपको ये मिलेगा। तो ये चीज अब तो लगे, खैर लोग बहुत ज्यादा समझ चुके हैं, अपनी संस्कृति को बचा रहे हैं, उसके लिए काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, जो हमारी जो नई पीढ़ी आ रही है वो भी इस चीज को समझ रही है,
1: जी
0: लेकिन गांव को मेरे को लगता है कि गांव ही रहना देना चाहिए, है ना।
1: जी
0: फिर
1: हाँ
0: गांव नहीं बचेगा ना, अगर आप यहाँ पे भी वही सब चीजें लेके आओगे शहरों वाली, तो गांव और शहर में फर्क नहीं बचेगा।
1: मुझे लगता है अब आप इस विषय पर भी जल्दी एक ब्लॉग डालेंगी।
0: बिल्कुल बिल्कुल, जरूर जरूर डालूंगी मैं।
1: जी, धन्यवाद
0: हाँ
1: आपका
0: जी,
1: बातचीत करने के लिए, और हम चाहेंगे कि जल्द ही आप हमें यहाँ पर आकर के भी मिलें।
0: ओके जी,
1: जी
0: थैंक यू सो मच,
1: जी
0: थैंक यू मुझे कॉल करने के
1: जी
0: लिए,
1: धन्यवाद धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: तो ये थी हमारी सुनीता डोगरा जी, जिनसे हमने की अभी बातचीत। 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला से आप सुन रहे हैं ये कार्यक्रम, और इसी तरह से आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। अगर आपके मन में भी कोई बात है, कुछ कहना चाहते हैं हमसे, तो आप ज़रूर जुड़िएगा हमारे साथ। हमारा फ़ोन नंबर है 7018110091। और एक फ़ोन कॉल हमें और भी आया है, देखते हैं धीरे धीरे जुड़ते हैं हम उनके साथ भी। फिलहाल सुनते हैं एक और गीत।

तो कैसा लगा आपको ये गीत? गोदान फिल्म का गीत था, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़। 91.2 MHz रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ आप बने हुए हैं। मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया।

0: श्रोताओं, एक श्रोता और जुड़े हैं हमारे साथ फोन लाइन पर। क्योंकि मैं सुबह से फ़ोन नंबर तो आपको बता ही रही हूँ और शायद वो भी चाहते हैं कुछ हमसे बात करना, तो लीजिए लेते हैं हम उनको लाइन पर। हेलो
1: जी। जी हाँ जी, हाँ जी।
0: हेलो जी, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: जी मैं धर्मशाला से हूँ।
0: धर्मशाला से नाम बताएं अपना।
1: अनिल।
0: अनिल जी, स्वागत है आपका जी हमारे कार्यक्रम में।
1: जी धन्यवाद, धन्यवाद
0: जी। अनिल जी, क्या कहना चाहते हैं आज के विषय पर?
1: देखिए विषय तो मतलब आज के वक्त के परिप्रेक्ष्य में बहुत बढ़िया है
0: जी।
1: बट मैं एक बात बोलूंगा
0: जी।
1: तो सब बड़ी बात तो आपने वैसे तो सब कुछ बोल दिया।
0: अच्छा,
1: सब कुछ मैंने सुन लिया, सब कुछ अच्छा लगा मुझे
0: जी।
1: पर मैं सबसे एक अहम बात आपको बताऊंगा
0: जी।
1: हमारा ये गांव है छोटा सा, ये धर्मशाला नहीं है, अपना स्टेडियम के पास ही है।
0: स्टेडियम के पास
1: जी। जी
0: जी।
1: तो ये पहले गांव ही था, बिल्कुल पूरा गांव ही था
0: जी।
1: आजकल इसमें थोड़ा स्टेडियम बहरा थोड़ा डेवलप हो गया। बट मैं देखता हूँ कि भले आप जितनी भी डेवलपमेंट कर लो, जितनी भी विकास कर लो, वो पुरानी चीज नहीं नजर नहीं आती। सबसे बड़ी बात ये है
0: जी,
1: मैं बताऊंगा उसे अंतर बताऊंगा।
0: हाँ।
1: देखिए हम पुराने वक्त में सबसे बड़ी बात हुई पर्यावरण को ही ले लीजिएगा, तो उसमें हम सबसे बड़ी चीज ये देखते हैं कि हमारे एरिया में टोटल ही जिसे बोल रहे मतलब चार वेदर तो होते हैं
0: जी,
1: जो चार क्लाइमेट होते हैं।
0: हाँ जी, हाँ जी।
1: पूरे ही यहाँ दिखते थे विंटर, आप पूरा बढ़िया लगता था, विंटर में मिलता था, गर्मी में मिलती थी, रेनिंग सीजन पूरी मिलती थी, उसके अलावा दो मौसम और मिलते थे यहाँ पर।
0: बिल्कुल, हाँ जी।
1: इसे बोलते हैं, एक बोलते हैं ऑटम पतझड़ और स्प्रिंग सीजन बसंत का मौसम।
0: ठीक बोल रहे हैं।
1: आजकल ये दो मौसम कहीं भी मिलते हैं, वो ये सब यही मिलते हैं मैं दिखता हूँ इसलिए, क्योंकि पूरे फूल गिरते थे, पतझड़ भी होता था, दो एडिशन में मिलते थे। इतना बढ़िया चीज थी और इतना बढ़िया मौसम था, पूरा स्टेडियम का एरिया जो था पूरा खाली था। यहाँ पर जो बोलते प्लेट ग्राउंड बोलते, कुछ वर्ष पहले, कुछ 50 साल के लगभग पहले यहाँ पर क्या होता था कि 50 तो नहीं है, उससे पहले ही आर्मी के कुछ ट्रेंचेस बनी हुई थी पुराने वक्तों में।
0: अच्छा।
1: तो जो हमारे पुराने वक्त जो बार बार हुई थी, तो उस बार के वक्त यहाँ पर जो ट्रेंचेस थी उसमें जो लोग छिपा करते थे उन ट्रेंचेस में।
0: अच्छा।
1: तो मोर्चे टाइम में बड़े होते और आर्मी के परेड ग्राउंड था, आर्मी के लिए परेड ग्राउंड भी हुआ करता था ये, जैसे बड़ी ऊंची ऊंची दीवारें बनी हुई थी, उन दीवारों को फाला करते थे, इसलिए इसे परेड ग्राउंड नहीं कहा करता, परेड ग्राउंड।
0: अच्छा।
1: तो उसके बाद ये हमारे लोग ही यहाँ गांव के लोग यहाँ मतलब जब खाली हो गया तो गाय और जान मवेशी वगैरह चराया करते थे। उसके बाद ये कुछ वर्ष पहले ये बाद में कॉलेज वाले एजुकेशन वालों ने ले लिया, एक्वायर कर लिया, फिर नीचे वाला जो ट्रैक वालों ने ले लिया, और आज ये यहाँ पर पूरा कंक्रीट नजर आता है।
0: तो आपको बोलने का मतलब है कि
1: मेरा तात्पर्य यही था आप लोगों से कि हमने भले ही यहाँ पर करोड़ों रुपए इन्वेस्ट कर दिया, कंक्रीट खड़ा कर दिया, वो पर वो ग्रीनरी नहीं रही
0: जी।
1: वो ग्रीनरी जो पहले हुआ करती थी वो ग्रीनरी आज नजर नहीं आएगी कहीं आपको। पैसे से आप मेहनत तो खड़े कर सकते हैं, बड़े बड़े मकान खड़े कर सकते हैं, तो उस खड़े कर सकते हैं
0: जी।
1: और वो जो तो पुरानी नीचे खिला करती थी ना,
0: हाँ जी,
1: जो पक्षियों को चहचहाट और छा छा होती थी
0: जी।
1: और गांव में जो भेड़े चरती थी या गाय चरती थी, इतनी प्यारी लगती थी, वो चीज आज बिल्कुल भी नहीं है।
0: नहीं है। तो क्या आपको अफसोस तो नहीं है इस बात का कि हमारे यहाँ पे गांवों को के को ले लिया गया और यहाँ इतना बड़ा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम खड़ा कर दिया गया? अफसोस है उस बात का?
1: देखिए इसमें हम यही कह सकते हैं कि अभी सरकारें एक्वायर कर रही हैं
0: जी,
1: तो उसमें हम इसमें सरकार से तो लड़ सकते नहीं है। और इसके बारे में हम क्या कह सकते हैं?
0: देखिए उस
1: हम
0: दोनों चीजों का अपना महत्व है, गाँव की भी अपना महत्व है और इसका भी अपना महत्व है, दोनों जो है वो एक तरीके से साथ साथ में चलें तो बहुत अच्छी बात है। जैसे कि मैंने कहा था कि गाँव जो है वो गाँव के स्वरूप में रहने देना चाहिए, और अगर आपके पास और कोई जगह है तो आप उसे डेवलप कर लीजिए, वो बहुत अच्छी बात होगी, है ना।
1: देखिए मैं इसे एक चीज और जोड़ूंगा, आज आप कहीं भी दिख लीजिएगा, मतलब बिल्डिंग या कंक्रीट के बाहर खड़े कर दिए लोग, कारण
0: जी बिल्कुल कह रहे हैं हम,
1: पर वो जो मतलब जो पुरानी ग्रीनरी नजर आती थी, शुद्ध हवा नजर आती थी, मिलती थी, वो आज कहीं नहीं मिले, कहीं भी नहीं मिलेगी।
0: भले
1: आप गाँव में चले जाइएगा, मतलब शहरों की बातें छोड़ दीजिए, और मन की शांति वो कहीं नहीं मिलेगी।
0: मन की शांति अगर आप खोजेंगे तो जरूर मिल जाएगी अनिल जी, और लोग भी तो इतनी दूर दूर से हमारे यहाँ पर वही लेने के लिए आते हैं, चाहे बेशक 2-3 दिन ही रहते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ तो अर्जित करके वो यहाँ से जाते ही हैं। आप भी खोजिएगा, आपको जरूर मिलेगी। और आपने बहुत अच्छी बात की, रेडियो गुंजन धर्मशाला से बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर से हम आपका करते हैं, और इसी तरह से हमारे साथ जुड़ते रहिएगा। धन्यवाद
1: जी, जी जी धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी।
0: तो इसी तरह से आप लोग भी श्रोताओं हमारे साथ जुड़ते रहिएगा, जिस तरह से आज ये दो श्रोता हमसे जुड़े हैं। फिलहाल तो कार्यक्रम में अब समय थोड़ा सा आगे बढ़ता चला जा रहा है, और हमने उम्मीद नहीं की थी कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत सारी बातें और भी करना चाह रही थी, लेकिन शायद कार्यक्रम में समय ना बचे, फिर भी कोशिश ज़रूर करूँगी। फिलहाल एक गीत।

बताऊं तो हमारे यहाँ भी कई सारे ऐसे लोग हैं जो कि कई सारी संस्थाएं भी हैं जो आपस में मिलजुल करके जैविक खेती कर रही हैं, स्थानीय कला को बढ़ावा दे रही हैं, ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है, होम स्टेज बनाए हुए हैं लोगों ने और इस तरह से अपने गांव की पहचान को बढ़ा भी रहे हैं लोग और बचा भी रहे हैं। और अब तो सरकार की मदद से हस्तशिल्प को भी बढ़ावा मिल रहा है और लोग समझने लग पड़े हैं और अब वोकल फॉर लोकल्स भी हो रहे हैं। जैसे जैसे ऑनलाइन का जमाना बढ़ता चला जा रहा है वैसे ही हम लोग हाथ का काम करने वालों को भी बढ़ावा दे रहे हैं। अपने आसपास अगर हमें लगता है कि कोई बढ़िया काम कर रहा है और उसको मदद की ज़रूरत भी है तो हम उनका ध्यान भी रखते हैं और कोशिश करते हैं कि उनका बना हुआ सामान हम खरीदें अगर हमें ज़रूरत हो तो। देखिए, विकास का स्तर ऐसा होना चाहिए कि गांव की आत्मा न मरे। विकास होना ज़रूर चाहिए लेकिन गांव का हर व्यक्ति आर्थिक रूप से समृद्ध हो जाए ऐसा हो। गांव में अच्छी शिक्षा मिले, बेहतरीन अस्पताल हो, युवाओं को रोज़गार मिले, उनको रोज़गार के लिए शहर की तरफ ना भागना पड़े क्योंकि अगर वो जाएंगे तो फिर वापस लौट के आना असंभव सा हो जाता है क्योंकि शहरों में ज़िंदगी कैसी होती है आपको पता ही है। एक दिन की छुट्टी के लिए भी बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ती है। जब गांव का किसान, गांव का दस्तकार खुद आत्मनिर्भर होगा तभी सही मायने में ग्रामीण विकास होगा। आपका क्या कहना है? तो इस विषय पर सोचिएगा जरूर और घर में डिस्कशन भी करा करें इन सभी विषयों पर बैठ करके। और अगर शहरों में रहते हैं तो अपने गांव का एक चक्कर लगाए आए। और सच बताऊं मैं ये कार्यक्रम करते करते इतनी इमोशनल हो चुकी हूँ ना इस वक्त कि अब शायद मैं आपसे बात ना कर पाऊँ तो आपको सुनवा रही हूँ एक और गीत।

जी हाँ, हमारे देश में कई गांव ऐसे भी हैं जो कि नदी किनारे बसे हुए हैं, तो वहां पर नावों का चलना भी स्वाभाविक ही होता है। तो अगर हम यहाँ पर बैठ करके केवल हिमाचल की ही बात करते रहेंगे तो भी जस्टिफिकेशन नहीं होती है, क्योंकि देखिए ना, आप तो हमें बहुत दूर दूर तक सुनते हैं हमारे ऐप के ज़रिए भी, तो इसका मतलब हमें पूरे देश के बारे में, पूरे विश्व के बारे में बात करनी है, और जो कि हमने आज इस कार्यक्रम से की भी है। तो श्रोताओं, इस साथ में चलते चलते आपको ये भी बता दें कि हिमाचल प्रदेश में मनरेगा के स्थान पर प्रस्तावित विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण वीबी रामजी को लेकर के केंद्र और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार के बीच में टकराव अब केवल प्रशासनिक या फिर वित्तीय विवाद नहीं रह गया है। ये ग्रामीण रोजगार सहकारी संघवाद और राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई में बदलता दिखाई दे रहा है, और अब आगे आने वाले समय में ये तय होगा कि दोनों सरकारें जो हैं वो समझौते का रास्ता अपनाएंगी या फिर मनरेगा से जुड़ा हुआ ये मुद्दा 2027 के विधानसभा चुनाव का प्रमुख चुनावी हथियार बन सकता है। तो भैया, ये दोनों सरकारों की आपस की जो भी लड़ाई है वो जल्दी सुलझ जाए तो अच्छा है। अब चलते चलते मैं तो यही कहूंगी कि गांवों को शहर मत बनाइए, बल्कि गांवों को इतना मजबूत बनाइए कि शहर के लोग वहां सुकून ढूंढने जाएं, अपनी संस्कृति पर गर्व करें। विश्व ग्रामीण विकास दिवस पर अपने गांवों की मिट्टी को एक सलाम जरूर करिएगा। और अब लेती हूं आपसे विदा, सुनते रहिए रेडियो गुंजन, धर्मशाला गूंज अपने पन की। जल्दी मिलूंगी आपसे फिर किसी और दिन इसी कार्यक्रम में, तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। और अब हमारी गाड़ी भी इंतजार कर रही है बाहर, तो हमें भी चलना होगा।

0: लो आ गई फायर ब्रिगेड।
1: चुप कर माँ, कितनी बार कहा है बिजली बचाओ, अरे 5 मिनट पहले ही तो चलाया है, और ये क्या बिजली बचाओ करती रहती हो, बिल भर देंगे पापा। माँ बात बिल की नहीं है, बात खपत की है। देखो बिजली कहाँ से आती है, थर्मल पावर से। जितना ज्यादा लोड बढ़ेगा उतना ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ेगा, और पता है इससे जो फ्लाई ऐश निकलती है वो हवा पानी और मिट्टी तीनों को प्रदूषित करती है।
0: हमें उससे क्या,
1: उपभोग कम तो मांग कम, पावर प्लांट से प्रोडक्शन का बोझ कम, समझे?
0: आना समझ गया।
1: मम्मा पानी बंद करो, ये भी बिजली से ही आता है। सुविधाओं का इस्तेमाल समझदारी से करें, जरूरत के अनुसार ही पानी और बिजली खर्च करें। उत्पादन का बोझ होगा कम तो सुरक्षित पर्यावरण और हम।

0: देखिए इसकी सांसें तेज चल रही है, तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना होगा।
1: तुम तो यूं ही घबरा जाती हो।
2: अच्छा मेरी एग्जाम कब है?
1: एग्जाम?
2: हाँ, और हम दोनों का टीकाकरण कार्ड कहाँ है?
1: बेटा ये सब माँ को पता होगा ना।
2: पापा जब सब माँ को पता है तो आप उनकी बात मानो ना।
1: चलो अस्पताल चलते हैं।
3: इसे निमोनिया हुआ है, सही समय पर इसे यहाँ लाकर आपने बड़ी परेशानी होने से बचा लिया। अगर खांसी और जुकाम के साथ तेज सांस या पसली चलने लगे तो ये निमोनिया के लक्षण हैं। ऐसे में घरेलू इलाज नहीं, तुरंत अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं। सांस निमोनिया नहीं तो बचपन सही।
4: पार्थ याद रखना, जिंदगी कल से शुरू नहीं होती, क्योंकि वो कल कभी आता ही नहीं। जो तुम आज नहीं कर सकते उसे तुम कल भी कभी नहीं कर पाओगे। हम अक्सर कल के इंतजार में अपना आज खो देते हैं और फिर एक दिन बस अफसोस ही बाकी रह जाता है। अगर जीतना है तो आज से ही लड़ना सीखो, क्योंकि बहाने बनाने वालों के लिए मंजिल हमेशा दूर होती है। अपनी मेहनत को कल पर मत टालो, क्योंकि वक्त किसी का सगा नहीं होता। उठो और आज ही कुछ ऐसा करो कि तुम्हारा कल खुद बदल जाए।
5: क्या आप नहीं चाहते कि आपका व्यापार छूले आसमान की ऊंचाइयां? तो अपने व्यापार को कीजिए प्रचारित सही तरीके से सही जगह पर। अब विज्ञापन दीजिए और बन जाइए हर किसी की पहली पसंद। व्यापार को मिलेगी नई पहचान, ग्राहकों की संख्या में होगा जबरदस्त इजाफा और आपका मुनाफा बस पूछिए मत। हमारे साथ जुड़िए और देखिए फर्क को, अपने व्यापार को दें नई उड़ान। विज्ञापन देने के लिए आज ही संपर्क करें 9816473615 पर। आप बढ़ेंगे तभी तो देश बढ़ेगा।
6: हेलो सर, सर मैं फॉर्चुनेट लॉटरी से अनुज।
7: हाँ बोलिए।
6: बधाई हो सर, आपको 10 लाख की लॉटरी लगी है।
7: 10 लाख? सच्ची?
6: जी जी सर। एंड सर आपको क्लेम करने के लिए सिर्फ 10,000 की रजिस्ट्रेशन फी देनी होगी।
7: 10,000 की रजिस्ट्रेशन? क्यों?
6: सर ये वन टाइम प्रोसेसिंग फी है।
7: ओके।
6: इससे आपकी लॉटरी पे टैक्स भी नहीं लगेगा।
7: अच्छा
6: सर, मैं पेमेंट के लिंक भेज रहा हूँ, आप उस पे ट्रांसफर कर दीजिए।
7: अच्छा ये लिंक?
6: यस सर।
8: मछली तो फंस गई।
9: शिंगे
10: और ये स्क्रीन का फोटो लो। हार्ड डिस्क, सारे हार्ड डिस्क उठाओ। याद रखिए, ऐसे फर्जी लॉटरी कॉल्स पे या उनसे आए मैसेजेस पे विश्वास ना करें, ना ही किसी अनजान लिंक पे क्लिक करें। तो सतर्क रहें, आइए मिलकर चीट्स को बीट करें।
11: चलो बच्चों खाना लग गया।
12: बट ये क्या माँ, ये तो हरी हरी सब्जियाँ है।
13: कुछ अच्छा नहीं बनाया।
11: अरे ये हरी सब्जी ही है सबसे अच्छी। हरी सब्जियाँ बच्चों खाओ।

0: अरे 6 वर्ष तक के आयु के सभी बच्चे बने स्वस्थ और तंदुरुस्त।
1: सुनो तुम पढ़ी लिखी हो?
2: हाँ बिल्कुल।
1: तो मेरे एक सवाल का जवाब दो।
2: पूछो।
1: रेडियो और अखबार में क्या फर्क है?
2: सिंपल, रेडियो में रोटी नहीं लपेट सकते।
1: वाटसन यूनिवर्सिटी से पढ़ी हो?
2: हाँ, तुम्हें कैसे पता?
1: बस गेस कर रहा था।
2: अरे गेस भी
3: कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं?

91.2 मेगाहर्ट्ज पर यह है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त शशि और हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम लेकर गीत सुहाने नए पुराने। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारे से गीत के साथ। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत, गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का। तो अपने कार्यक्रम में फिर से हम आगे बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं फिर से एक प्यारे से गीत के सफर में।

91.2 FM पर यह है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बिल्कुल अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो इसी के साथ अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको फिर से ले चलते हैं एक और गीत की तरफ। तो आप सभी यूं ही सुनते रहिए अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला

ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से आपको ले चलते हैं एक और गीत की तरफ।

91.2 MHz पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। गीत सुहाने, नए पुराने, तो फिर से अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत, गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का। तो अपने कार्यक्रम में फिर से

0: लो आ गई फायर ब्रिगेड।
1: चुप कर माँ, कितनी बार कहा है बिजली बचाओ, अरे 5 मिनट पहले ही तो चलाया है, और ये क्या बिजली बचाओ करती रहती हो, बिल भर देंगे पापा। माँ बात बिल की नहीं है, बात खपत की है। देखो बिजली कहाँ से आती है, थर्मल पावर से। जितना ज्यादा लोड बढ़ेगा उतना ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ेगा, और पता है इससे जो फ्लाई ऐश निकलती है वो हवा पानी और मिट्टी तीनों को प्रदूषित करती है।
0: हमें उससे क्या,
1: उपभोग कम तो मांग कम, पावर प्लांट से प्रोडक्शन का बोझ कम, समझे?
0: आना समझ गया।
1: मम्मा पानी बंद करो, ये भी बिजली से ही आता है। सुविधाओं का इस्तेमाल समझदारी से करें, जरूरत के अनुसार ही पानी और बिजली खर्च करें। उत्पादन का बोझ होगा कम तो सुरक्षित पर्यावरण और हम।

0: देखिए इसकी सांसें तेज चल रही है, तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना होगा।
1: तुम तो यूं ही घबरा जाती हो।
2: अच्छा मेरी एग्जाम कब है?
1: एग्जाम?
2: हाँ, और हम दोनों का टीकाकरण कार्ड कहाँ है?
1: बेटा ये सब माँ को पता होगा ना।
2: पापा जब सब माँ को पता है तो आप उनकी बात मानो ना।
1: चलो अस्पताल चलते हैं।
3: इसे निमोनिया हुआ है, सही समय पर इसे यहाँ लाकर आपने बड़ी परेशानी होने से बचा लिया। अगर खांसी और जुकाम के साथ तेज सांस या पसली चलने लगे तो ये निमोनिया के लक्षण हैं। ऐसे में घरेलू इलाज नहीं, तुरंत अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं। सांस निमोनिया नहीं तो बचपन सही।
4: पार्थ याद रखना, जिंदगी कल से शुरू नहीं होती, क्योंकि वो कल कभी आता ही नहीं। जो तुम आज नहीं कर सकते उसे तुम कल भी कभी नहीं कर पाओगे। हम अक्सर कल के इंतजार में अपना आज खो देते हैं और फिर एक दिन बस अफसोस ही बाकी रह जाता है। अगर जीतना है तो आज से ही लड़ना सीखो, क्योंकि बहाने बनाने वालों के लिए मंजिल हमेशा दूर होती है। अपनी मेहनत को कल पर मत टालो, क्योंकि वक्त किसी का सगा नहीं होता। उठो और आज ही कुछ ऐसा करो कि तुम्हारा कल खुद बदल जाए।
5: क्या आप नहीं चाहते कि आपका व्यापार छूले आसमान की ऊंचाइयां? तो अपने व्यापार को कीजिए प्रचारित सही तरीके से सही जगह पर। अब विज्ञापन दीजिए और बन जाइए हर किसी की पहली पसंद। व्यापार को मिलेगी नई पहचान, ग्राहकों की संख्या में होगा जबरदस्त इजाफा और आपका मुनाफा बस पूछिए मत। हमारे साथ जुड़िए और देखिए फर्क खुद। अपने व्यापार को दें नई उड़ान। विज्ञापन देने के लिए आज ही संपर्क करें 9816473615 पर। आप बढ़ेंगे तभी तो देश बढ़ेगा।
6: हेलो सर, सर मैं फॉर्चुनेट लॉटरी से अनुज।
7: हाँ बोलिए।
6: बधाई हो सर, आपको 10 लाख की लॉटरी लगी है।
7: 10 लाख? सच्ची?
6: जी जी सर। एंड सर आपको क्लेम करने के लिए सिर्फ 10,000 की रजिस्ट्रेशन फी देनी होगी।
7: 10,000 की रजिस्ट्रेशन? क्यों?
6: सर ये वन टाइम प्रोसेसिंग फी है।
7: ओके।
6: इससे आपकी लॉटरी पे टैक्स भी नहीं लगेगा।
7: अच्छा।
6: सर मैं पेमेंट की लिंक भेज रहा हूँ, आप उस पे ट्रांसफर कर दीजिए।
7: अच्छा, ये लिंक?
6: यस सर।
8: मछली तो फंस गई।
9: शिंगे
10: और ये स्क्रीन का फोटो लो। हार्ड डिस्क, सारे हार्ड डिस्क उठाओ। याद रखिए, ऐसे फर्जी लॉटरी कॉल्स पे या उनसे आए मैसेजेस पे विश्वास ना करें, ना ही किसी अनजान लिंक पे क्लिक करें। तो सतर्क रहें, आइए मिलकर चीट्स को बीट करें।
11: चलो बच्चों खाना लग गया।
12: बट ये क्या माँ, ये तो हरी हरी सब्जियाँ है।
13: कुछ अच्छा नहीं बनाया।
11: अरे ये हरी सब्जी ही है सबसे अच्छी। हरी सब्जियाँ बच्चों खाओ।

0: विटामिन्स और मिनरल से ये सब है भरे। 6 वर्ष तक के आयु के सभी बच्चे बने स्वस्थ और तंदुरुस्त।
1: सुनो, तुम पढ़ी लिखी हो?
2: हाँ बिल्कुल।
1: तो मेरे एक सवाल का जवाब दो।
2: पूछो।
1: रेडियो और अखबार में क्या फर्क है?
2: सिंपल, रेडियो में रोटी नहीं लपेट सकते।
1: वाटसन यूनिवर्सिटी से पढ़ी हो?
2: हाँ, तुम्हें कैसे पता?
1: बस गेस कर रहा था।
2: तुम्हारे गेस भी
3: कौन है? कहाँ से आते हैं?

0: नमस्कार दोस्तों, 91.2 MHz पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और अब समय है दोस्तों कार्यक्रम हमारी सेहत का। तो दोस्तों ये कार्यक्रम हमारी सहयोगी संस्था ऑर्गन इंडिया द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है, जीवन एक अनमोल उपहार। ये कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से 91.2 MHz पर।
1: दोस्तों आप सुन रहे हैं सहयोगी संस्थान ऑर्गन इंडिया का कार्यक्रम जीवन एक अनमोल उपहार।

0: जीवन एक अनमोल उपहार है। अपने जाने के बाद किसी और के जीवन में उम्मीद भरें। अंगदान का संकल्प लें। अंगदान, जीवन दान।
1: मेरा नाम है पायल और हम सब ये आशा करते हैं कि आपका दिन बहुत अच्छे से गुजर रहा है। ऑर्गन इंडिया एक गैर सरकारी सामाजिक संस्थान पराशर फाउंडेशन की पहल है और हम हर कार्यक्रम में आपके लिए अंगदान, नेत्रदान और देहदान से जुड़ी हुई सूचना और अनोखी कहानियाँ लेकर आएंगे। आज एक ऐसी ही दिलचस्प कार्यक्रम के साथ हम फिर लौटे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सफर। आज के कार्यक्रम में ऑर्गन इंडिया से डॉक्टर सौरभ शर्मा हमारे साथ हैं और आज हम एक बार फिर से एक और प्रेरणा से भरी हुई कहानी लेकर आए हैं और वो हमें बहुत ही खास मेहमान से रूबरू करवाने वाले हैं। तो चलिए डॉक्टर शर्मा से बात करते हैं।
2: नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर सौरभ और मैं आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम जिसका नाम है जीवन एक अनमोल उपहार में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हम हमेशा आपके सामने ऐसी कहानियां रखने की कोशिश करते हैं जिनमें अंगदान के लिए एक प्रेरणा होती है, किसी की जान बचाने की एक कोशिश होती है। तो दोस्तों, आज की जो कहानी है और जो आज के हमारे मेहमान हैं वो भी इसी कहानी से रिलेट करते हैं, इसी विषय पर जो आज की कहानी आधारित है। आज के जो हमारे मेहमान हैं उनका नाम है कुलविंदर ढींगरा जी। ये मुंबई के रहने वाले हैं और एक इंटरनेशनल प्लेयर रह चुके हैं रग्बी गेम के। रग्बी गेम अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं, आपने बहुत सारी मूवीज में इस गेम को देखा होगा जिसमें एक बॉल लेकर बहुत सारे प्लेयर्स भागते हैं और उनसे बॉल छुड़ाई जाती है दूसरी टीम के द्वारा। इंडिया में इतना पॉपुलर नहीं है ये गेम, लेकिन विदेशों में बहुत पॉपुलर है गेम। तो कुलविंदर जी इंडिया टीम के इंटरनेशनल प्लेयर रह चुके हैं, अभी भी ये मुंबई में रहते हैं, लेकिन आज जो हम उन्हें कवर कर रहे हैं, आज हम उनकी कहानी जो आपको सुना रहे हैं वो इस विषय पे है कि इन्होंने अपने पिताजी की जान बचाने के लिए अपने लिवर का कुछ पोर्शन उन्हें डोनेट किया था। अब दोस्तों, पर ये कहानी स्पेशल इसलिए हो जाती है क्योंकि जब आप एक स्पोर्ट्स प्लेयर से बोलो कि आपको अपनी एक किडनी या लिवर डोनेट करना है तो कहीं ना कहीं हिचकिचाहट बहुत हो जाती है, बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों का ये सोचना रहता है कि जब हम कोई अंगदान कर देंगे, अपना पोर्शन कुछ हम दान कर देंगे तो हमारे अंदर कुछ कमी आ जाएगी, कुछ फिजिकल डिसेबिलिटी आ जाएगी। एक स्पोर्ट्स प्लेयर के लिए बहुत ज्यादा टफ सिचुएशन रहती है, बहुत असमंजस की स्थिति होती है, लेकिन कुलविंदर जी एक एग्जाम्पल है कि इन्होंने उन सब चीजों की परवाह ना करते हुए अपने पिताजी की जान बचाई और आज बिल्कुल स्वस्थ हैं।

0: तो कुलविंदर जी, हम आपका स्वागत करते हैं हमारे इस कार्यक्रम में।
1: थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच जी।
0: कुलविंदर जी, बहुत कुछ तो मैंने इंट्रोडक्शन में आपके बारे में बताया है, लेकिन फिर भी मैं डिटेल में जानना चाहता हूँ हमारे श्रोताओं को बताने के लिए कि आपके पिताजी थे, उनकी तबीयत कहाँ से खराब हुई और लिवर ट्रांसप्लांट तक बात कैसे पहुँच गई, थोड़ा सा कहाँ से प्रॉब्लम।
1: 2000 में पापा की जो स्टूल थे, जिसको हम टॉयलेट बोलते हैं, वो काली हो गई थी और पापा की जो मुंह में छुरियां थी वो बढ़ रही थी, जो कि और फिर हमको सस्पेक्ट हुआ कि पापा की तबीयत ठीक नहीं है। तो जब हमने उनका डायग्नोस किया तो लिवर की शिकायत समझ आई कि पापा को हेपेटाइटिस है। तो दैट इज द फर्स्ट टाइम कि 99 की एंड पे और 2000 की बिगिनिंग में हमें पता लगा कि पापा का लिवर खराब हो रहा है।
0: तो इनिशियल प्रॉब्लम जो सिम्टम्स आए, उससे फाइनल डायग्नोसिस होने में कितना समय लगा दिया?
1: कुछ 3 महीने में समझ आ गया था कि पापा लिवर डैमेज्ड है और इरिवर्सिबल है।
0: और हम ये बात कर रहे हैं 1999 की और 2000 की, तो आज से लगभग 23-24 साल पहले, जब ट्रांसप्लांट जैसी सर्जरी बहुत ही एडवांस सेंटर में होती थी, रेगुलर हर किसी हॉस्पिटल में, हर किसी शहर में ये चीज अवेलेबल नहीं थी। जब पहली बार आपने लिवर ट्रांसप्लांट के बारे में सुना तो क्या रिएक्शन था फैमिली का, क्या आपका प्लान ऑफ एक्शन था उसके बाद?
1: देखिए, जो बातें भी हमने आयुर्वेदिक किया, होम्योपैथिक किया, मद्रास गए, पापा को दिल्ली लेके गए, गुरुद्वारे के सब बांधते हैं मंदिरों में, तो प्रेयर की गई, बट जो डैमेज था वो इरिवर्सिबल था, इसलिए समझ आ गया कि हमको लिवर ऑपरेशन करवाना ही है। और तब इंडिया में लिवर ऑपरेशन खाली शुरू हुए थे
0: जी,
1: तो बहुत कम हॉस्पिटल में, और हमको ऑफर आई कि हम हिंदुजा बॉम्बे में हम आपको फ्री ट्रांसफर कर देंगे
0: जी।
1: तो हमने उस ऑफर को नहीं लिया, हम सिंगापुर गए सर।
0: फ्री ट्रांसप्लांट कर देंगे क्यों?
1: क्योंकि जब मैन ऑपरेशन होता है तो डॉक्टर अपने हाथ साफ करना चाहते हैं पेशेंट्स के ऊपर।
0: ओके।
1: क्योंकि नई नई चीजें शुरू हुई है तो सक्सेस रेट पता नहीं है, साइंस उसके पीछे पता नहीं है, बट लंदन, अमेरिका और सिंगापुर ये ट्रांसप्लांट सेंटर बन चुके थे, वहां पर 15 साल पहले से ये काम हो रहे थे। तो वहाँ पर एक्सपीरियंस डॉक्टर्स थे, तो उनको पता लगा कि हम वहाँ जाएंगे तो सेफ्टी रहेगी ज़्यादा, तो हमने चूज किया कि बाहर जाएं। मगर आज इंडिया में अच्छे ऑपरेशन हो रहे हैं, मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि आज इंडिया ऑपरेशन में काफी आगे आ चुकी है, इस पर 20 सालों में हम तरक्की कर चुके हैं जी।
0: जब आपने सिंगापुर चुना तो सिंगापुर आप गए, देन वहाँ पर क्या हुआ?
1: देखिए, वहाँ पर NUH करके एक बड़ा हॉस्पिटल है और वहाँ पर जो सर्जरीज होती वो भी गवर्नमेंट के अंदर किसी हद तक है, ताकि इसमें कोई ब्लैक का काम ना हो। NUH बहुत बड़ा हॉस्पिटल है
0: जी।
1: तो वहाँ पर हमारी पहले अपॉइंटमेंट हुई और हम अक्टूबर में पहले गए 2001 में, और 2001 में हमारे जो टेस्ट हुए उस टेस्ट में मेरा और मेरे भाई का टेस्ट हुआ
0: जी,
1: और हम दोनों ही पास हुए, हम 3 भाई हैं। बट मैंने बोला पिताजी मैं आपको लिवर दूंगा, मेरा पिताजी के साथ बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग रहा है आज तक, अब तो वो रहे नहीं, तो मेरे पिताजी मेरे दोस्त थे, मेरे मेंटर थे और एक गुरु की तरह मैं इनको चीज करता था, बट दोस्त पहले थे मेरे, हर चीज हम खुल के बात करते थे। बड़ी वॉक कर रहे थे बांद्रा में, तो पता लगा कि लिवर खराब है, तो क्या किसी घर से लिवर मिल जाए, तो मैंने उनका हाथ पकड़ के पापा मैं दूंगा बस खत्म, मैंने किसी पूछा नहीं, ना लॉस को वाइफ को और को, तो डिसीशन था कि मेरे पिताजी हैं मेरे दोस्त हैं बस, इसमें बात खत्म हो गई थी।
0: और अगर धीरे जी मैं ये बात कहूँ कि 2000 तो बहुत पुरानी बात है, उस टाइम पर तो इतना ज्यादा एडवांसमेंट था भी नहीं, लोग जानकारी भी नहीं रखते थे, इवन मेडिकल फ्रेटर्निटी भी जानकारी पूरी, तो बीइंग अ स्पोर्ट्स प्लेयर कभी आपके मन में सेकंड थॉट आया हो कि मैं ये क्या कर रहा हूँ? और अगर आपके मन में नहीं आया तो जब भी हम माता या पिता के लिए ऐसी चीजें करना चाहते हैं तो वो कभी आगे नहीं आते, वो हमेशा हमें रोकते हैं कि मैं बच्चे से नहीं लूंगा, मैं बच्चे की जिंदगी खतरे में नहीं डालूंगा, आपके केस में ये सब कैसे मैनेज हुआ?
1: सर, दो बातें हैं, मुझे एक छोटी सी बात याद आती है कि हमारे ग्रंथ में लिखा कि मेरा मुझ में किच नहीं, जो किच है वो तेरा, तेरा तुझको सौंप दे तो क्या लागे फिर मेरा। तो ये चीज सुनता रहता था छोटा था शब्दों में गुरुद्वारों में, तो जब पिताजी ने इतना स्ट्रांग मुझे बना दिया था कि मैं 2-3 बार भी भारी पड़ जाता हूँ, तो स्ट्रेंथ मेंटली भी बहुत थी, फिजिकली थी मेरे पास, मेंटली बहुत स्ट्रेंथ थी मेरे, तो वो स्ट्रेंथ के साथ ही मैंने कहा जी पिताजी मैं दूंगा, मुझे पता कि मैं स्ट्रांग इनफ हूँ मेंटली भी, तो वो एक तो मेरी हैप्पी कि मुझे सेवा मिली है, मैं बहुत खुश हूँ सही समझता हूँ। और उसके बाद ही रग्बी खेला हूँ मैं, उसके बाद भी मैं खेला हूँ मैचेस, तो कुछ कमी नहीं आई मेरे, 1 साल की रेस्ट थी मेरी, फिर वापस आ गया था खेलने के लिए।
0: एंड कभी फादर ने मना किया कि नहीं मैं अपने बेटे से नहीं ले सकता, क्योंकि माता पिता नहीं लेना चाहते, वो अपने बच्चों की जिंदगी को यहाँ आने ही नहीं देते। देन कभी कभी रिश्तेदार भी होते हैं जिनको जानकारी
1: कि पिताजी बहुत लाइफ थी, मेरे पिताजी पार्टीशन किड थे, जो अनडिवाइड पंजाब था। मेरे पिताजी 7 साल के थे जब वो अपनी फैमिली से छूट गए और वो आर्मी से पिकअप हुए थे एक ट्रक में। उनकी फैमिली आ गई थी इंडिया में, पापा अकेले आए थे। जेवियर्स कॉलेज मैं गया तो पिताजी सेंट स्टीवन्स गए दिल्ली में, तो उन्होंने पढ़ाई की रात को, यू नो, बर्फ बेची है, चीनी बेची है, अब हम टायर बेचते हैं तो उन्होंने ओल्ड टायर बेचे हैं। तो मेरे पापा को देखा सेवल करते हुए, तो जब कंफर्ट जोन में हम आ गए तो मैं पूछता था पापा आप किन कंफर्ट में जाएंगे, तो इट वॉज वेरी स्ट्रेट थॉट। मैंने उनको मौका ही नहीं दिया, मैंने उनका हाथ पकड़ लिया था, मैं दूंगा खत्म। तो मैंने उनका हाथ क्लैप करके नहीं, बस इस पर बात नहीं होगी
0: जी,
1: तो वॉज नो आर्ग्यूमेंट, इट वॉज वेरी क्लियर कि मैं कर रहा हूँ, बस मैं करूँगा।
0: जैसा कि हम बात कर रहे हैं सन 2000 की, तो उस टाइम पर डिसीज ऑर्गन डोनेशन का कोई ऑप्शन था ही नहीं इंडिया में।
1: तो किसका ऑप्शन नहीं था?
0: डिसीज ऑर्गन डोनेशन, जिसमें कोई मृत्यु के बाद जब अपने अंग दान करता है, तो आपके पास स्ट्रेट फॉरवर्ड वन ऑप्शन था जिसमें आप देने।
1: अगर था भी उस वक्त तो इंडियन ऑपरेशन की लिमिटेशन थी, समझिएगा, क्योंकि हार्डली एक या दो जगह ऑपरेशन हुए थे इसके पहले इंडिया में। तो फिर अगर आप पहली जगह जाके कराते हो और आप एक्सपीरियंस हैंड्स में नहीं होते, तो दुआ थी कि हमारी फैमिली जो मेरी मम्मी की फैमिली है वो सिंगापुर सेटल्ड है, तो हमारे घर थे वहां पर, हमारी फैमिली सपोर्ट भी थी, तो उसकी चीज भी बहुत फर्क पड़ती है जब किसी शहर में जाते, स्पेशल फॉरेन कंट्री में।
0: जी, फाइनली ट्रांसप्लांट सिर्फ सिंगापुर में ही हुआ?
1: जी, सिंगापुर में ट्रांसप्लांट हुआ, और हमारे जो लोकल डॉक्टर थे उन्होंने कहा था कि ट्रांसप्लांट ही करना पड़ेगा और भी ऑप्शन नहीं है।
0: और दूसरे देश में किस तरह का पेपर वर्क आपने वहाँ पर किया?
1: सर देखिए, कुछ 4 महीने पहले हमको वहाँ बुलाया गया, हमारे ब्लड सैंपल्स हुए, हमारे टिश्यूज की मैचिंग हुई थी, और उसके बाद जो गवर्नमेंट उनकी रहती है सिंगापुर में, तो उनके हॉस्पिटल तब भी जो थे वो अंडर दी गवर्नमेंट एक्ट करते थे ताकि इसमें कोई इलीगल ट्रेड ना हो
0: जी।
1: तो मैंने कहा ना, NUH जो एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है वहाँ पर हुआ था, और जो भी पेपर वर्क उनके डायरेक्टर से कंसल्ट होते थे, दे वर फॉलोइंग अ प्रॉपर प्रोटोकॉल। जो हुआ वो बहुत जेन्युइनली काम हुआ है, और उस वक्त कुछ 32 डॉक्टर की टीम थी हमारे ऊपर
0: जी,
1: और जो कि लंदन में भी वॉच किया जा रहा था, लाइव ऑपरेशन हमारा ऑपरेशन सिंगापुर हो रहा था, बट लंदन में उसकी लाइव दिखा रहे थे, सो दैट डॉक्टर वो भी सुपरवाइज कर रहे थे उसको
0: जी। कुलविंदर जी, हम यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और छोटे से अंतराल के बाद वापस आकर अपनी इस चर्चा को जारी रखेंगे।
2: ब्रेक से पहले आइए सुनते हैं भजन सम्राट अनूप जलोटा जी का अंग दान से जुड़ा अपना व्यक्तिगत अनुभव।
3: कहते हैं जान है तो जहान है, बात सच है, लेकिन जब जान नहीं रही तो क्या हम किसी और को जिंदगी दे सकते हैं? जी हाँ, हम जाने के बाद अपनी आंखें किसी को दे सकते हैं, तो हमारी आंखों से वो दुनिया को देख सकता है, हम अपने दूसरे ऑर्गन दे सकते हैं, दिल दे सकते हैं, और किसी और को जिंदगी मिल जाएगी। मेरी वाइफ मेधा, उसका हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ और 13 साल उसने जिंदगी और गुजारी। ये तभी हो पाया कि जिसने हार्ट डोनेट किया था उसको ये अवेयरनेस थी कि मेरे जाने के बाद मैं किसी और को एक्स्ट्रा जिंदगी दे सकता हूँ। अगर ये चीज़ हम आप सब समझ जाएं, तो ना जाने कितने लोगों का संसार खूबसूरत हो सकता है हमारे जाने के बाद। हिंदुस्तान में हर साल करीब 5 लाख लोग इसलिए मर जाते हैं कि उनको वो ऑर्गन नहीं मिलते जिससे कि उनकी ज़िंदगी बच सकती है। आप ऑर्गन डोनेट करके हीरो बन सकते हैं। हीरो बनने के बहुत से तरीके हैं, ये भी एक तरीका है हीरो बनने का, कि ज़िंदगी भर कोई आपकी बातें करेगा। एक व्यक्ति 8 लोगों की ज़िंदगी बचा सकता है। 8 लोगों को आप ऑर्गन डोनेट करते हैं केवल एक बॉडी से, और यदि आप ऐसा करते हैं तो वो सब लोगों के तो आप हीरो हो गए। तो कितना अच्छा होगा कि इस बात को समझें और लोगों को समझाएं। हमारा मकसद यही है कि ये खबर सब तक पहुंचाएं, सब इस बात को जानें कि एक आदमी 8 लोगों की जान बचा सकता है। उन 8 लोगों के आप हीरो बन जाएंगे। तो आज ही प्लेश करिए और हमारा साथ दीजिए।

0: दोस्तों आप सुन रहे हैं ऑर्गन इंडिया का कार्यक्रम जीवन एक अनमोल उपहार।
1: नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर सौरभ और मैं वापस आ गया हूँ हमारे छोटे से अंतराल के बाद। हम ब्रेक में जाने से पहले बात कर रहे थे कुलविंदर ढींगरा जी से, जिन्होंने अपने फादर की जान बचाई अपने लीवर का पोर्शन डोनेट करके। तो कुलविंदर जी, ऑपरेशन हो गया, उसके बाद रिजल्ट, पिताजी की तबीयत कैसी थी, आप कैसा फील कर रहे थे और कभी आपको कुछ भी ऐसी परेशानी हुई क्योंकि आपने लीवर डोनेट किया था इस वजह से? क्योंकि हमारे श्रोता, बहुत सारे श्रोता ऐसे भी रहते हैं जो सेम सिचुएशन फेस कर रहे हैं और उनके अंदर बहुत असमंजस की स्थिति रहती है, बहुत सारे डाउट्स रहते हैं कि मैं ऐसा करूं।
2: दो बातें मैं बताता हूं, क्योंकि मेरा पिताजी से लगाव था और मैं रग्बी प्लेयर भी रहा हूँ और आज मैं खेलता हूँ डेमोन्स्ट्रेशन के लिए। आई एम 55 टुडे। मैं आज भी साइकिल करके दुकान पे आता हूँ, तो एक बारी मैं स्पोर्ट्स खेलता हूँ, आज भी एक्टिव रहता हूँ। तो मेरा पिताजी का जब इंट्रैक्शन हुआ पहली बारी, मुझे व्हील चेयर में लाया गया था। हमारा जो रूम था, पहले तो कॉमन रूम में हम लोग ऑपरेट हुए, तो मेरा ऑपरेशन था कुछ 4 घंटे का, पिताजी का था 8 घंटे का। पर क्योंकि पिताजी उम्र ज्यादा थी और उनकी वेन्स खत्म हो रही थी, उनका लगा 24 घंटे ऑपरेशन, मतलब 24 घंटे बॉडी पापा की खुली रही और मेरा रहा 16 घंटे। 16 घंटे मतलब मेरा 4 से 16 का एक्सटेंड हो गया था। उसका रीजन है सर, डॉक्टर्स कह रहे थे कि इसका लिवर ना लिया जाए क्योंकि इनके पिताजी का लिवर जो ट्रांसप्लांट हो रहा है वो बॉडी खत्म हो रही है अंदर से। बट फिर जो डॉक्टर्स थे उन्होंने कहा इनके पिताजी का इनका बहुत प्यार है, कर दो ऑपरेशन। कई बार पॉजिटिविटी से आदमी ठीक हो जाता है।
1: बिल्कुल।
2: तो देवर थिंकिंग के ना करो, क्योंकि पिताजी की 68 की उम्र में जो बॉडी थी कई सालों से वो भर गई थी उनकी वेन्स, भरना मतलब खत्म हो जाना,
1: कमजोर।
2: लंदन के डॉक्टर्स कह रहे थे कि मत करिए और सिंगापुर के डॉक्टर्स कह रहे थे कि चांस लिया जाए क्योंकि इनका बॉन्डिंग स्ट्रांग है। कई बार बॉन्डिंग के साथ आदमी की बॉडी रिकवर कर गया। तो दिस इज द आंसर के उसके बाद जब मेरे को होश आई 24 घंटे के बाद मुझे व्हील चेयर में पिताजी के पास लेके जाएगा, उनको 40 डेज के बाद आई।
1: हमारे श्रोताओं को आप ये बताइए कि जैसे ट्रांसप्लांट के बाद कितने साल तक आपके पिताजी बिल्कुल ठीक रहे हैं? सर, क्या लिवर में कुछ खराबी की वजह से वो इस दुनिया से गए?
2: नहीं सर, पहली बात बताता हूँ कि ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल हो गया था। ट्रांसप्लांट के सबसे पहले स्टेज होती है कि लिवर के बाद आप आईसीयू से तब छूटते हो जब आपको टॉयलेट आ जाए। तो लिवर का प्राइमरी फंक्शन है बाइल बनाना, साथ ही हमारा खाना पचता है। तो जब लिवर चाहता है खाना तो बाइल के साथ ही टॉयलेट आती है। तो जब मुझे टॉयलेट आई तो मुझे नॉर्मल रूम में भेज दिया गया। पिताजी को टॉयलेट आई तो पिताजी को नॉर्मल रूम में भेज दिया गया। तो टॉयलेट आना मतलब लिवर ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल
1: इज वर्किंग।
2: आपको लिवर अभी बाइल आ रहे हैं, आप टॉयलेट पास कर पा रहे हैं, ठीक है। तो पापा और मैं हर रोज ही मिलते थे। पापा और फूड खाना शुरू कर गए, पर उसके बाद हफ्ते के बाद पापा का हार्ट पे प्रॉब्लम आई। तो हार्ट कहते हैं कि क्योंकि लिवर नॉर्मल काम कर रहा था तो उनकी पूरी बॉडी में एक चमक आ चुकी थी, अभी वेन्स नहीं ले पा रही थी उसको। तो पापा का पहला जो हफ्ते में हुआ तो उसके बाद पापा डिटोरेट हुए, बट वो फिर वापस आ गए क्योंकि हार्ट की उन्होंने जो भी सर्जरी करनी थी या जो वेन्स खराब हुई थी उनको चेंज कर दिया गया था वेन्स। बट 15 डेज लेटर पापा का एओर्टा जो मेन वेन होती है वो बर्स्ट हो गई। तो लिवर तो सक्सेसफुल था बट
1: दूसरे कारण
2: कुछ और कहानी लिखी थी जो हम हर चीज को नहीं जानते। इसलिए जो मेरा फर्ज था, मैंने भाई सेवा थी, मुझे सेवा मिली थी। मैं इस तरह चलता फर्ज भी नहीं कहूंगा, मुझे सेवा मिली गई थी, एक सेवा थी हर्ष से की। और आज भी जब देखता हूँ तो

0: 60% में कटा था साहब
1: जी। आप उसके बाद भी रग्बी खेले इंडियन टीम के लिए?
0: जी बिल्कुल, आई प्ले फॉर इंडिया जब आफ्टर मैच, मैंने एक साल गैप लिया था 2002 में, मैं नहीं खेला। 2003 के सेकंड हाफ में बॉम्बे जिमखाना में वापस आ चुका था, और 2003 में रिवर राफ्टिंग करने गया सर। मैं
1: रिवर राफ्टिंग
0: कर रहा था। मैं आई वेंट टू हेमकुंड साहिब, बद्रीनाथ गया मैं शुक्राने करने के लिए कि जो भी किया भगवान आपने एनर्जी दी। और एक अंदर का सहमति थी कि जिस तरह से मैं बड़ा हुआ हूँ, पिताजी ने मुझे हट्टा कट्टा तकड़ा बनाया, मेरी माता जी ने, मेरे पिताजी ने, तो अंदर से एक एनर्जी थी कि यार जो है वो लिखा हुआ था। मैं ऑनर समझता हूँ अपने आप को हर चीज में।
1: तो जिंदर जी, यहाँ पर हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक पर अपनी चर्चा को जारी रखेंगे और कंक्लूजन पर आएंगे।

0: दोस्तों आप सुन रहे हैं ऑर्गन इंडिया का कार्यक्रम जीवन एक अनमोल उपहार।
1: नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर सौरभ और हम बात कर रहे थे ब्रेक में जाने से कुलविंदर जी से, जिन्होंने बहुत कुछ बताया कि किस तरह से पूरी चीजें हुई और किस तरह से पूरी घटना ने अपने रुख मोड़े। कुलविंदर जी, उस टाइम से और आज के टाइम में आपको क्या फर्क देखने को मिलता है सोसाइटी में? आप अपने आसपास के लोगों को अगर देखें तो अंगदान के प्रति उनका रवैया, उनकी सोच, इन सब चीजों पे आप कुछ कहना चाहेंगे?
2: सर देखिए, मैं तो इतना बताऊंगा कि अवेयरनेस बहुत कम है, पहली बात सच बताऊं, और दूसरा लोग घबराते हैं इस चीज को सोच के कि अगर दिया तो क्या होगा। तो मुझे ये चीज कहनी पड़ेगी कि हमको अवेयरनेस बढ़ानी है, और आपकी बॉडी में और आपके पास स्ट्रेंथ है किसी को बचाने के लिए, तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज अपनी फैमिली, अपने लड़की आदमी जात, जैसे कि मैं अपना ब्लड डोनेट करता हूँ साल में दो बार ही, वॉलंटरी करने जाता हूँ, अभी नहीं शुरू से कर रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि चीज देने से अगर आप किसी को बचा सकते हो तो आपका यहाँ आना इस पृथ्वी पे सर्विस वर्थ इट। भाई तो हम एनिमल्स लाइफ जीते हैं, अपने भी जीते हैं। आई थिंक मेरा सबसे ये रहे कि आप घबराइए मत, एडवांसमेंट हो चुकी है, स्पेशली जो डोनर्स हैं उनको कुछ नहीं होता, रेसिपिएंट तो जो रहता है उसको दिक्कत आ सकती है क्योंकि ही इज अ वीक पर्सन। माय रिक्वेस्ट और मेरी सबसे प्रार्थना रहेगी कि घबराइएगा मत, एक आंखें बंद करिए जिसको आप मानते हैं भगवान के साथ, अरदास करो या प्रेयर करो कि चीज ठीक हो, और उसके साथ ही चलिए आगे, देन इट्स इनफाइनाइट। आपको इतनी खुशी मिलेगी जिसको आप नहीं जान पाएंगे, बट अंदर स्ट्रेंथ जो है बहुत बढ़ जाती है सर, यही कहूंगा सर मैं।
1: आप जैसे लोगों के एक्सपीरियंसेस और लिखता जब हम शेयर करते हैं तो उनको एक रियल चीज पता चलती है कि कितनी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी, कितनी प्रॉब्लम्स नहीं फेस करनी पड़ेंगी, कितनी मनगढ़ंत बातें और कितनी एक्चुअल प्रॉब्लम्स आती हैं। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और बहुत सारी जानकारी भी हमारे श्रोताओं को मिली। श्रोताओं से भी मैं यही आग्रह करूंगा कि जैसा कुलविंदर जी ने कहा कि अवेयरनेस बहुत कम है, अगर आप कुछ भी जानना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, आप इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं, आपको हर जानकारी वहां पर मिलेगी, लेकिन अपने क्वेश्चंस को अपने अंदर तक ना रखें, उनको बाहर लाएं और उनके आंसर ढूंढें। जब आंसर ढूंढेंगे तभी अवेयरनेस बढ़ेगी। अक्सर होता ये है कि विषय ऐसा है ना, संवेदनशील है, कि हमारे अंदर जब कोई क्वेश्चन आता है, सवाल आता है, तो हम उस सवाल को वहीं के वहीं रोक देते हैं, वहीं रहने देते हैं, जैसा कहता है उसका आंसर नहीं ढूंढते। तो इस शो के माध्यम से हमारा यही पर्पज है कि ज्यादा से ज्यादा जानकारी आपको दी जाए और संविधान के उस बारे में जागरूकता बढ़ाई जाए, ताकि ऐसे लोग जो किसी ना किसी अंग का वेट कर रहे हैं ट्रांसप्लांट होने के लिए, उनको जल्दी से जल्दी अंग मिले और उनकी तबीयत स्वस्थ हो। इस तरह से हम बहुत सारे लोगों की जिंदगी बचा सकते हैं। कुलविंदर जी, मैं आपका फिर से एक बार धन्यवाद करना चाहूंगा, आपने इतने नोटिस पर हमें समय दिया और इतनी अच्छी जानकारी, धन्यवाद।
3: आओ मिलके एक दिया जलाएं, अंतरतम के विश्वास संग बाती नेह की सजाएं, आओ मिलके एक दिया जलाएं, एकता का परचम चम ओर फहराएं, आओ मिलके एक दिया जलाएं, अंतरतम के विश्वास संग बाती नेह की सजाएं, आओ मिलके एक दिया जलाएं। दिया है हौसलों की उड़ान का, दिया है उत्सर्ग के सम्मान का, दिया है राम का रहमान का, दिया है समग्र हिंदुस्तान का, जीवन संगीत बजाएं, आओ मिलके एक दिया जलाएं, अंतरतम के विश्वास संग बाती नेह की सजाएं, आओ मिलके एक दिया जलाएं।

0: आज का ये विशेष कार्यक्रम हम यहीं समाप्त करते हैं और आपसे इसी संदेश के साथ विदा लेते हैं कि अगर हम अंग दान या नेत्र दान करें या अपने जाने के बाद किसी के जीवन में खुशियां भर सकते हैं तो हमें ये जरूर करना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800120 3648 पर फोन कर सकते हैं या info@organindia.org पर ईमेल भी कर सकते हैं। यदि आप अंग दान का संकल्प लेना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट www.organindia.org पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। हमारी तरफ से आपको एक ऑर्गन डोनर कार्ड और एक सर्टिफिकेट ईमेल किया जाएगा। इसके बारे में आप अपने परिवार को जरूर बताएं और अपने आसपास सभी को प्रेरणा दें। अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।
1: आओ मिलके एक दिया जलाएं, अंतरतम के विश्वास संग बाती नेह की सजाएं। आओ मिलके एक दिया जलाएं, एकता का परचम चह ओर फहराएं। आओ मिलके एक दिया जलाएं, अंतरतम के विश्वास संग बाती नेह की सजाएं। आओ मिलके एक दिया जलाएं, दिया है हौसलों की उड़ान का, दिया है उत्सर्ग के सम्मान का, दिया है राम का रहमान का, दिया है समग्र हिंदुस्तान का, जीवन संगीत बजाएं। आओ मिलके एक दिया जलाएं, अंतरतम के विश्वास संग बाती नेह की सजाएं। आओ मिलके एक दिया जलाएं।
0: आज का ये विशेष कार्यक्रम हम यहीं समाप्त करते हैं और आपसे इसी संदेश के साथ विदा लेते हैं कि अगर हम अंग दान या नेत्र दान करें या अपने जाने के बाद किसी के जीवन में खुशियां भर सकते हैं तो हमें ये जरूर करना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800120 3648 पर फोन कर सकते हैं या info@organindia.org पर ईमेल भी कर सकते हैं। यदि आप अंग दान का संकल्प लेना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट www.organindia.org पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। हमारी तरफ से आपको एक ऑर्गन डोनर कार्ड और एक सर्टिफिकेट ईमेल किया जाएगा। इसके बारे में आप अपने परिवार को जरूर बताएं और अपने आसपास सभी को प्रेरणा दें। अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।

0: जीवन एक अनमोल उपहार है, अपने जाने के बाद किसी और के जीवन में उम्मीद भरें, अंगदान का संकल्प लें, अंगदान जीवन दान।
1: रेडियो कार्यक्रम संबंधी अस्वीकरण द ऑर्गन ऑर्गन रिसीविंग एंड गिविंग अवेयरनेस नेटवर्क पराशर फाउंडेशन तथा रेडियो स्टेशन उसके मालिक कर्मचारी प्रबंधन प्रायोजक एवं सहयोगी जिन्हें यहां सामूहिक रूप से हम कहा गया है वार्ता कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ताओं या उनके अतिथियों द्वारा दी गई किसी राय अथवा वक्तव्य की कोई जिम्मेदारी नहीं लेते। वार्ता कार्यक्रम के दौरान उसमें उपस्थित अतिथियों समेत दिए गए कोई भी बयान या मत या विषय का हम किसी भी प्रकार से समर्थन नहीं करते हैं। हम इसे सत्य कहकर इसका समर्थन नहीं कर रहे, इसका निर्णय आप स्वयं करें। यद्यपि हमारी कोशिश ईमानदारी से सच कहने की ही रहेगी तथा यदि कोई अपेक्षित सत्य हो तो उस पर सवाल करने का अधिकार हमारे पास रहेगा। हमारा इरादा किसी को बदनाम करना, किसी से भेदभाव करना, नफरत फैलाना या किसी को दुख पहुंचाने का नहीं है। इसके अलावा ये कोई चिकित्सा सलाह नहीं है और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी चिकित्सा उपचार से संबंधित नहीं है। हमारा विश्वास है कि ये हमारे बुनियादी अधिकारों का हिस्सा है और साथ ही हमारा कर्तव्य है कि हम इस जानकारी या राय का प्रसार करें। हालांकि हम अन्य लोगों की लिखित बोली गई या सांकेतिक राय की जिम्मेदारी नहीं ले सकते।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। श्री मोदी ने कहा कि वे राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर इंडोनेशिया जा रहे हैं। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ वार्ता करेंगे और रणनीतिक भागीदारी में प्रगति की समीक्षा करेंगे। वार्ता में दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होने की उम्मीद है, जिसमें रक्षा सहयोग, व्यापार, निवेश और ऊर्जा सुरक्षा तथा सांस्कृतिक सहयोग पर खास ध्यान दिया जाएगा। जकार्ता कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण प्रधानमंत्री मोदी का भारतीय समुदाय को संबोधन होगा, जिसे लेकर पूरे देश में उत्साह है। 8 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी ऐतिहासिक प्रम्बनन मंदिर के दर्शन के लिए योग्यकार्ता जाएंगे। जकार्ता से संदीपन दासगुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
0: ब्रिक्स देशों के मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक आज गुवाहाटी में शुरू हो गई है। 2 दिन की इस बैठक का आयोजन गृह मंत्रालय के अंतर्गत स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने किया है। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के महानिदेशक अनुराग गर्ग ने कहा कि ब्रिक्स के विस्तार ने मादक पदार्थों की तस्करी और मादक द्रव्यों के सेवन सहित वैश्विक चुनौतियों से निपटने की समूह की क्षमता को मजबूत किया है। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह में कहा कि सबको साथ लेकर चलना ही सहकारिता है। उन्होंने कहा कि सहकारिता मंत्रालय राज्यों की मदद करने के लिए है। श्री शाह ने कहा कि कृषि और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में कई क्रांतिकारी कार्य किए गए हैं। उन्होंने कहा कि आज सभी सहकारी समितियों का डेटा एक जगह उपलब्ध है। श्री शाह ने कहा कि 9 प्रमुख राष्ट्रीय स्तर की सहकारी समिति बनाई गई हैं।
2: सहकारिता मंत्रालय के इनिशिएटिव से कुल 9 राष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाली सहकारी समिति बनाकर देश से लेकर ग्राम तक इन 9 क्षेत्रों में सहकारिता मंत्रालय को एक माला में पिरोने का काम हमने किया है।
0: सरकार ने कहा है कि 104 करोड़ से अधिक स्वास्थ्य कार्ड, 93 करोड़ से अधिक आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता आभा से जोड़े गए हैं। ये देश की एकीकृत डिजिटल सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति है। आभा आधार कार्ड की तरह 14 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या है, जो एक व्यक्ति को व्यापक स्वास्थ्य प्रणाली से सुरक्षित रूप से जोड़ती है। ये प्रणाली मरीजों को डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच प्रदान करती है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने राष्ट्रीय पात्रता और प्रवेश परीक्षा NEET UG 2026 की आवेदन फीस वापसी के लिए बैंक खाता विवरण अपडेट करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जुलाई कर दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में NTA ने सूचित किया कि जिन उम्मीदवारों ने अपने बैंक खाता विवरण की पुष्टि कर दी है, उनके लिए रिफंड प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब तक केवल 8,29,510 उम्मीदवारों ने ही अपने बैंक विवरण में सुधार या अपडेट किया है। निर्वाचन आयोग ने बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों के उपचुनावों के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। बिहार में बांकीपुर, गुजरात में मंजलपुर और मध्य प्रदेश में दतिया विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होंगे। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल से राज्यसभा की 3 सीटों के लिए उपचुनाव की घोषणा की है। ये सीटें राज्यसभा सदस्य सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक बराइक के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। समग्र राष्ट्र आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। फीफा विश्व कप में आज इंग्लैंड ने मेक्सिको को 3-2 से हरा दिया और क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर ली। ब्राजील के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी नेमार जूनियर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया है। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के कारोबार में वृद्धि का रुख है। सेंसेक्स 576 अंक बढ़कर 78,340 और निफ्टी 168 अंक बढ़कर 24,438 पर पहुँच गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: बोलो भाई।
1: बस बताने आया हूँ, स्वच्छता की परीक्षा शुरू हो चुकी है, तैयार हो ना?
2: स्वच्छ सर्वेक्षण तो अभी कर लीजिए ना, आइए।
3: हमारा घर स्वच्छता की हर परीक्षा में अव्वल ही आएगा, और तो और हम सब शौचालय का भी इस्तेमाल करते हैं।
1: पर इस परीक्षा में तो आप सब फेल हो गए।
2: फेल?
1: स्वच्छता की असली परीक्षा सिर्फ अपने अपने घरों की नहीं, हमारे पूरे गांव की है। आखिर गांव भी तो हम सबका घर है। क्यों? अब तो गांव खुले में शौच मुक्त भी है। मिलके साफ रखेंगे तो गांव को मिलेगा फर्स्ट क्लास। तो शुरू कर दो परीक्षा की तैयारी,

0: अरे देवा, बड़ा झटका लगा है।
1: तुम्हारे भी अकाउंट से 5 लाख जाते तो ऐसा ही होता।
2: मेरे अकाउंट से 5 लाख?
1: पाटिल, फोकस।
2: सॉरी,
1: ये पढ़ो।
2: डियर यूजर, योर बैंक अकाउंट विल ब्लॉक टुडे। प्लीज इमीडिएटली अपडेट KYC। लिंक भी है। अरे मैडम, ये बैंक का ऐप लगता है।
1: KYC अपडेट करने के लिए ऐप डाउनलोड। स्ट्रेंज, दिखाओ। यहाँ इन्होंने बैंक का समझ के फेक ऐप डाउनलोड किया, यूजर आईडी, पासवर्ड, ATM पिन, अकाउंट नंबर डाला।
2: और वहाँ फ्रॉडस्टर्स को मिल गया एंट्री इधर, डिटेल्स उधर।
1: जीनियस पाटिल,
2: थैंक यू। पर मैडम, ये OTP?
1: वो भी ऐप से ऑटो फॉरवर्ड हो जाता है।
2: ओह माय फ्रॉड।
1: तुम तो समझ गए। और आप अनजान लिंक से कोई ऐप डाउनलोड ना करें। अक्सर फ्रॉडस्टर्स नकली बैंक ऑफिशियल्स बनके ऐप्स डाउनलोड करवाते हैं और फोन से आपके बैंक के सारे डिटेल्स कॉपी करके अकाउंट से पैसा चुरा लेते हैं। बैंकिंग ऐप्स सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट से ही डाउनलोड करें। सतर्क रहें, आइए मिलकर चीट्स को बीट करें।
3: तुम लोगों को खोने से डरते हो मित्र, कभी ये भी सोचो कि कहीं इस चक्कर में तुम खुद को तो नहीं खो रहे। जो तुम्हारी खामोशी को नहीं समझ सकता, वो तुम्हारे शब्दों को भी कभी नहीं समझ पाएगा। अकेले चलने का साहस रखो मित्र, क्योंकि यहाँ सलाह देने वाले हजारों मिलेंगे पर साथ देने वाला कोई नहीं। जिंदगी में कुछ लोग तुम्हें सिर्फ ये सिखाने आते हैं कि हर किसी पर भरोसा कभी नहीं करना चाहिए। जितना तुम लोगों के सामने सीधे बनोगे मित्र, ये दुनिया तुम्हें उतना ही ज्यादा उलझाती चली जाएगी।
4: क्या आप नहीं चाहते कि आपका व्यापार छूले आसमान की ऊंचाइयां? तो अपने व्यापार को कीजिए प्रचारित सही तरीके से सही जगह पर। अब विज्ञापन दीजिए और बन जाइए हर किसी की पहली पसंद। व्यापार को मिलेगी नई पहचान, ग्राहकों की संख्या में होगा जबरदस्त इजाफा और आपका मुनाफा बस पूछिए मत। हमारे साथ जुड़िए और देखिए फर्क को। अपने व्यापार को दें नई उड़ान। विज्ञापन देने के लिए आज ही संपर्क करें 9816473615 पर। आप बढ़ेंगे तभी तो देश बढ़ेगा।
5: नमस्ते, मैं विकास हूँ।
6: अरे बहू, देख क्या रही हो, प्रगति खुद चलकर हमारे दरवाजे पर आई है, उसका स्वागत करो।
7: पापा जी, ये कह रहे विकास और आप कह रहे प्रगति?
8: ये जनगणना के लिए आए हैं। जनगणना से हर जन की प्रगति और विकास दोनों होता है।
5: जी हाँ, मैं पूछूंगा कुछ सवाल और आपके द्वारा दी गई सही और सटीक जानकारी से एकत्र होंगे कुछ आंकड़े, जिससे देश बनाएगा नीतियां और योजनाएं और उससे हर घर तक पहुंचेगी प्रगति और विकास।
7: अब समझी, जनगणना से हमारी प्रगति और हमारा विकास। स्वागत है
9: अंकल, मेरे लिए भी कुछ है?
5: जी हाँ, एक उज्जवल कल। देश में जनगणना 2027 शुरू हो चुकी है। जब इन्यूमरेटर आपके घर आए तो उनका स्वागत कीजिए, उन्हें सही और सटीक जानकारी दीजिए, क्योंकि आपके दिए गए सही जवाब से ही देश आगे बढ़ेगा। चलो निभाएं अपनी जिम्मेदारी, करें जनगणना में भागीदारी।
10: हमारी जनगणना, हमारा विकास।
11: और भाई शुक्ला, तेरी टीबी के क्या हाल हैं?
12: अरे भाई, 2-4 हफ्ते का इलाज करवाया और टीबी की हो गई अजामत।
13: ये लीजिए हुजूर, आपकी ये हजामत भी पूरी हो गई।
12: ये क्या, आधी दाढ़ी? भाई कर क्या रहे हो?
13: कमाल करते हैं आप, आधी दाढ़ी मंजूर नहीं, टीबी का आधा अधूरा इलाज मंजूर है आपको।
12: है?
13: याद रखिए, टीबी का आधा अधूरा इलाज करवाइएगा तो टीबी आपको दोबारा हो सकता है, इसलिए टीबी से मुक्ति पाने के लिए टीबी का पूरा इलाज करवाइए। फुल कोर्स, इंडिया वर्सेस टीबी। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
14: मम्मी, पति और पत्नी के गुस्से में क्या अंतर होता है?
15: पति का गुस्सा खांसी जुकाम की तरह होता है, जो आता है चला जाता है, किसी को पता ही नहीं चलता। और पत्नी का गुस्सा कोरोना वायरस की तरह होता है, जो उसके संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति को प्रभावित करता है।
14: बात तो सही है।

दोस्तों, इस खूबसूरत से गीत के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम पंजाबी गीतों में। तो आइए फिर से लेकर चलते हैं आपको एक और प्यारे से गीत की तरफ। एंजॉय कीजिए ये खूबसूरत सा पंजाबी गीत।

दोस्तों आप सभी अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ जुड़े हुए हैं 91.9 MHz पर। और आज का ये कार्यक्रम यानी कि पंजाबी गीतों का ये कार्यक्रम आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ।

0: बोलो भाई।
1: बस बताने आया हूँ, स्वच्छता की परीक्षा शुरू हो चुकी है, तैयार हो ना?
0: स्वच्छ सर्वेक्षण तो अभी कर लीजिए ना, आइए।
2: हमारा घर स्वच्छता की हर परीक्षा में अव्वल ही आएगा, और तो और हम सब शौचालय का भी इस्तेमाल करते हैं।
1: पर इस परीक्षा में तो आप सब फेल हो गए।
0: फेल?
1: स्वच्छता की असली परीक्षा सिर्फ अपने अपने घरों की नहीं, हमारे पूरे गाँव की है। आखिर गाँव भी तो हम सबका घर है, क्यों? अब तो गाँव खुले में शौच मुक्त भी है। मिलके साफ रखेंगे तो गांव को मिलेगा फर्स्ट क्लास। तो शुरू कर दो परीक्षा की तैयारी।

0: अरे देवा, बड़ा झटका लगा है।
1: तुम्हारे भी अकाउंट से 5 लाख जाते तो ऐसा ही होता।
2: मेरे अकाउंट से 5 लाख?
1: पाटिल फोकस। सॉरी, ये पढ़ो।
3: डियर यूजर, योर बैंक अकाउंट विल ब्लॉक टुडे। प्लीज इमीडिएटली अपडेट KYC। लिंक भी है।
4: अरे मैडम, ये बैंक का ऐप लगता है।
1: KYC अपडेट करने के लिए ऐप डाउनलोड? स्ट्रेंज, दिखाओ। यहाँ इन्होंने बैंक का समझ के फेक ऐप डाउनलोड किया, यूजर आईडी, पासवर्ड, ATM पिन, अकाउंट नंबर डाला।
2: और वहाँ फ्रॉडस्टर्स को मिल गया एंट्री इधर, डिटेल्स उधर।
1: जीनियस पाटिल,
2: थैंक यू। पर मैडम, ये

0: ओटीपी,
1: वो भी ऐप से ऑटो फॉरवर्ड हो जाता है।
0: ओह माय फ्रॉड,
2: तुम तो समझ गए।
1: और आप अनजान लिंक से कोई ऐप डाउनलोड ना करें। अक्सर फ्रॉडस्टर्स नकली बैंक ऑफिशियल्स बनके ऐप्स डाउनलोड करवाते हैं और फोन से आपके बैंक के सारे डिटेल्स कॉपी करके अकाउंट से पैसा चुरा लेते हैं। बैंकिंग ऐप्स सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट से ही डाउनलोड करें। सतर्क रहें, आइए मिलकर चीट्स को बीट करें।
3: तुम लोगों को खोने से डरते हो मित्र, कभी ये भी सोचो कि कहीं इस चक्कर में तुम खुद को तो नहीं खो रहे। जो तुम्हारी खामोशी को नहीं समझ सकता, वो तुम्हारे शब्दों को भी कभी नहीं समझ पाएगा। अकेले चलने का साहस रखो मित्र, क्योंकि यहाँ सलाह देने वाले हजारों मिलेंगे पर साथ देने वाला कोई नहीं। जिंदगी में कुछ लोग तुम्हें सिर्फ ये सिखाने आते हैं कि हर किसी पर भरोसा कभी नहीं करना चाहिए। जितना तुम लोगों के सामने सीधे बनोगे मित्र, ये दुनिया तुम्हें उतना ही ज्यादा उलझाती चली जाएगी।
4: क्या आप नहीं चाहते कि आपका व्यापार छूले आसमान की ऊंचाइयां? तो अपने व्यापार को कीजिए प्रचारित सही तरीके से सही जगह पर। अब विज्ञापन दीजिए और बन जाइए हर किसी की पहली पसंद। व्यापार को मिलेगी नई पहचान, ग्राहकों की संख्या में होगा जबरदस्त इजाफा और आपका मुनाफा बस पूछिए मत। हमारे साथ जुड़िए और देखिए फर्क खुद। अपने व्यापार को दें नई उड़ान। विज्ञापन देने के लिए आज ही संपर्क करें 9816473615 पर। आप बढ़ेंगे तभी तो देश बढ़ेगा।
5: नमस्ते, मैं विकास हूँ।
6: अरे बहू, देख क्या रही हो, प्रगति खुद चलकर हमारे दरवाजे पर आई है, उसका स्वागत करो।
7: पापा जी, ये कह रहे विकास और आप कह रहे प्रगति?
8: ये जनगणना के लिए आए हैं। जनगणना से हर जन की प्रगति और विकास दोनों होता है।
5: जी हाँ, मैं पूछूंगा कुछ सवाल और आपके द्वारा दी गई सही और सटीक जानकारी से एकत्र होंगे कुछ आंकड़े, जिससे देश बनाएगा नीतियां और योजनाएं और उससे हर घर तक पहुंचेगी प्रगति और विकास।
7: अब समझी, जनगणना से हमारी प्रगति और हमारा विकास। स्वागत है
9: अंकल, मेरे लिए भी कुछ है?
5: जी हाँ, एक उज्जवल कल। देश में जनगणना 2027 शुरू हो चुकी है। जब इन्यूमरेटर आपके घर आए तो उनका स्वागत कीजिए, उन्हें सही और सटीक जानकारी दीजिए, क्योंकि आपके दिए गए सही जवाब से ही देश आगे बढ़ेगा। चलो निभाएं अपनी जिम्मेदारी, करें जनगणना में भागीदारी।
10: हमारी जनगणना, हमारा विकास।
11: और भाई शुक्ला, तेरी टीबी के क्या हाल हैं?
12: अरे भाई, 2-4 हफ्ते का इलाज करवाया और टीबी की हो गई अजामत।
13: ये लीजिए हुजूर, आपकी ये हजामत भी पूरी हो गई।
12: ये क्या, आधी दाढ़ी? भाई कर क्या रहे हो?
13: कमाल करते हैं आप, आधी दाढ़ी मंजूर नहीं, टीबी का आधा अधूरा इलाज मंजूर है आपको।
12: है?
13: याद रखिए, टीबी का आधा अधूरा इलाज करवाइएगा तो टीबी आपको दोबारा हो सकता है, इसलिए टीबी से मुक्ति पाने के लिए टीबी का पूरा इलाज करवाइए। फुल कोर्स, इंडिया वर्सेस टीबी। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
12: मम्मी, पति और पत्नी के गुस्से में क्या अंतर होता है?
14: पति का गुस्सा खांसी जुकाम की तरह होता है, जो आता है चला जाता है, किसी को पता ही नहीं चलता। और पत्नी का गुस्सा कोरोना वायरस की तरह होता है, जो उसके संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति को प्रभावित करता है।
12: बात तो सही है।

कानवी दशमलव दो मेगाहर्ट्स पर ये तो हाँ सारे अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला तो हाँ सारी कार्यक्रम करने जुड़ी होने न कने तो हाँ सारे जो भी इंतजार चिड़े से जरूर रहता है कि कालू दिया दो बजे न कने कालू दिया तो हाँ सारी इस कार्यक्रम दे सफर करने जुड़ते न तो शो तो सफर की शुरुआत हाँ करीती है कने तो हाँ सारे भी इस कार्यक्रम दे सफर करने जुड़िया ये सफर तो हाँ तक रहना है दो ते तीन बजे तक कने अजकना जेड़ा दिन है से कयो खास है या क्या खास दिन हाँ जेड़े से बना देन सभी जरूर तो हाँ तक पहुँचाने है आज हाँ जेड़ा खास दिन बना देन से बना देन विश्व ग्रामीण विकास दिवस तो जरूर ये उपर हाँ कार्यक्रम च गलबात करनी है कने तो हाँ सारे भी इस कार्यक्रम दे सफर च हाँ कने जुड़ी सकते कने हाँ कने गलबात जेड़े से जरूर करी सकते कशो तो जालू गाँव की गल आती है या गाँव का जेड़ा रहन सहन है सो तो सारे जो पता है कि हर कुसी वास्ते बेहतर खास है ठीक है विकास होना भी जरूरी है पर जेड़ा गाँव का रहन सहन है से बड़ा ही प्यारा है तो जरूर तो हाँ भी अपनी जेड़ा गल्ला न से इस कार्यक्रम के माध्यम कने अहाँ कने साझा करी सकते कने अहाँ कने अपनी कोई छोटी दी जेड़ा स्टोरी है से भी जरूर साझा करी सकते कि गाँव का जेड़ा रहन सहन है या अहाँ की जेड़ा प्रकृति है जेड़ा प्रकृति है तिहादा अहाँ के जीवन च कितना ज़्यादा रोल है कने हर चीज़ का अहाँ के जीवन च कितना ज़्यादा रोल है तो जुड़ने वास्ते जेड़ा अहाँ का नंबर है से तुह तक पहुँचाएंगे न क्योंकि नंबर तुह तक पहुँचाऊंगा ताई तो तुह इस नंबर पर कॉल करी सकते या टेक्स मैसेज करी सकते या व्हाट्सएप मैसेज करी सकते नंबर है 701-811-7091 तो इस नंबर पर तो हाँ कॉल करा या टेक्स मैसेज करा या व्हाट्सएप मैसेज करा कने हाँ कार्यक्रम की जेड़ा शुरुआत है स कर देन फिर ही तो हाँ तक गलबात जेड़े से लेकरी आते न तशो तो इस प्यारे दे गीत कने हाँ अपने कार्यक्रम का जेड़ा आगाज है स करा देन तो हाँ सारे भी इस गीत जो इंजॉय करा कने इन्हें सुनते रहे अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला।

कानवी दशमलव 2 MHz पर ये दुहा सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला तुह सारे इस वक्त कार्यक्रम सुना देना अपनी रेडियो तो शशि कन्ने फेसबुक लाइव भी तुह दिखा देने न जितने भी जेड़ा लिसनर हैं श्रोता हैं रेडियो सेट कन्ने भी जुड़े होने न कन्ने फेसबुक लाइव कन्ने भी जुड़े होने न तिना जो भी शशि दा प्यार भरा स्वागत है प्यार भरा नमस्ते है तश्रोताओं तुह सारी भी इस कार्यक्रम के सफर कन्ने जुड़ी सकते कन्ने हाँ कन्ने गल बात जिड़े से जरूर करी सकते तश्रोताओं गल बात हाँ जिड़ा आज करा दे न आजकने दिने दी गल करिए 6 जुलाई 2026 दी अहां गल करना तो आज सोमवार दा ए दिन तुहां वास्ते भी खास है कने तुहां अपना जिड़ा अजकना जिड़ा दिन है से किस प्रकार इंजॉय करा दे न कने अपने जिड़ा कामकार हैं सभी तुहां जरूर करा दे होने न क्योंकि वैसे भी कामकार जिड़ा न से जितने भी श्रोता न तिना जो पियो न कने कई जिड़ा न अपने कामकार ते बेली भी होई हो न उरां दा जिड़ा काम है स्याहां जो पिया है कने तुहां सारे भी उर भी लगा दे होने न कने अपना जिड़ा रेडियो गुंजन धर्मशाला कार्यक्रम तुहां सारे सुना दे न माटी दी महक दशरतों माटी दी महक दा मतलब है कि यहाँ जो अपनी मिट्टी कन्ने जोड़ी करी रखता है कने यहाँ किस प्रकार यहाँ किस प्रकार जिड़े से अपनी मिट्टी कन्ने जुड़े हो न या अपना जिड़ा गांव दा रहन सहन है तिस कन्ने जुड़े हो न क्योंकि कुछ बचपने दियाँ जिड़ा यादा न से यहाँ जो फिरी ते याद होंदियाँ न क्योंकि कुथी ना कुथी ये यादा ही यहाँ जो अगर अहा इन यादा जो संजोई करी रखते न तो बड़ी अच्छी गल है तशो तो इसी कन्ने अगर अहाँ गाँव दा रहन सहन पर गल करिए ता पुराने समय दियाँ कुछ गल्ला अहाँ फिरी ते ताज़ा करते न कने तुहां भी जरूर तिना जो ताज़ा करा दे होने न कि यहाँ किस प्रकार अपना जेड़ा गाँव दा रहन सहन था या अपना जेड़ा बचपन है से किस प्रकार जेड़े से गाँव च बिताया है क्योंकि पहले प्यार भावना जेड़े से एक ही दुए च ज़्यादा दिखने जो मिलती थी कने गाँव की ये गल है कि हर काम अहाँ मिली जुली करी करते थे चाहे से खेती बाड़ी दे चाहे से शादी विवाह या कोई भी काम है हर काम अहाँ मिली जुली करी करते थे कने तो इस कम्मे करने दा अपना ही अलग जिड़ा अंदाज है से आंदा था अब बोड़ियाँ की गल करिए बोड़ियाँ भी अहाँ दे जिड़ा गाँव की गल करिए तो बोड़ियाँ का जिड़ा पानी है ज़्यादातर अहाँ बोड़ियाँ का पानी जिड़े से यूज़ करते थे या बोड़ियाँ जो जानते थे फिर तिना दा पानी जिड़े से ले करी आते थे कने कुछ ना कुछ अहाँ की जिड़ा सेहत है सभी फिट एंड फाइन रहती थी नदी नाले कितने साफ सुंदर जिड़े से रहते थे जल तो हाँ नदियाँ की आवाज़ सुनते न तो से कुछ ना कुछ अहाँ जो बोल दिया न पर अहाँ क्या समझते न से यहाँ पर निर्भर करता है यहाँ किस प्रकार अपने जेड़ा नदी नाले न तिना जो साफ सुथरा जेड़ा से रखा दे न उन्हें दी गल करिए कुल्ला दी यहाँ गल करते न तो पहले होंदा था कि कुल्ला जेड़ा से साफ सुथरियाँ रहनियाँ थी तो इस जेड़ा से अगर अहाँ तिना जो साफ सुथरा रखते न ताई से पानी जेड़े से कुल्ला दे माध्यम ने अग्गे बढ़ता है कने अगर अहाँ तिना जो साफ सुथरा नहीं रखते न तो सही पानी जेड़े से सड़क च फैलता है तो शो तो दिखा कुथी ना कुथी ठीक है जागरूक होना भी जरूरी है विकास करना भी जरूरी है पर अपना जेड़ा गाँव की जेड़ा खासियत है उस जो भी हमेशा कायम रखा दशोताओं तुह सारे भी इस कार्यक्रम के सफर जहाँ कन्ने जुड़ी सकते कने अहाँ कन्ने गल बात जिड़े से जरूर करी सकते इसी गल बात कन्ने अहाँ कार्यक्रम के सफर जो अगे बढ़ाते न कने तुह तक पहुँचाते न अगली फरमाइश तुह सारे भी इंतजार जिड़े से जरूर करा दे होने न कि अगली फरमाइश अहाँ तक पहुँचे ये गाना बड़ा प्यारा है कने बड़ा ही अच्छा गाना है अगर तुहां इस गाने जो हमेशा सुनते भी हैं कने सुनना तो बनता है ना जलू ये गाना कुछ ना कुछ अहां जो याद जिड़े से जरूर दिलांदा है
दर्शकों तो सारे

0: कानवी दशमलव दो मेगा हर्ट्स पर ए है तो हाँ सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला तो हाँ सारे सुनिया ये प्यारा दिया गीत प्यारी दे फरमाइश जीना कांगड़े दा तशो तो जीना कांगड़े दा बड़ा प्यार है कहने तो हाँ सारे जो पता है जालू आहां गल करते न अपने गाँव दी या अपने शहर दी तो है क्या लगता गाँव का रहन सहन अच्छा है कि शहर का जिहड़ा रहन सहन है से अच्छा है। वैसे तो शहर की अहाँ गल करिए हर हर जिहड़ा कोई भी चीज़ है से अहाँ जो मिली आती है समय के अनुसार पर कुथी ना कुथी जिहड़ा गाँव का रहन सहन है से अहाँ वास्ते सबसे बेस्ट है कन्या अहाँ दे जेड़ा एक श्रोता हाँ कन्या जुड़े न जरूर अहाँ तिना कन्या गलबात करनी है। हेलो
1: हेलो
0: हेलो नमस्ते जी।
1: नमस्ते मैडम जी।
0: जी स्वागत है जी तुहंदा रेडियो गुंजन धर्मशाला च। ठीक ठाक है न?
1: धन्यवाद मैडम जी। ठीक ठाक मैडम जी, तुसा ठीक ठाक मैडम जी?
0: जी अहाँ भी ठीक ठाक है जी।
1: चलो ठीक ठाक ही रहना चाहिए मैडम जी।
0: जी तो हाँ अपना ना दसी दिया कने कोहा जगह दे रहने वाले न सभी जरूर दसी दिया जी।
1: सुनील कुमार बोले मैडम जी कोठियां जलोट दे।
0: जी तो सुनील जी कोठियां जलोट आ रहे हैं क्या हाल चाल हैं?
1: ठीक ठाक न मैडम बढ़िया ने।
0: जी बढ़िया चाहिए ना जी।
1: हाँ जी मैडम जी।
0: जी तो हाँ मेरी गल बात जरूर सुनी ली होनी है।
1: मैं तो ऑन ही किता मैडम जी रेडियो ना ऑन।
0: जी अच्छा रेडियो सेट ऑन ही ऑन किता कने कॉल करी थी तो
1: हां जी मैडम जी।
0: जी ता आज हां जेड़ा कार्यक्रम च गल बात करा देन वैसे ता आज हां खास दिन बना दे ना जी।
1: हां जी
0: क्योंकि हर दिन आहा वास्ते खास हुंदा कने आजकना जेड़ा दिन है से कयो आहा वास्ते खास है या जेड़ा गांव दा रहन सहन है से यहाँ वास्ते कितना की खास है तो है क्या लगता
1: मैडम जी? बहुत अच्छा मैडम जी, गांव का रहना तो बड़ा अच्छा लगता मैडम जी।
0: जी
1: रहन सहन बहुत
0: जी जी
1: जी मैडम जी
0: विकास भी जरूरी है ना जी।
1: विकास भी जरूरी है मैडम जी। उन पर अच्छा मैडम जी
0: जी
1: जिया गांव के लोग होंगे मैडम जी
0: जी
1: तो दिन थोड़ा मतलब सरकारी योजना का पता नहीं होता मैडम जी।
0: जी जी
1: हाँ जी मैडम जी।
0: जी कने इसी कने पहले होंदा था अगर तुहां जो क्या लगदा कि अगर तुहांदा गांव है अगर हां ते जो शहरीकरण च बदलना चाहन ता तुहां क्या यानी कि सोच रख देन अपने अंदर गांव ही सही है कि शहरीकरण च बदलाव होना चाहिए?
1: गांव मैडम जी
0: जी
1: देखा मैडम जी हुण लॉकडाउन के है कोरोना चली हां मैडम
0: जी जी
1: तो हुण सारे घर ही दौड़ा रे मैडम जी।
0: जी जी
1: जी जी मैडम जी।
0: जी सही बिल्कुल सही बोला
1: तो मैडम जी। फटिया फुटिया तो खेत जो मिले थे बाहर जेड़ा फसे बेचारे हटा कमरे च कमरे के बाहर कहां जाना थे ना मैडम
0: जी। ये तो बड़ी सही गल बोली तो हां कि गांव दा रहन सहन कुछ अलग ही है ना जी।
1: हां जी बेशक मैडम जी ने घर मकान पाई ले फिर भी गांव अपने जो बोलते जन्मभूमि है ना
0: जी जी कने सही है ना कि बेशक शहरीकरण ठीक है जिहड़ा शहरां दा रहन सहन है से थोड़ा देया हाई लेवल दा है गांव दा रहन सहन बिल्कुल छोटा है पर तिच प्यार भावना बड़ी प्यारे ने है ना जी।
1: हाँ जी हाँ जी मैडम जी पहला तो होंगे बड़ा अच्छा मतलब प्रेम भावना होंगी मैडम जी की दुए की जी कोई मतलब हम चलो दाने की हाउरी लाने टाइम चले आना
0: चलो फास्ट होना भी जरूरी है जागरूक होना भी जरूरी है पर जेड़ा काम अगर मिली जुली करी यहाँ कर देना तो इस कम में करने का अलग ही अंदाज है ना जी।
1: बड़ा आनंद होता है मैडम जी।
0: जी अगर हाँ खाना भी खान देन तो अगर हाँ तो इस खाने जो ही मिली जुली करी खान देन तो इस खाने खाने का भी कोई अंतर है कने जेड़ा हाँ किले खान देन तो इस खाने का भी कोई अंतर है ना जी।
1: हाँ जी हाँ जी मैडम जी।
0: जी तो थोड़ा जहा सोच विचार करने की जरूरत है। फिर हम बोड़ियाँ की गल करते थे कि बोड़ियाँ का
1: हाँ
0: जेड़ा
1: जी
0: पानी है, नेचुरल पानी, नेचुरल
1: हाँ जी
0: चीजा है
1: पर
0: ना।
1: हाँ जी पहला आंदा हाँ मैडम जी चल
0: जी
1: सकोइया पौनिया गर्मियां तो बोलने चल ग्राएं दे किट्ठे चल बोड़ी साफ करा चली जांदे हे।
0: जी
1: हुण बोला ना मैडम जी उन नलका वाला तै
0: जी हुण तां
1: हुण
0: हर
1: कोई
0: सुख
1: परवाह नहीं
0: सुविधा।
1: मैडम जी हुण बोड़ियां नाम नशान ही नहीं रहे एने भी कुथी दे तिथु सफाई नहीं हुण मैडम जी नी।
0: जी जी कुथी कुथी
1: हाँ जी
0: हैन भी, कोई कोई समझ भी रखते ने कि
1: हाँ
0: बोरियां दा
1: जी मैडम
0: पानी।
1: कुछ कुछ ही है मैडम जी हाँ
0: जी
1: जी
0: जी
1: ओदी च मैडम बिल्कुल मतलब वो पाउडर नहीं मिलाना पौंदा बिल्कुल नहीं
0: जी
1: फिल्टर पानी होंदा हाँ मैडम जी
0: जी
1: बोल रही
0: नेचुरल
1: ठंडा
0: पानी
1: बिल्कुल
0: है ना, नेचुरल चीजा ना। हुण
1: हाँ जी हाँ जी मैडम
0: सीजनल
1: जी
0: दे अनुसार हाँ अगर गल करिए तां जमणुआ दा जेड़ा सीजन है, से चले अंबा दा सीजन लगभग हुण खत्म ही होने वाला है ना जी थोड़े
1: हाँ जी हाँ
0: दिनां
1: जी
0: च।
1: मैडम जी हाँ जी
0: तां
1: मैडम जी
0: अंबा दा कितना मतलब अंब भी आंदे नेचुरली एन तिना दा, हाँ चाहे सब्जी बना चाहे इन्ना खाई लिया, मतलब अलग ही अपना गांव दा जेड़ा रहन है से बड़ा ही अलग है ना जी।
1: मैडम घटी गया मैंने पहले हाँ
0: जी
1: छोटे छोटे थे मैंने स्कूल ले जाना मतलब
0: जी
1: था कभी अंब ले जाने
0: जी
1: देरी मतलब भ्यागा 4 बजे उठना था अंब ले आने
0: जी
1: परवाह ही नहीं मैडम जी हूँ मतलब पता नहीं क्या मतलब रूह ही नहीं रही थी क्या मैडम जी
0: जी रू ता है अल्ली भी, पर सही ना कि मोबाइल फोन आहा जो पकड़ी करी रखी ले आना, मोबाइल
1: मैडम
0: फोन
1: जी
0: बोल दे कि बस हुन तो हाँ इत्थे ही बैठना है, इसते आगे कुछ ही नहीं जाना है तो हाँ।
1: मैडम जी
0: पर मेरे आईडिया ने यहाँ जो मोबाइल फोन जो थोड़ा देर साइड रखी करी अपना जेड़ा बचपन है या अपनी फैमिली है उस जो भी जरूर समय देना चाहिए या अपने बचपन जो जरूर एंजॉय करना चाहिए ना
1: हाँ
0: जी।
1: जी बहना चाहिए बड़े भी गल भी
0: जी
1: सीखना चाहिए बड़े
0: जी
1: जो बुजुर्ग होंगे उन्होंने भी मतलब कुछ
0: जी
1: मतलब
0: उन्हें दी
1: जो
0: जेड़ा
1: हाँ
0: सीख है ना से जो बड़ा कुछ सिखाई करी जाती ना जी।
1: जी हाँ जी मैडम जी
0: जी तो सुनील जी तोहां कार्यक्रम च जुड़ने वास्ते बड़ा बड़ा धन्यवाद जी। कने तो अज कुन दिया
1: धन्यवाद मैडम जी
0: गीत
1: अच्छे अच्छे टॉपिक मतलब रख दे तो
0: जी
1: गलबात करने का मौका देंगे मैडम जी
0: जी
1: ऐसा स्टेशन नहीं है मैं तो इतने मैडम अच्छा मैडम जी जेड़ा
0: जी
1: मतलब अपनी गल रखी सकते और रेडियो स्टेशन मैंने इतना
0: जी
1: टाइम ही नहीं दिंदे मैडम जी गल रखने दी मैं
0: जी जी तो सुनील जी
1: हाँ
0: आज तो
1: जी
0: हाँ कुंदिया गीत सुनना पसंद करके
1: एक गाना मैडम जी वर्षा कटोच की आवाज का गाना
0: जी
1: चंदे दिए चाननी तू पल भर बरसाती आई गलती
0: जी चंदे दिए चांदनिए
1: चांदनी एक करनाल राणा भी गाया पर मैं सुनना वर्षा कटोच की आवाज
0: जी। अच्छा तो हाँ जेड़ा सुनना है से वर्षा कटोच दी आवाज च सुनना है
1: हाँ जी मैडम जी
0: जी। जरूर जी जुड़ने वास्ते बड़ा बड़ा धन्यवाद जी तुहदा
1: धन्यवाद मैडम जी धन्यवाद
0: जी।
1: नमस्ते
0: दशो तो तुह सारी इस वक्त कार्यक्रम सुना देना अपनी रेडियो दो शशि कन्ने। इसी गूंज कन्ने आहां फिरी ते अपने कार्यक्रम दे सफर जो थोड़ा दे आगे बढ़ाना है। कन्ने तुहां सारी भी इस कार्यक्रम दे सफर जहां कन्ने जुड़ी सकदे, कन्ने आहां कन्ने गल बात जिड़े से जरूर करी सकदे। दशो तो अगली फरमाइश जिड़े से तुह तक पहुँचाते न तो सारी इन्हें सुनते रहे अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला गूंज अपनी पंजी।

0: ये तो हाँ सारे अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला तो हाँ सारी कार्यक्रम सुना देना अपनी रेडियो दो शशि कन्ने इसी कन्ने तो हाँ सारी इस गीत जो भी इंजॉय करा देना तो जरूर इस गीत जो भी इंजॉय करा कन्ने थोड़ा दिया मन तो करता ही है ना कि डांस करी लिए थोड़ा दिया कार्यक्रम का जरा माहौल है से चेंज होना भी जरूरी है क्योंकि जिंदगी का जरा सफर है ना उससे बेहतर खास है कन्या दे जेड़ा श्रोता न सभी जरूर हाँ कन्ने जुड़ चुके हैं न कर दिन तीना कन्ने गल बात हेलो हेलो
1: हेलो
0: हेलो नमस्ते जी
1: नमस्ते जी
0: जी स्वागत है जी तुहांदा रेडियो गुंजन धर्मशाला च ठीक ठाक है न
1: हाँ जी ठीक ठाक
0: जी तो हाँ कुछ ते बोला दी कने तो हाँ दा ना किया है जी
1: जी खने आ रहे थे बोला दिया हाँ कने बीना है ना मेरा
0: जी बीना जी क्या हाल चाल है खने आ रहे आड़े अंदे
1: ठीक ही है ना आ चाल मौसम बरखा हो रही है कने
0: जी बरखा हो रही है तो कदे लगा दा ये मौसम बरसात दा तो हाँ जो
1: दिन निम्बल हो याद
0: जी दिन निम्बल हो याद है कने राती बरखा हो याद ही ना जी
1: हाँ जी
0: जी तो कदे लगा था तो हाँ जो ये बरसात दा मौसम
1: हाँ जी
0: मौसम जेड़ा है से तो हाँ जो कदे लगा था बरसात दा
1: ठीक ही लगा था बरसात
0: जी ठीक ही
1: लग नहीं है बरसात
0: जी ठीक ही

0: ना जी
1: जी
0: जी ता बीना जी तो हाँ जो एक कार्यक्रम के दिया लगा था ये भी दसी दिया उन तो हाँ
1: अच्छा
0: जी रोज ही सुनते तो हाँ इस कार्यक्रम जो
1: जी रोज सुन ले।
0: जी ता बीना जी तो हाँ ये क्या लगता जिड़ा गाँव दा रहन सहन है से कितना प्यार है
1: जी बड़ा प्यार।
0: जी
1: जी
0: जी ता बीना जी और नोएडा जी खन्यारे दी
1: खन्यारे नौ चार के दसनी बसे बरखाई
0: जी बरखा ही
1: बर
0: है
1: गई ना दिन निम्बल हो गया।
0: जी मौसम जड़े से मतलब मौसम दा कोई भरोसा नहीं होता ना जी। वैसे भी बरसात दा मौसम है तो अपना जेड़ा ज्यादा ख्याल रखने दी जरूरत है ना जी बरसात दे मौसम च। जी जी तभी ना जी आज तुम
1: हाँ
0: कुंदिया
1: जी
0: गीत सुनना पसंद करके
1: सुनाई दे आए कोई भजन।
0: जी कोई भी भजन सुनना है कि कोई है तो हम जो याद था जरूर दसी दिया जी तो हम कुंदिया भजन सुनना है
1: नागे
0: जी नागे आला सुनना है जरूर तुहां तक ये भजन पहुंचान
1: वाला
0: जी जरूर ये भजन तुहां तक पहुंचान दें जी। जुड़ने वास्ते बड़ा बड़ा धन्यवाद जी तुहां दा तशो तो सारी कार्यक्रम सुना देन अपनी रेडियो दो शशि कन्ने तशो तो अजकने दौर दी गल करिए या अजकने जेड़ा दुनिया है से किस और भागा दी से दुनिया जेड़े से हर इंसान कुछ और भागा दा हर इंसान जेड़े से बड़े बड़े घर बड़े बड़े जेड़ा महल हैं से जरूर बना देन पर अपने जेड़ा अपना जेड़ा दिल है से हमेशा छोटा जड़ा से रखा दे या इक्की दुए अंदर प्यार भावना बिल्कुल खत्म है दर्शो तो दुनिया च रहने वास्ते यहाँ जो सिर्फ महल दी जरूरत नहीं पौंदी या बड़े घर दी जरूरत नहीं पौंदी प्यार भावना या अपने दा जिड़ा प्यार है तिस दी यहाँ जो जरूरत है। बेशक पुराने समय दी यहाँ गल करिए कि जिड़ा गाँव दा रहन सहन दे ऊपर अहाँ गलबात करा दी ना बेशक जिड़ा मिट्टी दे मकान थे छोटे मकान थे पर प्यार भावना जिड़े से कि दुए अंदर बड़ी ज़्यादा थी तो ज़रूर इसी प्यार भावना कन्ने अहाँ अपने कार्यक्रम दे सफर जो अगर बढ़ाते ना कन्ने अगली जिड़ा फरमाइश है से तुह तक पहुँचा दे ना तुह सारे भी इस प्यारी दिया फरमाइश है जो इंजॉय करा कने ने सुनते रहे अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला।

0: रशुदा तुह सारे सुनया ए प्यारा दिया गीत प्यारी दी फरमाइश। इस गीत की फरमाइश अह जो आई हुए सुनील जी दी कनसे रहने वाले ने कोठियाँ जलोट ते तो जरूर तिन्हों तक अहाँ ये गीत पहुँचाया कने तुह सारे भी इंजॉय किया। गलबात अहाँ कार्यक्रम के सफर च करा देन जरूर सभी तुह तक पहुँचानी है कि गाँव का जिहड़ा रहन सहन है से अहाँ वास्ते कितना खास है कने कितना अहाँ की जिंदगी महत्व जिहड़ा से रखता है कने अहाँ के अगले जिहड़ा श्रोता न तिन्हां कने कर देन गलबात। हैलो हैलो हैलो नमस्ते Hello? जी नमस्ते जी स्वागत है जी तुहांदा रेडियो गुंजन धर्मशाला च। जी ठीक ठाक है
1: ना?
0: जी अहां भी ठीक ठाक है जी। तुह कुछ ते बोला दी कने तुहांदा ना क्या है जी?
1: सुकड़े ते बोला दी माया
0: जी। सुकड़े ते बोला दे माया जी।
1: हां जी
0: जी माया जी क्या काम कार छेड़े तुहां क्या करा दे?
1: हाँ जी कम कर रहे थे। हाँ कम कर
0: जी। कोई काम कार नहीं लगाया?
1: प्रोग्राम प्रोग्राम सुनना। हाँ
0: जी। अच्छा प्रोग्राम ही सुना दे तो। हाँ
1: जी प्रोग्राम सुनना
0: जी जरूर जी। प्रोग्राम सुनी के भी कुछ गल्ला जिड़े से सुनने जो मिली आनी सीखने जो मिली आनी ना जी।
1: इस बार ये चलो नहीं भी फोन होगा तो प्रोग्राम तो काम है सुनना सुनना।
0: जी प्रोग्राम तो सुनी लेंदे ना जी।
1: हाँ जी अच्छा लगता ना
0: जी। तो रेडियो सेट कितने बजे ऑन करेंगे तो? हाँ
1: हाँ जी
0: रेडियो सेट जिड़ा है से कितने बजे ऑन करेंगे तो? हाँ अपना
1: मैं फोन सुन दिया मैं 5 बजे ला दूंगी
0: जी। अच्छा 5 बजे जिड़ा है से तो हाँ फोन ने च शुरू करेंगे एफएम।
1: हाँ जी
0: जी जी
1: जी।
0: 2 बजे इंतजार लगे होता
1: जी। 2 बजे
0: 4 से 5 भी जिड़ा से गदियाली कार्यक्रम सुन दे तो। हाँ जी तो 6 से 8 भी जिड़ा लाइव प्रोग्राम चलता से हिंदी चलता ना जी। गुड इवनिंग धर्मशाला जी जी जी। तो माया जी अज अहाँ जिहड़ा गलबात करा देन से करा देन कि गाँव का जिहड़ा रहन सहन है या गाँव दियाँ जिहड़ा यादा न से कुथी ने कुथी अहाँ अपने जीवन जो जरूर बदलाव लो देन पर से गाँव का जिहड़ा रहन सहन है से कितना प्यारा है ना जी अहाँ वास्ते।
1: हाँ जी
0: जी
1: प्यार है ना कोई तो प्यार ही है जी। ग्रां के ग्रां का रहन सहन बड़ा प्रेम प्यार है ना रहन का अच्छा ही है
0: जी। कने शहरीकरण दा हाँ गल करिए ता शहर दा हर कोई अपना अपना अपने ने ही मतलब रखदा है ना जी।
1: हाँ जी हाँ जी हाँ जी
0: जी। कने चलो गांव च पहले ये था कि थोड़ा विकास नहीं था पर हुण धीरे धीरे जिहड़ा से जरूर विकास भी होता है पर अहां
1: बदलाव भी होता
0: जी बदलाव भी होता कने पहले होता था कि शौचालय हुण तो हर घर शौचालय जिहड़ा से बनी होने ना जी।
1: हाँ जी हाँ जी
0: जी जी ता कभी
1: अपने अपने सोच समझ ना प्रेम प्यार जिहड़ा सा बड़ा अच्छा पर
0: जी जी
1: हाँ जी
0: जी। ता तो है क्या लगदा गांव दा जेड़ा रहन सहन अच्छा है कि शहरीकरण दा रहन सहन अच्छा है?
1: गांव दा रहन सहन बड़ा अच्छा है प्रेम प्यार में शांति में रह कोई नहीं मतलब करके ता
0: जी। कने ठीक है गांव च विकास दी जगह विकास भी करा पर तिस दा जेड़ा रहन सहन है उस जो तिन्ने रहना दिया ना जी।
1: हाँ जी हाँ जी
0: जी। दिखा पहले होंदा था कि खेती बाड़ी हुण ऊरा दा काम पे है ना जी तो ज़्यादातर हर कुसी दे घर बैल या बैल जिड़न से दिखने जो मिली आंदे थे हर पट्टियां दा सारा काम तिना बैला नहीं करते थे ना जी। कने हुण तो मौसम भी कुथी ना कुथी अहां जो उलझा दा कदी बारिश हो दी कदी नहीं हो दी कदी पानी पट्टियां च ओदा नहीं ओदा पहले होंदा था कि
1: कुल्ला पानी नहीं होवेगा
0: जी पानी नहीं होवेगा इस वरिया तो पानी दा ही बड़ा जिहड़ा मसला है सारा चलिया पानी दा ही बरखा ओदी पर पानी जिहड़ा ऐसे नहीं ओदा ना जी पट्टियां च
1: नहीं होवेगा पानी नहीं होवेगा
0: जी। कई जगह जेड़े से बस हूँ ये जेड़ा बरखा हुई है शायद इस ने पानी जेड़े से हो ही है ना जी, नहीं तो पानी ही नहीं होता, बरखा ही थोड़ी थोड़ी होती ना जी।
1: तो पानी हो रहा है
0: जी नहीं जेड़ा जमीन है सभी तो इस पानी जो सूची ला दी ना जी।
1: सभी
0: जी जी तमाया जी आसो
1: आगा।
0: हा कुंदिया गीत सुनना पसंद करिए
1: हाँ जी, हाँ जी, भजन सुनाइए आज मेरी मैया
0: जी। कुंडिया भजन सुनना है
1: ने आना
0: जी। अच्छा आज मेरी मैया ने होना है
1: है। हाँ जी, हाँ
0: जी, जरूर है भजन तो हाँ तक पहुंचा दें
1: हाँ
0: जी।
1: जी,
0: जुड़ने
1: हाँ जी,
0: वास्ते
1: हाँ
0: बड़ा बड़ा धन्यवाद
1: जी,
0: जी तुहंदा।
1: बहुत धन्यवाद जी
0: जी तुहंदा भी जी।
1: थोड़ा
0: दर्शो तो जल्दी न फरमाइश दी और बीना जी तक पहुंचा देने फरमाइश भजन सरहणे वाले ने खन्यारा ते तो जरूर तो सारी भी इंजॉय करा।

तुहां सारें दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला, तुहां सारे ही सुनिया ये प्यारा दिया भजन, प्यारी दी फरमाइश। इस भजन दी जिड़ा फरमाइश से जरूर तुहां तक कहां पहुंचाई थी है, कने इसी कने तुहां सारे जो ही पता है कि इस कार्यक्रम दा जिड़ा सफर है से तुहां तक रहंदा है 2 से 3 बजे तक। कने गलबात जिड़े से अहाँ करा दी न कि गाँव का जिड़ा रहन सहन है से कितना प्यारा है, दशो तो कुनी जिड़े से बड़ा प्यारा जिड़े से लिख है कि जीवन जिड़े से उसी कन्ने मस्त है जालू अपने आदा।

साथ हाँ कन्हे है, काम भी व्यस्त है कन्हे, परेशान परेशान जड़े से बिल्कुल नहीं है ना, क्योंकि अगर हाँ अपने कन्हे समय बिता दे ना तो हाँ जीवन जड़े से सबसे जड़ा बेस्ट है से बनी आंद है कन्हे। अगर हाँ हमेशा कुछ और थी खुशी दिखना चाहते न तो कुछ ना कुछ यहाँ हमेशा दुखी जड़े से जरूर रहते न। अगर हाँ काम च व्यस्त रहते न सही यहाँ वास्ते मस्त आला माहौल है, क्योंकि कोई भी यहाँ काम कर दे न पूरे लगन मेहनत ने कर दे न तो जरूर हाँ इस काम में च सफलता जड़े हासिल कर दे न। इसी विचार करने यहाँ आगे बढ़ते न कने तो हाँ जो कार्यक्रम दी अगली फरमाइश दी ओर लेकर चल देना। माया जी दी फरमाइश यहाँ तक पहुँची हो वह से रहने वाले न सुक्कड़ ते तिना तक कहाँ ये फरमाइश भजन पहुँचा देना। तो हाँ सारियाँ ही क्या करने है तो हाँ सारे जो पता है तो हाँ सारी समझदार हैं जितने भी श्रोता न, क्योंकि तो हाँ सारे इंजॉय करने करे इस सफ़र जड़ा है से उन थोड़ा देर ही बाकी है तो ज़रूर इस सफ़र जो इंजॉय करा।

श्रोताओं तो सारे गीत भजन इंजॉय किया कने इसी भजन कने तो सारे ही अपनी रेडियो तो शशि दिया अनुमति कने ने सुनते रहे अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला।

0: बोलो भाई।
1: बस बताने आया हूँ, स्वच्छता की परीक्षा शुरू हो चुकी है, तैयार हो ना?
0: स्वच्छ सर्वेक्षण तो अभी कर लीजिए ना, आइए।
2: हमारा घर स्वच्छता की हर परीक्षा में अव्वल ही आएगा, और तो और हम सब शौचालय का भी इस्तेमाल करते हैं।
1: पर इस परीक्षा में तो आप सब फेल हो गए।
0: फेल?
1: स्वच्छता की असली परीक्षा सिर्फ अपने अपने घरों की नहीं, हमारे पूरे गाँव की है। आखिर गाँव भी तो हम सबका घर है, क्यों? अब तो गाँव खुले में शौच मुक्त भी है। मिलके साफ रखेंगे तो गांव को मिलेगा फर्स्ट क्लास। तो शुरू कर दो परीक्षा की तैयारी।

0: अरे देवा, बड़ा झटका लगा है।
1: तुम्हारे भी अकाउंट से 5 लाख जाते तो ऐसा ही होता।
2: मेरे अकाउंट से 5 लाख?
1: पाटिल फोकस।
2: सॉरी,
1: ये पढ़ो।
3: डियर यूजर, योर बैंक अकाउंट विल ब्लॉक टुडे। प्लीज इमीडिएटली अपडेट KYC। लिंक भी है।
4: अरे मैडम, ये बैंक का ऐप लगता है।
1: KYC अपडेट करने के लिए ऐप डाउनलोड। स्ट्रेंज, दिखाओ। यहाँ इन्होंने बैंक का समझ के फेक ऐप डाउनलोड किया, यूजर आईडी, पासवर्ड, ATM पिन, अकाउंट नंबर डाला।
2: और वहाँ फ्रॉडस्टर्स को मिल गया एंट्री इधर, डिटेल्स उधर।
1: जीनियस पाटिल,
2: थैंक यू। पर मैडम, ये OTP?
1: वो भी ऐप से ऑटो फॉरवर्ड हो जाता है।
2: ओह माय फ्रॉड।
1: तुम तो समझ गए। और आप अनजान लिंक से कोई ऐप डाउनलोड ना करें। अक्सर फ्रॉडस्टर्स नकली बैंक ऑफिशियल्स बनके ऐप्स डाउनलोड करवाते हैं और फोन से आपके बैंक के सारे डिटेल्स कॉपी करके अकाउंट से पैसा चुरा लेते हैं। बैंकिंग ऐप्स सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट से ही डाउनलोड करें। सतर्क रहें। आइए मिलकर चीट्स को बीट करें।
5: तुम लोगों को खोने से डरते हो मित्र, कभी ये भी सोचो कि कहीं इस चक्कर में तुम खुद को तो नहीं खो रहे। जो तुम्हारी खामोशी को नहीं समझ सकता, वो तुम्हारे शब्दों को भी कभी नहीं समझ पाएगा। अकेले चलने का साहस रखो मित्र, क्योंकि यहाँ सलाह देने वाले हजारों मिलेंगे पर साथ देने वाला कोई नहीं। जिंदगी में कुछ लोग तुम्हें सिर्फ ये सिखाने आते हैं कि हर किसी पर भरोसा कभी नहीं करना चाहिए। जितना तुम लोगों के सामने सीधे बनोगे मित्र, ये दुनिया तुम्हें उतना ही ज्यादा उलझाती चली जाएगी।
6: क्या आप नहीं चाहते कि आपका व्यापार छूले आसमान की ऊंचाइयां? तो अपने व्यापार को कीजिए प्रचारित सही तरीके से सही जगह पर। अब विज्ञापन दीजिए और बन जाइए हर किसी की पहली पसंद। व्यापार को मिलेगी नई पहचान, ग्राहकों की संख्या में होगा जबरदस्त इजाफा और आपका मुनाफा बस पूछे मत। हमारे साथ जुड़िए और देखिए फर्क को। अपने व्यापार को दें नई उड़ान। विज्ञापन देने के लिए आज ही संपर्क करें 9816473615 पर। आप बढ़ेंगे तभी तो देश बढ़ेगा।
7: नमस्ते, मैं विकास हूँ।
8: अरे बहू, देख क्या रही हो? प्रगति खुद चलकर हमारे दरवाजे पर आई है, उसका स्वागत करो।
9: पापा जी, ये कह रहे विकास और आप कह रहे प्रगति?
10: ये जनगणना के लिए आए हैं। जनगणना से हर जन की प्रगति और विकास दोनों होता है।
7: जी हाँ, मैं पूछूंगा कुछ सवाल और आपके द्वारा दी गई सही और सटीक जानकारी से एकत्र होंगे कुछ आंकड़े, जिससे देश बनाएगा नीतियां और योजनाएं और उससे हर घर तक पहुंचेगी प्रगति और विकास।
9: अब समझी, जनगणना से हमारी प्रगति और हमारा विकास। स्वागत है
11: अंकल, मेरे लिए भी बचे?
7: जी हाँ, एक उज्जवल कल। देश में जनगणना 2027 शुरू हो चुकी है। जब इन्यूमरेटर आपके घर आए तो उनका स्वागत कीजिए, उन्हें सही और सटीक जानकारी दीजिए, क्योंकि आपके दिए गए सही जवाब से ही देश आगे बढ़ेगा। चलो निभाएं अपनी जिम्मेदारी, करें जनगणना में भागीदारी।
12: हमारी जनगणना, हमारा विकास।
13: और भाई शुक्ला, तेरी टीबी के क्या हाल हैं?
14: अरे भाई, 2-4 हफ्ते का इलाज करवाया और टीबी की हो गई अजामत।
15: ये लीजिए हुजूर, आपकी ये हजामत भी पूरी हो गई।
14: ये क्या, आधी दाढ़ी? भाई कर क्या रहे हो?
15: कमाल करते हैं आप, आधी दाढ़ी मंजूर नहीं, टीबी का आधा अधूरा इलाज मंजूर है आपको।
14: है?
15: हाँ? याद रखिए, टीबी का आधा अधूरा इलाज करवाइएगा तो टीबी आपको दोबारा हो सकता है। इसलिए टीबी से मुक्ति पाने के लिए
16: 91.2 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने लेकर। तो श्रोताओं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम का सबसे पहला प्यारा सा गीत। आप यूं ही बने रहिए 91.2 MHz रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम सुन रहे हैं आप गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने इस समय श्रोता सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी, और लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर कार्यक्रम सुन रहे हैं। गीत सुहाने नए पुराने, लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

आप बने हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने आप सुन रहे हैं 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी। आइए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

श्रोताओं, इस समय आप हैं 91.2 MHz रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम सुन रहे हैं आप गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

0: बोलो भाई।
1: बस बताने आया हूँ, स्वच्छता की परीक्षा शुरू हो चुकी है, तैयार हो ना?
0: स्वच्छ सर्वेक्षण तो अभी कर लीजिए ना, आइए।
2: हमारा घर स्वच्छता की हर परीक्षा में अव्वल ही आएगा, और तो और हम सब शौचालय का भी इस्तेमाल करते हैं।
1: पर इस परीक्षा में तो आप सब फेल हो गए।
0: फेल?
1: स्वच्छता की असली परीक्षा सिर्फ अपने अपने घरों की नहीं, हमारे पूरे गाँव की है। आखिर गाँव भी तो हम सबका घर है। क्यों, अब तो गाँव खुले में शौच मुक्त भी है। मिलके साफ रखेंगे तो गांव को मिलेगा फर्स्ट क्लास। तो शुरू कर दो परीक्षा की तैयारी।

0: अरे देवा, बड़ा झटका लगा है।
1: तुम्हारे भी अकाउंट से 5 लाख जाते तो ऐसा ही होता।
2: मेरे अकाउंट से 5 लाख?
1: पाटिल, फोकस।
2: सॉरी,
1: ये पढ़ो।
3: डियर यूजर, योर बैंक अकाउंट विल ब्लॉक टुडे। प्लीज इमीडिएटली अपडेट KYC। लिंक भी है।
4: अरे मैडम, ये बैंक का ऐप लगता है।
1: KYC अपडेट करने के लिए ऐप डाउनलोड? स्ट्रेंज, दिखा। यहाँ इन्होंने बैंक का समझ के फेक ऐप डाउनलोड किया, यूजर आईडी, पासवर्ड, ATM पिन, अकाउंट नंबर डाला।
2: और वहाँ फ्रॉडस्टर्स को मिल गया एंट्री इधर, डिटेल्स उधर।
1: जीनियस पाटिल,
2: थैंक यू। पर मैडम, ये OTP?
1: वो भी ऐप से ऑटो फॉरवर्ड हो जाता है।
2: ओह माय फ्रॉड।
1: तुम तो समझ गए। और आप अनजान लिंक से कोई ऐप डाउनलोड ना करें। अक्सर फ्रॉडस्टर्स नकली बैंक ऑफिशियल्स बनके ऐप्स डाउनलोड करवाते हैं और फोन से आपके बैंक के सारे डिटेल्स कॉपी करके अकाउंट से पैसा चुरा लेते हैं। बैंकिंग ऐप्स सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट से ही डाउनलोड करें। सतर्क रहें। आइए मिलकर चीट्स को बीट करें।
5: तुम लोगों को खोने से डरते हो मित्र, कभी ये भी सोचो कि कहीं इस चक्कर में तुम खुद को तो नहीं खो रहे। जो तुम्हारी खामोशी को नहीं समझ सकता, वो तुम्हारे शब्दों को भी कभी नहीं समझ पाएगा। अकेले चलने का साहस रखो मित्र, क्योंकि यहाँ सलाह देने वाले हजारों मिलेंगे पर साथ देने वाला कोई नहीं। जिंदगी में कुछ लोग तुम्हें सिर्फ ये सिखाने आते हैं कि हर किसी पर भरोसा कभी नहीं करना चाहिए। जितना तुम लोगों के सामने सीधे बनोगे मित्र, ये दुनिया तुम्हें उतना ही ज्यादा उलझाती चली जाएगी।
6: क्या आप नहीं चाहते कि आपका

0: व्यापार छूले आसमान की ऊंचाइयां, तो अपने व्यापार को कीजिए प्रचारित सही तरीके से सही जगह पर। अब विज्ञापन दीजिए और बन जाइए हर किसी की पहली पसंद। व्यापार को मिलेगी नई पहचान, ग्राहकों की संख्या में होगा जबरदस्त इजाफा और आपका मुनाफा बस पूछिए मत। हमारे साथ जुड़िए और देखिए फर्क खुद। अपने व्यापार को दें नई उड़ान। विज्ञापन देने के लिए आज ही संपर्क करें 9816473615 पर। आप बढ़ेंगे तभी तो देश बढ़ेगा।
1: नमस्ते, मैं विकास हूँ।
2: अरे बहू, देख क्या रही हो, प्रगति खुद चलकर हमारे दरवाजे पर आई है, उसका स्वागत करो।
3: पापा जी, ये कह रहे विकास और आप कह रहे प्रगति?
4: ये जनगणना के लिए आए हैं। जनगणना से हर जन की प्रगति और विकास दोनों होता है।
1: जी हाँ, मैं पूछूंगा कुछ सवाल और आपके द्वारा दी गई सही और सटीक जानकारी से एकत्र होंगे कुछ आंकड़े, जिससे देश बनाएगा नीतियां और योजनाएं और उससे हर घर तक पहुंचेगी प्रगति और विकास।
3: अब समझी, जनगणना से हमारी प्रगति और हमारा विकास। स्वागत है
5: अंकल, मेरे लिए भी बचे?
1: जी हाँ, एक उज्जवल कल। देश में जनगणना 2027 शुरू हो चुकी है। जब इन्यूमरेटर आपके घर आए तो उनका स्वागत कीजिए, उन्हें सही और सटीक जानकारी दीजिए, क्योंकि आपके दिए गए सही जवाब से ही देश आगे बढ़ेगा। चलो निभाएं अपनी जिम्मेदारी, करें जनगणना में भागीदारी।
6: हमारी जनगणना, हमारा विकास।
7: और भाई शुक्ला, तेरी टीबी के क्या हाल हैं?
8: अरे भाई, 2-4 हफ्ते का इलाज करवाया और टीबी की हो गई अजामत।
9: ये लीजिए हुजूर, आपकी ये हजामत भी पूरी हो गई।
8: ये क्या, आधी दाढ़ी? भाई कर क्या रहे हो?
9: कमाल करते हैं आपकी, आधी दाढ़ी मंजूर नहीं, टीबी का आधा अधूरा इलाज मंजूर है आपको।
8: है?
9: हाँ? याद रखिए, टीबी का आधा अधूरा इलाज करवाइएगा तो टीबी आपको दोबारा हो सकता है, इसलिए टीबी से मुक्ति पाने के लिए टीबी का पूरा इलाज करवाइए, फुल कोर्स। इंडिया वर्सेस टीबी, टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
10: मम्मी, पति और पत्नी के गुस्से में क्या अंतर होता है?
11: पति का गुस्सा खांसी जुकाम की तरह होता है, जो आता है चला जाता है, किसी को पता ही नहीं चलता। और पत्नी का गुस्सा कोरोना वायरस की तरह होता है, जो उसके संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति को प्रभावित करता है।
10: बात तो सही है।

नमस्कार श्रोताओं, FM बैंड 91.2 MHz पर रेडियो गुंजन धर्मशाला तो ऐसा बी ट्यून कर रहा और हूँ सचिन कपूर हाजिर बुझे हो तुम दैसा बी रेडियो उस सेट में रेडियो गुंजन धर्मशाला में क्या हाल चाल है श्रोता हूँ तुम दे उम्मीद कर रहा हूँ और उम्मीद भी आ कि सभी रे हाल चाल क्या ना सो बिल्कुल ठीक ठाक बुने तो सब खरे बुने अपने घरे खुश बुने तंदुरुस्त बुने और राजी बाजी बुने हिन सभी मोटी गल राजी बाजी बुने है ना। तो चलिए जी वाजी बाजी रहने की सो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है केवल दिन है ना। तो इस कार्यक्रम में रोजाना ही है तो है जरूर कॉल कर सकते हैं अपना पसंदीदा गीत की सो हो नहीं सकते हैं श्रोता और अपने क्षेत्र जानकारी किया सो वो के साझा कर सकते हैं। यह गल विशेष ध्यान रहे श्रोतों की जानकारी किया सो वीडियो मंच साझा करने लायक जरूर हुआ जानकारी किया सो रेडियो मंच दसने लाइक किया सो जरूर हुआ। तो चलिए जी पलदे इंसान की सो गलती का पुतला बुंदा और इंसान थों की सो बार बार गलती बुंदी हिन है ना। तो तुसु भी लगता कि कभी कसकी तुंदे परिवार रे सदस्य हो या कभी तुंदे दोस्त हो या फिर अन्य कसियों भी गलती बुझ गए तो तसी माफ़ किया सो जरूर करा शो तो है ना माफ़ी किया सो जरूर दिया। बहरहाल कार्यक्रम हिंदी अपनी गप्प लेकर आऊँ सचिन कपूर हाजिर हुआ हा और इस कार्यक्रम में तुंदे पसंदीदा गीत के अंशों भी चलना हिन और कुछ एक जानकारी के अंशों भी असू तुसू के शेयर करनी हिन। तो कॉल कर सकते हैं जनाब 7018879 पर नंबर एक मौके फिर आऊँ शेयर करना हाँ तो होगी 7018879 पर तो है सब श्रोता कॉल कर सकते हैं और अपना पसंदीदा गीत हो सकते हैं अपने क्षेत्र रे जानकारी किया सो वो के साझा कर सकते हैं। यह गल विशेष ध्यान रहे कि जानकारी किया सो रेडियो मंच साझा करने लायक जरूर हुआ जानकारी किया सो रेडियो मंच दसने लायक किया शतों सो जरूर हुआ इन गल खास ख्याल के सो जरूर रखा। चलिए जी कार्यक्रम मंच आगाज कर दिन कार्यक्रम रे इस गीता होगी बहादुर भारद्वाज री आवाज़ माँ शरीक गीत तरह टाइटल हिन उन्होंने तू सब ये प्यारे गीत वेड़ी गुंजन धर्मशाला मंच बन रहे आरजे सचिन कपूर सो के।

0: শুধু এফএম ব্যান্ড 91.2 মেগাহার্টজ পর রেডিও গুঞ্জন ধর্মশালা তো হ্যায় সবি টিউন কর রহা হুঁ সচিন কাপুর জি হাজির হুয়া কার্যক্রম মে হিন্দি আপনি গপ্পা লে করে তা আগমকে ফির তুমা সবিরা বহুত বহুত স্বাগত হার্দিক অভিনন্দন হ্যাঁ কার্যক্রম হিন্দি আপনি গপ্পা মঞ্জে তা আশো তো स्वागत है हाँ तुंदा सबीरा और बड़ा बड़ा स्वागत है मोटा मोटा स्वागत है जनाब कार्यक्रम में तो सब बन रहे हैं जुड़ रहे हैं और कॉल भी कर सकते हैं इस लाइव कार्यक्रम में जुड़ने वास्ते 7018889 पर नंबर आख मौके फिर हम शेयर करने तो होगी 7018889 पर तो है कॉल कर सकते हैं इन श्रोताओं और अपना पसंदीदा गीत होने सकते हैं बहरहाल इन श्रोता के नाम से कनेक्टेड हैं इस ओके श्रोताओं तू सब भी दसना चाहता कि आज मुख्यमंत्री है कि सो परम पावन दलाई लामा जी जो जन्म दिवस रे किया सो शुभकामनाएं दीती ने और रेडी गुंजन री पूरी टीम री औरतों भी किया सो परम पावन दलाई लामा जी जो किया सो जन्म दिवस री बहुत बहुत शुभकामनाएं भून त्यारे स्वास्थ्य की सो हमेशा ठीक रहा और सो हमेशा क्या सो खुश रहन शतम जी बिल्कुल ता इस बीच मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुखू बलदेहिन की तिब्बतियन आध्यात्मिक गुरु परम पावन दलाई लामा जी जो त्यारे 91वें जन्म दिवस पर की असो बधाई और शुभकामनाएं दिच्छू कर देन ठाकुर सुखविंदर सिंह सुखू जी आई बल्लू कर देन की दलाई लामा के असो अहिंसा शांति और मानवीय मूल्य रह के ने सो प्रतीक हैं तथा त्यारा पूरा जीवन मानवता जो प्रेम रे मार्ग पर चलाने भी प्रेरणा माँ के आसू गुजरी को हा जो कि ऐसा भी बाखूबी जानते हैं इनके दलाई लामा जी जो न सो इंसान जो सिर्फ ये सिखाते हैं इनकी प्रेम रे रास्ते पर चलना है इंसान जो मानवता जो सो ये पाठ पढ़न दे इनकी प्रेम रे मार्ग पर के ऐसो चलना है और इस मार्ग पर चलते रहना और ये प्रेम रा मार्ग ऐसो कि ऐसो सब कुछ करने रे कि ऐसो प्रेरणा दिंदा है अर्थात दुनिया भी बोलो कि दलाई लामा जी भी उपस्थिति ना हिमाचल प्रदेश जो विश्व वे आध्यात्मिक मानचित्र पर विशेष पहचान की सो भी दिलंदे हा जी बिल्कुल मुख्यमंत्री है ईश्वर थो त्यारे उत्तम स्वास्थ्य एवं दीर्घायु वे मंगल कामना के आसो करे है ताकि त्यारे विचार और शिक्षाएं इने वाली पीढ़ी जो मार्गदर्शन प्रदान किए न सो जरूर करन शतो तो इस प्रकार हो कि ये सो जानकारी बिल्कुल चलती रहनी हिन और अक मुके फिर इन परम पावन दलाई लामा जी जो जन्म दिवस री बहुत बहुत शुभकामनाएं भून और त्यारे जो मार्गदर्शन हा तिन्या मार्गदर्शन पर किया सो है जरूर चलने यह है सब भी किया सो प्रार्थना भी करते हैं और है सब सोच भी रखते हैं बहरहाल इनके बहुत सारे श्रोता कॉल करू करते थे जरूर कर सकते हैं जनाब 7018889 पर नंबर आक मौके फिर हम शेयर करना हाँ 7018889 पर कॉल कर सकते हैं बहरहाल इनके श्रोतागण असो के कनेक्टेड हैं नमस्ते जी
1: हेलो
0: हेलो नमस्कार जी
1: हेलो हाय सर गुड आफ्टरनून या मैं ये पूछ रही थी कि इधर आरजे की वैकेंसीज हैं
0: हेलो जी इस समय लाइव कार्यक्रम चल रहा है और आई थिंक कुछ और गल पूछू करते हैं वैकेंसी पूछू करते हैं इनकी वैकेंसी ऐह लुग रहे हो माड़े ना लुगुन दे ले चलिए वैकेंसी के बारे में इन बात दंगी ऐसो जरूर दसी ले है पर बहरहाल कुछ की पूछ गंदे कदी कदी लाइव में बिना तो श्रोताओं चलिए कॉल तो है कर ही सकते हैं जानकारी रा पिटारा की सो असू ये चलते रहना खोलते रहना हाँ बने रहे तो सब रेडियो गुंजन रही सी गूंज होगी और लेके चलते तू सभी श्रोता जो इस प्यारे दे गीत तारी किनारी

0: तो एफ एम बैंड 91.2 MHz पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला तो ऐसा बी ए टी उनको रो रहे कार्यक्रम इस समय हिंदी अपनी का पकन सो बिल्कुल लाइव चल रही था तो ऐसा कॉल कर सकते हैं 7081889 अक पर। आइए जी श्रोतों कार्यक्रम जो आगू बढ़ा हैं और अगली कुछ एक और जानकारी के अंश तुश हो गया है शेयर करते हैं साझा करते हैं। श्रोतों धर्मशाला मैकलोडगंज मा के आसो काफ़ी ज़्यादा सैलानी ही सैलानी अगमों के फेरी जी बिल्कुल पर्यटन राजधानी कांगड़ा री पर्यटक नगरी धर्मशाला मैकलोडगंज सहित जिला व अन्य पर्यटन स्थल पर इस वर्ष समर सीजन रे दौरान पर्यटक री उम्मीद किया सो उम्मीद में बड़ी बढ़ोतरी दर्ज हुई है। श्रोतों देश विदेश तो बड़ी संख्या में पर्यटक वे पहुँचने तो किया सो पर्यटन कारोबार जो नया नई गति किया सो मोड़े है। श्रोतों खासकर विदेशी पर्यटक री संख्या में पिछले वर्ष भी तुलना में दुगनिया अधिक अच्छा इजाफा किया सो हिन्ने जो मोड़ो है। श्रोतों प्रचंड गर्मी रेमा अप्रैल में जिला कांगड़ा में करीब 75,000 घरेलू और 4,500 विदेशी पर्यटक पुजे हैं। पिछले वर्ष 2025 में किया सो अप्रैल माह में जिला में मात्र 2,602 विदेशी पर्यटक जो आगमन हुआ था और जबकि इस वर्ष ये संख्या बढ़ कर किया 4,500 पुज गई है। इस तो जिला में पर्यटन गतिविधि जो लगातार विस्तार रा संकेत मुलदा समर सीजन रे दौरान धर्मशाला मैकलोडगंज भागसुनाग धर्मकोट नड्डी खनियारा खड़ोता पालमपुर और बीड़ बिलिंग में पर्यटक री सबथों अधिक आवाजाही किया सो रहे हैं। श्रोतों अप्रैल और मई वे दौरान पर्यटक कारोबार पर समर सीजन रा सकारात्मक असर किया सो साफ तौर पर हेरने जो मोड़ो है। श्रोतों पर्यटन विभाग कांगड़ा रे जिला पर्यटन अधिकारी विनय धीवान ने बल्लोहा के जिला में स्पोर्ट्स टूरिज्म भी पर्यटन जो बढ़ावा के सो देने में अहम भूमिका निभाऊ करता है और विशेष रूप तो पैराग्लाइडिंग वास्ते भी दुनिया भर तो पायलट और एडवेंचर प्रेमी के अंशों बीड़ बिलिंग पूज रहे हैं। श्रोतों जत्थों विदेशी पर्यटक भी संख्या में लगातार वृद्धि किया शुभ चुकर दे तीन उम्मीद जताई है कि इने वाले महीने में भी किया सो जिला में पर्यटक भी इनागाना किया सो लगे रहना और काफ़ी ज़्यादा इनागाना लगे रहना है। कार्यक्रम सचिन कपूर सो के हूँ कर दें तो ऐसा बिंदी अपनी गप्पा लाइव कार्यक्रम ये चल रहा है। श्रोतों और यह कार्यक्रम जो ये आगो बढ़ा हैं और इंदे श्रोतगण असो के कनेक्टेड हैं पुजदन कुंड बल्लों दिन और खड़ी थों बल्लों दिन। नमस्ते जी।
1: नमस्कार महाराज जी।
0: जी महाराज नमस्ते। नमस्ते क्या हाल चाल?
1: बस उस मालिक दी मौजा ते रेडियो हुनु वद्दे जनाब मैं बिल कोई फोन ना करु वद्दा तां करिए जल थोड़ा मता
0: ना बिल्कुल इत्थो पहले दोई हाउ तने खबर लगरो पर ना दोई फोन आए तसो ध्यान अक पास से बचगो मेरा
1: हां जी हां जी
0: ते दोई फोन आए थी इन बिटवीन जी मता
1: हां जी
0: अब जो एकदम कनेक्शन रिगाल बंदे ने भी
1: जी महाराज
0: कड़ी मेल मिली गंदे ना ना राजीव आजिन तो है
1: बिलकुल उस मालिक दी मौज महाराज आज दिन बड़ा सुहाना ते बड़ा अच्छा दिन आज लगूगा।
0: अच्छा क्या बात है बहुत खूब
1: दिखाना चुनी बरखा ही बच गई बड़ी सोहनी मन चाहते है कि बरखा हुआ पहले तूनी घट बरखा हुई आज पूरे खेत में मन लगते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: पूरे खेत में पानी भरदा बगड़ी लगदा हूं भी 6 बजे उठी करी गोह रोटे दिकर एदा गोह आ रहा है सब मन कैसे प्याखने तड़के से लगते हल्ली बगड़ी भर दी टैरी
0: नगरोटे तक पैदल तन चले गए तो है
1: नहीं अमला दिकरी गो जी
0: पैदल
1: हाँ अमला दिकरी।
0: अच्छा
1: हाँ जी तो मजे मजे चलते फिर बरखा लगी लगी पी खरी
0: कितने किलोमीटर चलते हैं तो है पैदल जी
1: आऊं जनाब उन्हें चलना लगू तो 8 किलोमीटर पैदल चली जाता अत अपनी दे चली जाता मुझे ठीक ही हूँ आऊं धर्मशाला पैदल की रहा हाँ जी हाँ जी अत भी आ गया मैं जरूर ही कोई 3 किलोमीटर तक जरूर रहना है ना
0: ब्याह 3 किलोमीटर जरूर हंडना।
1: हाँ जी हाँ जी इसी करी फिर हाथ मूह धोई लैने ते चाह पानी पी लैने आ फिर अखबार भी पढ़ने आ
0: अच्छा क्या बात है
1: अखबार तो रोजी पढ़ने आ ना
0: शेड्यूल फिक्स कर रहे तो है ना अपना।
1: हाँ जी हाँ जी
0: जी बहुत खूब
1: और आज जन्मदिन दस्यो के दिन एरा बड़ी खुशी दी गल महाराज
0: दलाई लामा जी दा जन्मदिन आज जी बिल्कुल।
1: हाँ जी हाँ जी बड़ी खुशी दी गल आई भी कि अस भी यारी थोड़ी मोटी कताबा पढ़ते हैं पर पढ़ना नहीं दी ना यारी कताबा पर कुछ हिंदी न हिंदी में छपदी कुछ कताबा मालिक जो भगवान कर कहते हैं मालिक जो ताऊ करी कहते
0: जी
1: हाँ बंदे हे भगवान हे बंदे हे ताऊ ताऊ ये मालिक कर समझे एक चीज है मालिक बड़ ताऊ घर बड़ा तो बड़ा ही होंगे मन
0: बड़ा ही होंगे बिल्कुल।
1: हाँ जी मालिक जो सब समझे ना तो अरे अच्छे तो अच्छे गुण हैं अच्छी अच्छी अच्छी अच्छी सलाह देंगे अच्छे अच्छे करते हैं
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: तो बड़ी खुशी की गल है महाराज
0: कानू साल पूछ गया नहीं जी।
1: हाँ जी 91 साल का बजाया तक मेरी भैन दस त्रियानवे साल लगता मेरी एक भैन तो 93 साल लगता पालमपुर बंदले रहते
0: अच्छा पालमपुर बंदले रहते 93 साल लग रहा क्या बात है।
1: अली भी अंदर उठी कर बारह रहते
0: बगैर होटी लेकर कहते होने
1: ना ना होटी ना लेंदी जी।
0: अच्छा
1: हाँ होटी बिल्कुल ना लेंदी।
0: अच्छा क्या बात है इन्हें पुराने बुजुर्ग ऐसे खौरा के लगे 93 साल में होटी नहीं इन्हें
1: ये रही ये पुराने बुजुर्ग क्या ये ज्यादा के लुगड़ी ज्यादा पिंदे ही है क्या ये चोल अपने होंगे ही है
0: जी
1: आजकल सचिन ने बंदे ने आजकल सोचता लगी पे चोल बनना चाहता तो कमजोरी भी लगी पे पहले तो शिव पता चोल इतना बंदे ही पतीले में बंदे ही चोल
0: पतीलों में
1: आज आज नहीं अनकुमन जो भी इधर चोल बनाता
0: है अंडुमा
1: हाँ जी अंगमंज भी आज बंदे बलैया तो ये भी बंदे रेडू
0: रेडू क्या बात है।
1: हाँ रेडू है खांदे ही है ना पहले तीन फलानी पांच सौ चीजें खाली तैयारी उम्र खरी नली भी
0: खरी खरी बिल्कुल खरी।
1: हाँ जी बिल्कुल खरी ने आज जेड़ा इस इन चीजें प्रोग्राम कर रहे हैं ये सब भी खांदे पींदे सवाली भी अच्छे आदमी ने कोई बीमारी शमारी न थी
0: ना।
1: हाँ जी अब है ना क्या बल्ली ना सकते कुछ भी अब चीजें तो नहीं बनाना लगी फिर देखने आते तो दुख लगता ना कहते तो दुख लगता जी चीजा इस बेची हड्डी
0: बड़ी सत्य गल
1: जो बेची हड्डी तो कुछ ठीक है तीन वाले चोर ले जा चोरी
0: बड़ी सत्य गल है जनाब बड़ी सत्य गल है पुराने मनो पुराने थी है।
1: हाँ जी
0: ठीक है जनाब
1: पुराने मन की आज भी सुनी है ता बड़ी अच्छी गल है बड़ी तीन चार कनैने पर चलिए तो बड़ी सोहनी गल होंगे
0: बड़ी ज्यादा।
1: हाँ जी आज महाराज ने सुनी बुंकू का गाना सुनाई दिया जी
0: बाहर निकला निकू चुकू
1: जी महाराज जी
0: बाहर मानू कौन आया हो।
1: हाँ जी हाँ जी
0: ठीक है जनाब जरूर होने ले तो सोएगी
1: ये रिला ले ताई पता लगे ना कौन आ
0: चलिए ठीक है जी जरूर होने ले
1: ठीक हमारा जी
0: धन्यवाद
1: धन्यवाद जी
0: श्रोता एफएम बैंड की अनुदिशा 2 मेगाहर्ट्ज पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला तो ट्यून कर रहा और कार्यक्रम हिंदी अपनी गप्पा चल रही है तय शत कार्यक्रम जो आगू बढ़ा है और कार्यक्रम होने दिन तू सभी जो भी है गीत

0: वाकई मैं नशा तो ये बड़ी ट्रू लव स्टोरी है, बड़ी सच्ची वाली लव स्टोरी है जो है इस गीतर के माध्यम तो कि ऐसा होने हर शो तो वाकई मैं ये हाँ वाकई मैं थोड़े करी स्टोरी किया सो दिला जो करखा दिला मांझे घर करी गंदी हा ये प्यारी दे स्टोरी शो तो और ए, ए सच्ची स्टोरी है, सच्ची घटना पर आधारित ये स्टोरी है शो तो कुछ इस प्रकार रा प्रेम किया सब हुंदा हा। बहरहाल इंद श्रोतागण अशोगी कनेक्ट हो चुके करते हैं। नमस्ते जी।
1: नमस्ते सर जी। नमस्ते जी।
0: नमस्ते जी, ठीक ठाक राजीव जी?
1: हाँ जी सर जी ठीक ठाक।
0: कौन बलून देन और कड़ी थम बलून देन जनाब?
1: सुनील कुमार बोले सर जी, यहाँ नहीं कोठिंगे जलोटते बोले सर जी।
0: अच्छा अच्छा जी, सुनील कुमार जी कौन देना गीत होना चल रहे तो है
1: क्या फरमाना तुम दे? एक सर जी पुराना गीत है सर जी, सुनील राणा जी का
0: जी, राणा साहब का
1: दुयो नारी रिया ऊंजुवा कोई गद्दी विरासत का गाना सर जी।
0: अच्छा
1: हाँ जी सर जी, पुराना गाना सर जी
0: दुयो नारी भी हो।
1: हाँ जी सर जी, हाँ जी सर जी।
0: इस राणा साहब बोला था कि दो बोला दिन की दो दो लाड़ी थी तो क्या क्या जिद जिद कर दी दो दो लाड़ी था अकबल दे कि मुझो मोचड़ू ले दे दो बल दे मुझो सालनू ले दे कुछ इस प्रकार इस गाने का वर्णन जरूर तुम सुन ले जी।
1: चलो नवा नवा सुन देना गाना सर जी
0: अच्छा चलिए ठीक है जी, जरूर होना जी, जरूर होना। वैसे गीत की सो 10-12 साल पहले छूरत हो और बड़ा
1: हाँ
0: बड़ा इन द ट्रेडिशनल सॉन्ग आए लेकिन बहुत पुराना ये गीत हा और इस गीत वाकई में बड़ा मजा इंदा हा और तुहे रिसर्च करी करी फरमाइश दिच्छू कर देन रेडियो मंच।
1: हाँ जी सर जी,
0: चलिए बहुत शुक्रिया तुंदा जी इस बोली जो इस कार्यक्रम जो इस नाचीज सचिन कपूर जो इतना प्यार देने वास्ते
1: तोंदा भी सर जी शुक्रिया, इतना मेहनत कर दे पूरा स्टाफ तोंदा एफएम रेडियो गुंजन दिन रात कार्यक्रम प्रस्तुत कर बहुत अच्छा लगता सर जी नु
0: जी।
1: बाकी एक रिक्वेस्ट है सर जी
0: जी,
1: दो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है सर जी।
0: कमाल है सर, आहा जोड़े दो हाथ
1: देखा सर जी, जियां एक गाना चलदा ना प्रोग्राम तो हुंदा गीत सुहाने नए पुराने।
0: बिल्कुल गीत सुहाने नए पुराने प्रोग्राम
1: थोड़े सर जी देश भक्ति दे गाने चलाया करा था।
0: अच्छा
1: बड़ी मेहरबानी हुंदी सर जी क्योंकि मारे फौजी भाई भी सुनदे।
0: अच्छा
1: हां जी सर जी,
0: चलिए ठीक है जी, तो है जो इनपुट दिता है इति पर जरूर है वर्कआउट कर ले और कुछ एक कार्यक्रम किया सो जरूर इस प्रकार रे बढ़न ले।
1: हां जी चलो धन्यवाद सर जी, तोंदा बड़ा बड़ा धन्यवाद।
0: धन्यवाद जनाब, धन्यवाद।
1: नमस्ते सर जी।
0: नमस्ते जी, इन द अगले श्रोता होगी कनेक्टेड इन श्रोतों तो ऐसा बी ट्यून करो इस समय वेड़ी गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम हिंदी अपनी गप्पा हूँ कर देना। नमस्ते जी।
2: नमस्ते जी।
0: नमस्ते जी, नमस्ते, कौन बोल देन और कड़ी थम बोल देन जनाब?
2: हां जेंगो गाइड बोलता सिद्धवाड़ी
0: हूं। अच्छा सिद्धवाड़ी थम जेंगो गाइड?
2: हां जी।
0: क्या बात है जेंगो गाइड जी, करे लगुरेन
2: ए जी थोड़ा लोंगड़ो थेउरा दातन थेउरा।
0: अच्छा
2: दाड़ी थेउरी ना।
0: अच्छा
2: तेरी बिच्छु अंदर रेन सट्टा फुट।
0: क्या बात है, क्या बात है।
2: हां
0: लोंगड़ो के लगुरे तो है
2: लोंगड़ो 40 रुपये मुठ लूरो जी।
0: अच्छा 40 रुपये।
2: हाँ जी।
0: और दातन?
2: दातन 5 रुपये मुठ।
0: अच्छा
2: हाँ जी।
0: कितने बजे तक अवेलेबल रहने तो है?
2: आऊं दा जस नहीं है संजल टाइम में दूसरे टाइम में इंदा घर टाइम पास ना हुंदा ते डीच वे।
0: अच्छा अच्छा चलिए आज तो सो गया, अगर टाइम लगदा तो मुलाकात करना इंदन जी।
2: ठीक है जी ठीक।
0: जी जनाब कौन देने गीत होना पसंद कर ले?
2: गीत कोई होना ही दे जी, सुनील राणे रा
0: कोई भी गीत।
2: हाँ
0: चलिए ठीक है जनाब, जरूर होने ले।
2: ठीक है जी ठीक है, धन्यवाद।
0: नमस्ते, धन्यवाद। अगले श्रोता होगी कनेक्टेड हिन एफएम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर, तो सभी ट्यून कर रहे समय रेडियो गुंजन धर्मशाला और आऊं सचिन कपूर तुंदे वीडियो सेट पर इस समय हाजिर हा। नमस्ते जी।
3: हेलो, नमस्ते भाई जी।
0: नमस्ते जी, नमस्ते, क्या हाल चाल, ठीक ठाक?
3: हां जी ठीक, आप सुनाओ?
0: बहुत बढ़िया जी। कर लुगरन कैलूर कमाना कौन बल्लू देन और कड़ी तो बल्लू देन
3: साक्षी बोरी सुनिए मेरे टीम से।
0: अच्छा जी साक्षी जी, कुंडने की थोड़ा पसंद कर ले
3: गुणा देवी माता का।
0: अच्छा गुणा देवी माता का भजन किया सो होना है ना जी?
3: हां जी।
0: चलिए ठीक, हां जी
3: सुना देना।
0: हाँ जी हाँ जी जरूर साक्षी जी, धन्यवाद कॉल करने वास्ते।
3: धन्यवाद।
0: चलिए श्रोताओं, कार्यक्रम जो है थोड़ा करी हगो और बढ़ाई लंदे हिन और इस प्रकार होगी जानकारी छुकर दिन ता जानकारी रा सिलसिला किया सो जरूर माफ करे, इस प्रकार होगी इन दे श्रोता के सोस होगी जुड़ू कर दे हिन और कुछ एक जानकारी भी दे छुकर दिन। बहरहाल ये गीत तो वाकई में बड़ा पुराना गीत है और इस गीत मंच वाक्य में अगदी विरासत रहे।

केवल सुनील राणा ना, जो गायक नीतियाँ सुनील राणा जी, सुरेश कपूर और मोनिका एवं पूजा इस गीता जो किया सो अपनी स्वर लहरी थों किया सो गूंजरा और गौराहा। बहरहाल आइया बहुत प्यारा गीत है, बहुत ही अच्छा गीत है जरूर। हूँ अंदर तू सभी जो प्यारा दे गीत की दुई लाड़ी बुंदी और क्या क्या है अड़ी क्या ने सो कर दे, अक मोचड़ू जो लंदे आ तो दुई सालू जो लंदे, अक तुड़का लंदे आ तो दुई क्या कर दे। आइए हूँ इस गीत रे माध्यम तो

श्रोत एफ एम ब्यान्ड 91.2 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो गुंजन धर्मशाला तो है सभी ट्यून कर रहा और कार्यक्रम हिंदी अपनी गप्प लेकर आया हूँ। सचिन कपूर हाजिर है तुंदे वीडियो सेट में अकमो के फिर बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन हाँ सभी होने वाले रहे सभी श्रोतागण रहे। तो चलिए श्रोतों कार्यक्रम में जानकारी रहा पिटारा की आसोई खुलते रहना, जानकारी के अनसोई चलते रहने और इन द श्रोता के अनुसवास हो गए इं ही जुड़ते रहना, इन जी जुड़ू कर देने और जानकारी जी चलू कर दी गीत संगीत जिया इस समय चलू कर दे तो सब हूँ कर देने इस नाची सचिन कपूर जो अपने वीडियो सेट पर आइए जी कार्यक्रम जो आगू बढ़ देने और अगली जानकारी तुझ होगी शेयर कर देन श्रोतों। धर्मशाला वे सहायक अभियंता रमन भरमोरी यह सूचित करो जो कि इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट रहीन रमन भरमोरी ये सूचित करो हा कि श्रोताओं लाइन रे आवश्यक वक रखाव कार्य चलना हा 8 जुलाई जो यानी कि 8 जुलाई जो चलना हा बुधवार जो है ना बेगा 9 बजे लेकर संध्या 5 बजे तक रहे विभिन्न क्षेत्र में किया सो रख रखाव चलना और लाइट किया श्रोताओं सो बंद रहने बोले है ना। सहायक अभियंता ये दसो है कि 11 KV दाड़ी फीडर अंतर्गत शीला चौंक अचीवर हब दाड़ी गैस एजेंसी वे गैस एजेंसी वे जो एरिया तस क्षेत्र में सोगी सोगी लुंगड़ू चौंक अमूल मिल्क शॉप रे सोगी गबली दाड़ी पासू बथेड़ तथा आसपास वे क्षेत्र में किया सो निर्धारित समय वे दौरान बिजली आपूर्ति किया सो बंद रहनी है। इसी प्रकार 11 KV बगली फीडर अंतर्गत मटोर बगली पटोला पुराना मटोर चैतड़ू मस्तपुर ढगवार और तथा इस वे आसपास क्षेत्र में किया सुबह 9 बजे लेकर संध्या 5 बजे तक या फिर जी तक काम न बंद 3 तक के सो लाइट बंद रहने अगर किसकी कारणवश हर तरीका जो अगर मौसम खराब हुंदा हा तो ये कार्य किया सो अगले दिन जो किया सो पोस्टपोन बुझे गाना हा। तो यह जानकारी दूँ तो है बिल्कुल रूबरू बुझ गए हूँ कि हर तरीका जो किया सो कड़ी कड़ी लाइट नहीं हा तो अपने लाइटर का काम किया सो बेगा 9 बजे पहले गया सो हर तरीका जरूर कर लैन है ना। मेन आजकल जो मुझे ही लगता बड़ा इंपॉर्टेंट काम इंसान री जिंदगी में सो आ कि फोन रिचार्ज करना है ना, फोन जो माफ करा चार्ज करना ता सो कर लेना भाई बेगा 9 बजे तो पहले 8 तरीका हो ना फोन जो चार्ज करी लेना प्रेस करी लेने है ना। नहीं नहीं रे पानी तो गर्म लियो ना कर दे बुना जो लियो कर दे सो नहीं भी लें 9 बजे पहले तो इस प्रकार की चीज़ जगह सो जरूर करी लें शोतों। ता कार्यक्रम हिंदी अपनी गप्पा बिल्कुल लाइव ही चलती रहनी तुंदे वीडियो सेट में शोतों और जानकारी रा सिलसिला गया सो यहीं खुलते रहना तुंदे अपने वीडियो गुंजन धर्मशाला मंच फरमाइशर दौर के सो पूरा करते हैं बनी रहे तो सब हार जे सचिन कपूर सो की गूंज अपने बन रही और गूंज प्यारे प्यारे श्रोता रे

श्रोतो एफएम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो गंजन धर्मशाला तो है सभी ट्यून कर रहा है और सचिन कपूर सो की तो है हिंदी अपनी गप्पा हूँ कर देती है जो कि अब समय बुझेगो तो सभी तो अलविदा लेने रहा तुसु सभी जो टाटा बाय बाय करने रहा श्रोतो चिट्टे वे सो की पंजाब रह तस कर गए सो रेस्ट भू इन श्रोतो है ना और मांझी पुल रे पास किया चिट्टा पकड़े हुआ शो तो बाकी मैं ये नशा गया सो इस समय धर्मशाला में भी बहुत ज़्यादा गया सो फैली कुछ हो रहा है ये सुक्का नशा शो तो चिट्टे री गल है करू कर दिन हम हमेशा बलदा कि जड़ी भी तुस वो इस तरीके रहे चटोरी मोड़े के छू कर दें जाए सो ग्राउंड बेखुरे जाए सो तुंद घर रहे कड़िए भी बेखुरे हिन ये मत सोचा कि एक फलाने रहे दब्बू आसू के लैने देना ना ना ना ना ये चिट्टा इस समय इतना ज़्यादा घातक बुझी छू रहा है कि हर इवन कि हिमाचल सरकार प्रयास करू कर दिया अब सब NGOs के अनुसार प्रयास करू कर दी हिन इवन कि हर कोई प्रयास करू कर दे इस ख़त्म करने लेकिन फिर भी ये जो तस्कर ने इसी खत्म ना बुना दे चुक कर देन ये जगह जगह अपने पैर के सो पे सारी चुक रहा था इति वास्ते ये ना सोचना कि फलाने डब्बू वासू के लेने देना ना तो समय तिन्या पकड़ा और पुलिस रे हवाले कर नहीं ता ये सुक्का नशा तुंदी जड़ा जो कहना है ख़त्म कर सकते तो सो अपो भी किया श्रोताओं सो पता ना लगना हा जी बिल्कुल ऐसा गल रहा बिल्कुल ध्यान दीन तो सो अपो भी ना पता लगना कि सुक्का नशा किया सो कहने ने तुंदे घर जो बर्बाद करेगो कहने ने तुंदे नौजवाना जो बर्बाद करेगो तुंदी नस्ला जो बर्बाद करेगो हाँ इस देश री रीढ़ री हड्डी जो क्या सो बर्बाद करेगो हा यह सो वाक्य में पता भी ना चलना सो मेरी सब भी होगी हाथ चौड़ी करिए बेनती हा जड़ी भी तुसु इस प्रकार रहे चटोरी मिलते हैं जो चिट्टे नशा करू कर देन जो सुक्का नशा करू कर देन तिया सबक जरूर सिखा इन्या शब्द था सचिन कपूर ले लेनो तो सुतो इजाजत हंसते रहे मुस्कुरंदे रहे और रेडी गुंजन मां आरजे सचिन कपूर जो यहीं हुंदे रहे नमस्ते धर्मशाला।

0: बोलो भाई।
1: बस बताने आया हूँ, स्वच्छता की परीक्षा शुरू हो चुकी है, तैयार हो ना?
2: स्वच्छ सर्वेक्षण तो अभी कर लीजिए ना, आइए।
3: हमारा घर स्वच्छता की हर परीक्षा में अव्वल ही आएगा, और तो और हम सब शौचालय का भी इस्तेमाल करते हैं।
1: पर इस परीक्षा में तो आप सब फेल हो गए।
2: फेल?
1: स्वच्छता की असली परीक्षा सिर्फ अपने अपने घरों की नहीं, हमारे पूरे गाँव की है। आखिर गाँव भी तो हम सबका घर है। क्यों, अब तो गाँव खुले में शौच मुक्त भी है। मिलके साफ रखेंगे तो गांव को मिलेगा फर्स्ट क्लास। तो शुरू कर दो परीक्षा की तैयारी।

0: अरे देवा, बड़ा झटका लगा है।
1: तुम्हारे भी अकाउंट से 5 लाख जाते तो ऐसा ही होता।
2: मेरे अकाउंट से 5 लाख?
1: पाटिल फोकस, सॉरी, ये पढ़ो।
3: डियर यूजर, योर बैंक अकाउंट विल ब्लॉक टुडे, प्लीज इमीडिएटली अपडेट KYC। लिंक भी है।
4: अरे मैडम, ये बैंक का ऐप लगता है।
1: KYC अपडेट करने के लिए ऐप डाउनलोड? स्ट्रेंज, दिखा। यहाँ इन्होंने बैंक का समझ के फेक ऐप डाउनलोड किया, यूजर आईडी, पासवर्ड, ATM पिन, अकाउंट नंबर डाला, और
2: वहाँ फ्रॉडस्टर्स को मिल गया एंट्री, इधर डिटेल्स उधर।
1: जीनियस पाटिल,
2: थैंक यू। पर मैडम, ये OTP?
1: वो भी ऐप से ऑटो फॉरवर्ड हो जाता है।
2: ओ माय फ्रॉड,
1: तुम तो समझ गए। और आप अनजान लिंक से कोई ऐप डाउनलोड ना करें। अक्सर फ्रॉडस्टर्स नकली बैंक ऑफिशियल्स बनके ऐप्स डाउनलोड करवाते हैं और फोन से आपके बैंक के सारे डिटेल्स कॉपी करके अकाउंट से पैसा चुरा लेते हैं। बैंकिंग ऐप्स सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट से ही डाउनलोड करें। सतर्क रहें, आइए मिलकर चीट्स को बीट करें।
5: तुम लोगों को खोने से डरते हो मित्र, कभी ये भी सोचो कि कहीं इस चक्कर में तुम खुद को तो नहीं खो रहे। जो तुम्हारी खामोशी को नहीं समझ सकता, वो तुम्हारे शब्दों को भी कभी नहीं समझ पाएगा। अकेले चलने का साहस रखो मित्र, क्योंकि यहाँ सलाह देने वाले हजारों मिलेंगे पर साथ देने वाला कोई नहीं। जिंदगी में कुछ लोग तुम्हें सिर्फ ये सिखाने आते हैं कि हर किसी पर भरोसा कभी नहीं करना चाहिए। जितना तुम लोगों के सामने सीधे बनोगे मित्र, ये दुनिया तुम्हें उतना ही ज्यादा उलझाती चली जाएगी।
6: क्या आप नहीं चाहते कि आपका व्यापार छूले आसमान की ऊंचाइयां? तो अपने व्यापार को कीजिए प्रचारित सही तरीके से सही जगह पर। अब विज्ञापन दीजिए और बन जाइए हर किसी की पहली पसंद। व्यापार को मिलेगी नई पहचान, ग्राहकों की संख्या में होगा जबरदस्त इजाफा और आपका मुनाफा बस पूछिए मत। हमारे साथ जुड़िए और देखिए फर्क खुद। अपने व्यापार को दें नई उड़ान। विज्ञापन देने के लिए आज ही संपर्क करें 9816473615 पर। आप बढ़ेंगे तभी तो देश बढ़ेगा।
7: नमस्ते, मैं विकास हूँ।
8: अरे बहू, देख क्या रही हो, प्रगति खुद चलकर हमारे दरवाजे पर आई है, उसका स्वागत करो।
9: पापा जी, ये कह रहे विकास और आप कह रहे प्रगति?
10: ये जनगणना के लिए आए हैं। जनगणना से हर जन की प्रगति और विकास दोनों होता है।
7: जी हाँ, मैं पूछूंगा कुछ सवाल और आपके द्वारा दी गई सही और सटीक जानकारी से एकत्र होंगे कुछ आंकड़े, जिससे देश बनाएगा नीतियां और योजनाएं और उससे हर घर तक पहुंचेगी प्रगति और विकास।
9: अब समझी, जनगणना से हमारी प्रगति और हमारा विकास। स्वागत है
11: अंकल, मेरे लिए भी कुछ है?
7: जी हाँ, एक उज्जवल कल। देश में जनगणना 2027 शुरू हो चुकी है। जब इन्यूमरेटर आपके घर आए तो उनका स्वागत कीजिए, उन्हें सही और सटीक जानकारी दीजिए, क्योंकि आपके दिए गए सही जवाब से ही देश आगे बढ़ेगा। चलो निभाएं अपनी जिम्मेदारी, करें जनगणना में भागीदारी।
12: हमारी जनगणना, हमारा विकास।
13: और भाई शुक्ला, तेरी TB के क्या हाल हैं?
14: अरे भाई, 2-4 हफ्ते का इलाज करवाया और TB की हो गई अजामत।
15: ये लीजिए हुजूर, आपकी ये हजामत भी पूरी हो गई।
14: ये क्या, आधी दाढ़ी? भाई कर क्या रहे हो?
15: कमाल करते हैं आपकी, आधी दाढ़ी मंजूर नहीं, TB का आधा अधूरा इलाज मंजूर है आपको।
14: है?
15: याद रखिए, TB का आधा अधूरा इलाज करवाइएगा तो TB आपको दोबारा हो सकता है, इसलिए TB से मुक्ति पाने के लिए TB का पूरा इलाज करवाइए, फुल कोर्स। इंडिया वर्सेस TB, TB हारेगा, देश जीतेगा।
16: मम्मी, पति और पत्नी के गुस्से में क्या अंतर होता है?
17: पति का गुस्सा खांसी जुकाम की तरह होता है, जो आता है और चला जाता है, किसी को पता ही नहीं चलता। और पत्नी का गुस्सा कोरोना वायरस की तरह होता है, जो उसके संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति को प्रभावित करता है।
16: बात तो सही है।

92.2 MHz पर। मैं हूँ आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त सुरुचिका, हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम लेकर गीत सुहाने नए पुराने।

दोस्तों बहुत ही प्यारा सा गीत आप सभी ने एंजॉय किया। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और फिर से चलते हैं एक प्यारे से गीत की तरफ।

आप सभी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं, गीत सुहाने नए पुराने, और आज के इस सफर को आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ।

दोस्तों आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 MHz पर अपना मन पसंद रेडियो कुंचन धर्मशाला और कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों आप सभी, गीत सुहाने नए पुराने इस प्यारे से सफर को आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और लेकर चलते हैं आप सभी को फिर से एक प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक की तरफ।

दोस्तों, नए पुराने गीतों का ये सफर आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से। आइए एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों ये है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

दोस्तों बहुत ही प्यारा सा गीत आप सभी ने एंजॉय किया अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का ये अगला खूबसूरत सा गीत। आप सभी इसी तरह से एंजॉय करते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला, गूंज अपने पन की।

दोस्तों बहुत ही प्यारा सा गीत आप सभी ने एंजॉय किया। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और फिर से चलते हैं एक प्यारे से गीत की तरफ।

आप सभी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं, गीत सुहाने नए पुराने, और आज के इस सफर को आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ।

नमस्ते जी, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे। नमस्ते, नमस्कार आप सभी को। मेरा प्यार भरा नमस्ते है, मेरा नमस्कार आप सभी स्वीकार कीजिएगा। मैं आप सभी का अपना आरजे वीडियो की सचिन कपूर हाजिर हुआ हूँ कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला को लेकर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, खुश होंगे और तंदुरुस्त होंगे। अक्सर कहता हूँ, देखिए ये जो चीज़ें मैं कहता हूँ ना, इसके पीछे बहुत गहरा राज है। कभी सोचिए, आप बेहतरीन हैं तभी तो आपको चीज़ें जो हैं वो बेहतरीन लगती हैं, तभी तो आपको हर एक चीज़ जो है वो अच्छी लगती है ना। अगर आप स्वस्थ नहीं हैं, अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा फिर, है ना। तो इसलिए कहता हूँ कि बेहतरीन होंगे, अच्छे होंगे और खुश होंगे। तो मैं सचिन कपूर हूँ, गुड इवनिंग धर्मशाला कार्यक्रम को लेकर हाजिर हुआ हूँ आप सभी के वीडियो सेट पर और फेसबुक के माध्यम से आप सभी के फ़ोन पर भी, फेसबुक पर भी, है ना। तो कार्यक्रम 8 बजे तक बिल्कुल लाइव चलेगा। इस कार्यक्रम में, जैसा कि आप सभी भली भांति जानते हैं कि इस कार्यक्रम में जो है वो आप सभी को जानकारियों के साथ हम रूबरू करवाएंगे, साथ ही साथ गीत संगीत का पिटारा जो है वो भी ज़रूर खोलेंगे। तो ये सबसे पहले लेके चलते हैं आप सभी को, जी बिल्कुल, वेड़ी गुंजन के पूरे परिवार की ओर से जो है हमारे परम पावन दलाई लामा जी को जन्म दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी बिल्कुल, और उनके 91वें जन्म दिवस पर उनको ढेरों शुभकामनाएं। और इसी बीच में हमने तो शुभकामनाएं दी हैं, लेकिन जो हमारे मुख्यमंत्री साहब हैं, जी बिल्कुल, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री साहब ठाकुर सुखविंदर सिंह सुखू जी ने भी जो है वो उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। आध्यात्मिक गुरु परम पावन दलाई लामा जी को उनके 91वें जन्म दिवस पर बधाई और शुभकामनाएं। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुखू ने कहा है कि दलाई लामा करुणा, अहिंसा, शांति और मानवीय मूल्य के प्रतीक है तथा उनका पूरा जीवन मानवता को प्रेम के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता रहा है, देता आया भी है। श्रोताओ, है ना जी, है ना जी। उन्होंने कहा कि दलाई लामा की उपस्थिति न हिमाचल प्रदेश को विश्व के आध्यात्मिक मानचित्र पर विशेष पहचान दिलाई है, बिल्कुल, और हिमाचल प्रदेश को ये पहचान जो है वो दलाई लामा जी की वजह से मिली है। श्रोताओ, मुख्यमंत्री ने ईश्वर से उनके उत्तम स्वास्थ्य एवं उनके लिए बहुत शुभकामनाएं भी की हैं और साथ ही साथ मंगल कामनाएं भी की हैं, ताकि उनके विचार और शिक्षाएं आने वाली पीढ़ियों को जो है वो मार्गदर्शन प्रदान करती रहे, हमेशा जो है वो करती रहे। तो ये बहुत ज़रूरी है। एक बार फिर से रेडियो गुंजन के पूरे परिवार की ओर से जो है वो हम सभी परम पावन दलाई लामा जी के 91वें जन्म दिवस पर उन्हें बहुत सारी बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। तो आप सभी बने हो इस समय वेड़ी गुंजन की गूंज के साथ और मैं सचिन कपूर हूँ। आगाज़ बिल्कुल होगा जी, कार्यक्रम का आगाज़ एक प्यारे से गीत के साथ होगा। श्रोताओं, बिल्कुल आप सभी तक ये प्यारा सा गीत हम सुनाएंगे। मिलते हैं आपसे फिर ही कुछ ही देर में कुछ एक और खास जानकारियाँ लेकर। बने रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ यूं ही।

बिल्कुल श्रोताओं, बहुत प्यारा सा गीत हम सभी ने सुना एफएम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो गुंजन धर्मशाला में। और आपका दिल हमारे पास है और हमारा दिल आपके पास है श्रोताओं। उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ में ये प्यारा सा गीत था श्रोताओं। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। और श्रोताओं, आज वर्ल्ड रूरल डेवलपमेंट डे भी है, इसके बारे में भी हम चर्चा जो है वो ज़रूर करेंगे श्रोताओं। इसी के साथ अब हम मौसम की ओर चलते हैं। मौसम की जानकारी जो है वो आप तक साझा करते हैं। समय जो है वो श्रोताओं 19 डिग्री सेल्सियस के आसपास जो है वो तापमान है। जी बिल्कुल, आप सभी बखूबी देख भी रहे होंगे जो धर्मशाला में रह रहे हैं कि सुबह कितनी ज़ोरदार बारिश जो है वो हो रही है, है ना। जी बिल्कुल, इस समय जो है वो एग्जैक्टली मैं बताऊं तो 21 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान है। नमी की बात करिए तो नमी 85% जो है वो नमी है इस समय धर्मशाला का। ये मौसम है इस समय का श्रोताओं। तो कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं श्रोताओं, और जानकारियों का पिटारा यूं ही खुलता रहेगा, जानकारियों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आइए जी, लेके चलते हैं आप सभी श्रोताओं को इस प्यारे से गीत की ओर। बने रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ।

श्रोतों वेड़ी गुंजन धर्मशाला में आपने बहुत ही प्यारा सा गीत सुना, बहुत खूबसूरत गज़ल लिख रहा हूँ और तुम्हें देखकर आजकल लिख रहा हूँ। वाकई में ही बहुत प्यारा सा गीत हम सभी ने ये सुना। ये श्रोताओं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। जानकारियों का हमारे पास बहुत बड़ा पिटारा है, उसको धीरे धीरे खोल रहे हैं और वीडियो तक तो ये जानकारियाँ पहुँच ही रही हैं, लेकिन हम अपने फेसबुक के माध्यम से भी जो है वो लाइव होकर जितने भी हमारे फेसबुक के दोस्त हैं जितने भी हमारे फेसबुक के दर्शक हैं, है ना, जो देख रहे हैं हमें और रेडियो के ज़रिए श्रोता, उन तक ये जानकारियां हम जो है पहुँचा रहे हैं। श्रोताओं, ये जो बिजली विभाग की ओर से हमारे तक जानकारी आई है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ओर से जो हमारे तक जानकारी पहुंची है श्रोताओं, वो जानकारी आप तक हम पहुंचाते हैं। जी बिल्कुल, लाइनों के आवश्यक रख रखाव कार्य के चलते 8 जुलाई को जो है वो बुधवार प्रातः 9 बजे से लेकर सायं 5 बजे तक विभिन्न क्षेत्रों में जो है वो बिजली बंद रहेगी। अब किन किन विभिन्न क्षेत्रों में जो है वो बिजली बंद रहेगी, आइए वो पूरी जानकारी आपको विस्तार के साथ बताते हैं। सहायक अभियंता ने बताया कि 11 केवी दाढ़ी फीडर के अंतर्गत शीला चौक, अचीवर हब, दाढ़ी गैस एजेंसी के पास लुंगड़ू चौक, अमूल मिल्क शॉप के पास गबली दाढ़ी, पासू बतेर तथा आसपास के क्षेत्रों में जो है वो निर्धारित समय के दौरान बिजली आपूर्ति बंद रहेगी। इसी प्रकार 11 केवी बगली फीडर के अंतर्गत मटोर बगली, अंसोली पटोला, पुराना मटोर, चैतड़ू, मस्तपुर, ढगवाड़ तथा आसपास के क्षेत्रों में जो है वो सुबह 9 बजे से लेके शाम 5 बजे तक जो है वो बिजली बंद रहेगी श्रोताओं। जी बिल्कुल, और अगर मौसम ख़राब होता है तो ये कार्य जो है वो अगले दिन के लिए जो है वो पोस्टपोन किया जाएगा, और अगर मौसम सही रहता है तो उसी दिन ये कार्य यानी कि 8 जुलाई को ही ये कार्य जो है वो समाप्त हो जाएगा। 5 बजे तक जो है वो बिजली आने की पूरी संभावना है। 9 से 5 के बीच में जो है वो सभी बिजली विभाग के जितने भी फील्ड वर्कर हैं वो बिल्कुल इस कार्य को जो है वो अंजाम देने में सक्षम रहेंगे। तो चलिए, जानकारियों का पिटारा जो है श्रोतम वो यूं ही खुलता रहेगा। बने रहिए, जुड़े रहिए आरजे सचिन कपूर के साथ। आपका अपना ये नाचीज आरजे, लेके चलते हैं आप सभी श्रोताओं को इस प्यारे से गीत की ओर।

बाकी मैं श्रोता हूँ, ये गीत सुन के ना बहुत अच्छा वाला फील आता है। ऐसा लगता है पूरे दिन की थकावट जो है वो ख़त्म हो गई है। अगर आपने ये गीत बहुत ही प्यार से सुना होगा और बहुत ही मतलब शिद्दत के साथ अगर आपने सुना होगा, तो ये वाला फील आप सभी को भी ज़रूर आया होगा। दिल दीवाना गीत का गीत के बोल थे श्रोतों, मैंने प्यार किया गया मूवी से ये गीत लिया गया है। SP बाल सुब्रमण्यम और लता जी की आवाज़ में ये प्यारा सा गीत हम सभी ने सुना रेडियो गुंजन धर्मशाला में FM बैंड 91.2 MHz पर। आई श्रोतों, कार्यक्रम को थोड़ा सा आगे यूं ही बढ़ाते चलते हैं और कार्यक्रम में अब अगली जानकारियों के साथ आप सभी को ज़रूर रूबरू करवाते हैं। श्रोतों, आप सभी इस समय बने हुए हैं, जुड़े हुए हैं वेड़ी गुंजन की गूंज के साथ और कार्यक्रम सुन रहे हैं। गुड इवनिंग धर्मशाला, लेकर चलते हैं आप सभी को अगली जानकारी की और। चिट्टे के साथ पंजाब के तस्कर जो है वो अरेस्ट हुए हैं। श्रोतों, ज़िला पुलिस द्वारा नशे के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत गगल थाना क्षेत्र में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए जो है वो टीम ने पंजाब के एक युवक को 6.74 ग्राम चिट्टे के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ जो है वो NTPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामले की पुष्टि करते हुए DSP कांगड़ा मनोज कुमार ने बताया कि 5 जुलाई 2026 की रात करीब 1:40 पर जो है वो मुख्य आरक्षी कुलदीप डोगरा के नेतृत्व में जो है वो CIA कांगड़ा की टीम गगल थाना क्षेत्र के अंतर्गत मांझी पुल सरा रोड पर जो है वो अपनी टीम के साथ कार्रवाई कर रही थी। इसी दौरान सड़क किनारे एक युवक जो है वो संदिग्ध अवस्था में खड़ा दिखाई दिया। पुलिस टीम ने जैसे ही पूछताछ के लिए अपना वाहन रोका, युवक ने घबराकर अपनी लोहर की जेब से एक संदिग्ध वस्तु बाहर फेंक दी। पुलिस ने मौके पर मौजूद गवाह की उपस्थिति में जो है वो तलाशी ली और उसी समय चिट्टा बरामद जो है वो हुआ और उसे जो है वो ये 27 वर्षीय ये युवक है श्रोतों, बलविंदर सिंह पुत्र नरेश सिंह निवासी तहसील एवं ज़िला, ये मतलब पठानकोट का है ना। तो आइए कार्यक्रम में जानकारियों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, लेके चलते हैं आप सभी को एक और प्यारे से गीत की और। बने रहिए, जुड़े रहिए आज सचिन।

श्रोतम एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज पर वेडी गुंजन धर्मशाला। तो ट्यून हुआ ही है और आप सभी ने किया ही होगा। जितने भी हजार जितने भी लाख श्रोता हमें सुन रहे हैं, आप सभी एक बार फिर से तहे दिल से नाचीज सचिन कपूर स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। और जितने भी दर्शक हमें देख रहे होंगे, तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और जानकारियों का सिलसिला, जानकारियों का पिटारा यूं ही खोलते चलते हैं। श्रोतों, पर्यटक राजधानी कांगड़ा की पर्यटन नगरी धर्मशाला मैक्लोडगंज सहित जिला के अन्य पर्यटन स्थलों पर इस वर्ष समर सीजन के दौरान पर्यटकों की जो बढ़ोतरी है वो ज़्यादा हुई है। इस बात के लिए सभी को शुभकामनाएं। जितने भी कारोबारी हैं हमारे देश विदेश से, बड़ी संख्या में पर्यटकों के पहुँचने से पर्यटन कारोबार को नई गति मिली है। श्रोतों, खासकर विदेशी पर्यटकों की संख्या में पिछले वर्ष की तुलना में दुगने से अधिक अच्छा इजाफा देखने को मिला है। प्रचंड गर्मी के माह अप्रैल में जिला कांगड़ा के करीब 85,000 घरेलू और 4,500 विदेशी पर्यटक पहुंचे। श्रोतों, पिछले वर्ष 2025 में अप्रैल महीने में ज़िला में मात्र 2,662 विदेशी पर्यटकों का आगमन हुआ था, जबकि इस वर्ष ये संख्या बढ़कर जो है वो 4,500 पहुंच गई है। इसे ज़िला में पर्यटन गतिविधियों में जो है वो लगातार विस्तार का संकेत मिलता है। समर सीजन के दौरान धर्मशाला, मैक्लोडगंज, भागसूनागर, धर्मकोट, नड्डी, खनियारा, खड़ोता, पालमपुर और बीड़ बिलिंग में पर्यटकों की सबसे अधिक आवाजाही रही है। अप्रैल और मई के दौरान पर्यटन कारोबार पर समर सीजन का सकारात्मक असर साफ तौर पर देखने को मिला है। श्रोतों, पर्यटन विभाग कांगड़ा के जिला पर्यटन अधिकारी विनय दीवान ने बताया कि जिला में स्पोर्ट्स टूरिज्म भी पर्यटन को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभा रहा है। विशेष रूप से पैराग्लाइडिंग के लिए जो है वो दुनिया भर से पायलट और एडवेंचर प्रेमी बीड़ बिलिंग पहुँच रहे हैं, जिसमें विदेशी पर्यटकों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि आने वाले महीनों में भी ज़िला में पर्यटकों की आवाजाही इसी तरह रहेगी और बनी रहेगी, जिसमें पर्यटन कारोबार और होटल उद्योग को और मजबूती मिलेगी। श्रोतों, तो बिल्कुल विश्व प्रसिद्ध ट्रैकिंग साइट त्रिवण धौलाधार, इंद्रहार पास, खड़ोता के ठटारना, राइजिंग स्टार हिल, आदि हिमानी चुमुंडा, गुणा माता मंदिर सहित अन्य भी पर्यटकों को अपनी ओर जो है वो खींच रहे हैं। इस तरह के अन्य स्थल जो हमारे पास हैं श्रोतों, और कुदरत की देन से जो है वो हम सभी हिमाचल के इस खूबसूरत शहर धर्मशाला में हम सभी पैदा हुए हैं, वो बहुत खुश नसीब हैं। और साथ ही साथ ये इजाफे की बात जो है वो हमने आपसे की, अप्रैल से लेके अभी तक कितना इजाफा जो है वो होटल कारोबारियों को हुआ है, कितने पर्यटक जो है वो यहाँ पर आए हैं। तो इसी तरह जानकारियों का सिलसिला चलता रहेगा। श्रोतों, आप सभी बने हुए इस समय आरजे सचिन कपूर के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला।

श्रोता एफ एम बैंड 91.2 MHz पर आप सभी ने ट्यून किया है वेड़ी गुंजन धर्मशाला और मैं हूं आपके साथ आपका अपना आरजे वेड़ी जो कि सचिन कपूर। बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है एक बार फिर से सभी सुनने वालों का, सभी श्रोतागण का। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। कार्यक्रम में जानकारियों का सिलसिला श्रोताओं यूँ ही चलता रहेगा, गीत संगीत का सिलसिला जो है वो भी यूँ ही चलता रहेगा। श्रोताओं आइए लेके चलते हैं अब आप सभी को थोड़ी सी और आगे जी बिल्कुल, यानी कि अगली जानकारी की ओर आपको रूबरू करवाते हैं। श्रोताओं हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग ने स्कूल शिक्षा विभाग में जूनियर ऑफ असिस्टेंट लाइब्रेरी के 78 पद को भरने के लिए जो है वो पोस्ट कार्ड 250024 के तहत आयोजित कंप्यूटर आधारित परीक्षा में सफल हुए उम्मीदवारों को दस्तावेजों की जांच के बाद अंतिम परिणाम घोषित कर दिए हैं। श्रोतों आयोग के सचिव डॉक्टर विक्रम महाजन ने बताया कि इन पदों के लिए कुल 1355 उम्मीदवारों ने जो है वो आवेदन किया था, जिनमें से 1051 उम्मीदवारों ने जो है वो कंप्यूटर आधारित परीक्षा दी थी और इस परीक्षा में लगभग 160 उम्मीदवारों का चयन दस्तावेजों की जांच के लिए जो है वो किया गया था। 6 और 8 जून को, यानी कि आज और 8 जून को दस्तावेजों की जांच के बाद 77 उम्मीदवारों का चयन किया गया है। पात्र उम्मीदवार न मिलने के कारण जो है श्रोताओं वो स्वतंत्रता सेनानी परिजन का एक पद खाली रह गया है। सचिव ने बताया कि ये अंतिम परिणाम सभी सफल उम्मीदवारों के नाम, रोल नंबर और अंकों सहित आयोग की वेबसाइट पर जो है वो उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। श्रोतों जी बिल्कुल, हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग की वेबसाइट पर जो हैं वो बिल्कुल उपलब्ध करवा दिए जाएंगे आयोग की वेबसाइट पर। श्रोताओं रोल नंबर और अंक सहित कार्यक्रम में जानकारियों का पिटारा यूँ ही चलता रहेगा, सिलसिला यूँ ही चलता रहेगा। आइए लेके चलते हैं आप सभी श्रोताओं को इस प्यारे से गीत की ओर। बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा हमारे साथ रेडियो गुंजन की इसी गूंज के साथ। यूं ही

श्रोतो एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज पर हवेली गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और कार्यक्रम आरजे सचिन कपूर के साथ बिल्कुल लाइव सुन रहे हैं। श्रोतो, जैसे कि मैंने बताया था कार्यक्रम के स्टार्टिंग में कि आज वर्ल्ड रूरल डेवलपमेंट डे है, यानी कि विश्व ग्रामीण विकास दिवस के दिवस है। हर साल जो है वो 6 जुलाई को विश्व ग्रामीण विकास दिवस मनाया जाता है। श्रोतो, इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में सतत विकास और लोगों के जीवन स्तर पर सुधार के प्रति जागरूकता बढ़ाना। जी बिल्कुल श्रोताओं, उद्देश्य क्या है विश्व ग्रामीण विकास दिवस के बारे में? दुनिया की लगभग 80% गरीब आबादी जो है श्रोताओं, वो गांव में रहती है। ये दिवस कृषि उत्पादन बढ़ाने, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने और ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाएं पहुंचाने पर जोर देता है। संयुक्त राष्ट्र यूएन ने इस दिवस को जो है वो विशेष रूप से ग्रामीण समुदाय के उत्थान और एकीकृत ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए मान्यता दी है। श्रोताओं, जैसे भारत जैसे कृषि प्रधान देश में जहाँ की अधिकांश आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में बसती है, गांव को डिजिटल और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने इस दिवस का जो है वो प्रमुख लक्ष्य है। श्रोताओं, अन्य जानकारियाँ आप तक हम ज़रूर पहुँचाएंगे। श्रोताओं, आइए लेके चलते हैं आप सभी को इस गीत की ओर।

0: शुद्ध एफएम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सभी ने ट्यून किया है वेड़ी गुंजन धर्मशाला। 7 बज चुके हैं श्रोताओं और अब वक्त हो गया है वेड़ी गुंजन धर्मशाला में समाचारों का।
1: सुभियांतों के निमंत्रण पर जकार्ता गए हैं, एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ वार्ता करेंगे और रणनीतिक भागीदारी में प्रगति की समीक्षा करेंगे। वार्ता में दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होने की उम्मीद है। जकार्ता कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण प्रधानमंत्री मोदी का भारतीय समुदाय को संबोधन होगा, जिसे लेकर पूरे देश में उत्साह है। 8 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी ऐतिहासिक प्रम्बनन मंदिर के दर्शन के लिए योग्यकार्ता जाएंगे। संदीप दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
1: इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ तीसरे भारतीय ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भी शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड जाएंगे। प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ वार्ता करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि तीनों देशों की यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और सशक्त होगा। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि सुधारों, डिजिटलीकरण और पेशेवर प्रबंधन के माध्यम से सहकारी आंदोलन एक नए चरण में प्रवेश कर रहा है। सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह में श्री शाह ने कहा कि प्रत्येक क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली 5 सहकारी समितियों को मान्यता देने के लिए एक रैंकिंग ढांचा घोषित किया गया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज राष्ट्रीय राजमार्ग माल परिवहन प्रबंधन लिमिटेड की समीक्षा बैठक की। बैठक में देश भर में बनाए जा रहे बहु माध्यम माल परिवहन पार्क, रोपवे और राजमार्गों के किनारे यात्रियों के लिए विकसित की जा रही सुविधाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। श्री गडकरी ने कहा कि इससे सड़क, रेल और अन्य परिवहन साधनों के बीच बेहतर संपर्क स्थापित होगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि तकनीक आधारित द्विभाषी प्रबंधन शिक्षा से देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच शिक्षा की दूरी कम करने में मदद मिलेगी। नई दिल्ली में भारतीय प्रबंधन संस्थान उदयपुर के नए ऑनलाइन द्विभाषीय व्यवसाय प्रशासन स्नातक पाठ्यक्रम के उद्घाटन समारोह में उन्होंने कहा कि द्विभाषीय व्यवस्था के कारण भारतीय प्रबंधन संस्थाओं की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचेगा। सरकार ने कहा कि 104 करोड़ से अधिक स्वास्थ्य कार्ड, 93 करोड़ से अधिक आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता आभा से जोड़े गए हैं। यह देश की एकीकृत डिजिटल सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति है। आभा आधार कार्ड की तरह 14 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या है, जो एक व्यक्ति को व्यापक स्वास्थ्य प्रणाली से सुरक्षित रूप से जोड़ती है। मौसम विभाग ने कहा कि अगले 3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर के कुछ हिस्सों से गुजरात, हरियाणा और पंजाब के कुछ भागों के साथ राजस्थान में आगे बढ़ सकता है। उधर महाराष्ट्र के अधिकतर हिस्सों में लगातार वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त है। मुंबई और कोंकण क्षेत्र में बाढ़ और भूस्खलन से इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई हैं तथा सड़क, रेल और हवाई परिवहन में भारी व्यवधान देखा जा रहा है। पूरे राज्य में अधिकारी हाई अलर्ट पर हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जारी विरोध प्रदर्शन के बीच लोगों ने भारत सरकार से सहायता की अपील की है। पिछले 1 महीने से क्षेत्र में प्रदर्शन जारी है। लोगों ने भारत से दवाइयां और जरूरी खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में देर रात 12:30 बजे पुर्तगाल का मुकाबला स्पेन से होगा। और इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: बोलो भाई।
1: बस बताने आया हूँ, स्वच्छता की परीक्षा शुरू हो चुकी है, तैयार हो ना?
0: स्वच्छ सर्वेक्षण तो अभी कर लीजिए ना, आइए।
2: हमारा घर स्वच्छता की हर परीक्षा में अव्वल ही आएगा, और तो और हम सब शौचालय का भी इस्तेमाल करते हैं।
1: और इस परीक्षा में तो आप सब फेल हो गए।
0: फेल?
1: स्वच्छता की असली परीक्षा सिर्फ अपने अपने घरों की नहीं, हमारे पूरे गाँव की है। आखिर गाँव भी तो हम सबका घर है। क्यों, अब तो गाँव खुले में शौच मुक्त भी है। मिलके साफ रखेंगे तो गांव को मिलेगा फर्स्ट क्लास। तो शुरू कर दो परीक्षा की तैयारी।

0: अरे देवा, बड़ा झटका लगा है।
1: तुम्हारे भी अकाउंट से 5 लाख जाते तो ऐसा ही होता।
2: मेरे अकाउंट से 5 लाख?
1: पाटिल फोकस। सॉरी, ये पढ़ो।
3: डियर यूजर, योर बैंक अकाउंट विल ब्लॉक टुडे। प्लीज इमीडिएटली अपडेट KYC। लिंक भी है।
4: अरे मैडम, ये बैंक का ऐप लगता है।
1: KYC अपडेट करने के लिए ऐप डाउनलोड? स्ट्रेंज, दिखाओ। यहाँ इन्होंने बैंक का समझ के फेक ऐप डाउनलोड किया, यूजर आईडी, पासवर्ड, ATM पिन, अकाउंट नंबर डाला।
2: और वहाँ फ्रॉडस्टर्स को मिल गया एंट्री, इधर डिटेल्स उधर।
1: जीनियस पाटिल,
2: थैंक यू। पर मैडम, ये OTP?
1: वो भी ऐप से ऑटो फॉरवर्ड हो जाता है।
2: ओ माय फ्रॉड।
1: तुम तो समझ गए, और आप अनजान लिंक से कोई ऐप डाउनलोड ना करें। अक्सर फ्रॉडस्टर्स नकली बैंक ऑफिशियल्स बनके ऐप्स डाउनलोड करवाते हैं और फोन से आपके बैंक के सारे डिटेल्स कॉपी करके अकाउंट से पैसा चुरा लेते हैं। बैंकिंग ऐप्स सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट से ही डाउनलोड करें। सतर्क रहें, आइए मिलकर चीट्स को बीट करें।
5: तुम लोगों को खोने से डरते हो मित्र, कभी ये भी सोचो कि कहीं इस चक्कर में तुम खुद को तो नहीं खो रहे। जो तुम्हारी खामोशी को नहीं समझ सकता, वो तुम्हारे शब्दों को भी कभी नहीं समझ पाएगा। अकेले चलने का साहस रखो मित्र, क्योंकि यहाँ सलाह देने वाले हजारों मिलेंगे पर साथ देने वाला कोई नहीं। जिंदगी में कुछ लोग तुम्हें सिर्फ ये सिखाने आते हैं कि हर किसी पर भरोसा कभी नहीं करना चाहिए। जितना तुम लोगों के सामने सीधे बनोगे मित्र, ये दुनिया तुम्हें उतना ही ज्यादा उलझाती चली जाएगी।
6: क्या आप नहीं चाहते कि आपका व्यापार छूले आसमान की ऊंचाइयां? तो अपने व्यापार को कीजिए प्रचारित सही तरीके से सही जगह पर। अब विज्ञापन दीजिए और बन जाइए हर किसी की पहली पसंद। व्यापार को मिलेगी नई पहचान, ग्राहकों की संख्या में होगा जबरदस्त इजाफा और आपका मुनाफा बस पूछिए मत। हमारे साथ जुड़िए और देखिए फर्क खुद। अपने व्यापार को दें नई उड़ान। विज्ञापन देने के लिए आज ही संपर्क करें 9816473615 पर। आप बढ़ेंगे तभी तो देश बढ़ेगा।
7: श्रोतो FM बैंड 91.2 MHz पर आप सभी ने ट्यून किया है वेड़ी गुंजन धर्मशाला, और मैं हूं आपके साथ आपका अपना नाचीज आरजे सचिन कपूर। पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला में। श्रोतों, जैसे कि आप सभी बखूबी सुन रहे हैं कि जानकारियों का पिटारा जो है वो एक से एक निकलता जा रहा है, और गीत संगीत का पिटारा जो है वो भी बिल्कुल आपके साथ साथ जो है वो चला हुआ है। श्रोतों, तो कार्यक्रम को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और अगली जानकारी के साथ आपको रूबरू करवाते हैं। श्रोतों, हिमाचल में अब 3 दिन बहुत भारी बारिश की चेतावनी है। जी बिल्कुल श्रोतों, हिमाचल प्रदेश में बारिश का सिलसिला अब और तेज होने को जो है वो जा रहा है, और ज़्यादा तेज जो है वो हो सकता है। श्रोतों, ये सबब बनता जा रहा है। राज्य में जो है वो 7, 8 और 9 जुलाई तक भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। श्रोतों, रविवार को प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में बारिश और कई क्षेत्रों में गहरी धुंध भी छाई रही थी। श्रोतों, मौसम विभाग ने राज्य में 11 जुलाई तक बारिश जारी रहने का पूर्वानुमान जताया है। प्रदेश में बीते 48 घंटों के दौरान सबसे अधिक 84.2 मिलीमीटर वर्षा कांगड़ा जिला के जो है वो कमरूर में जो है वो दर्ज की गई है। श्रोतों, इसके अलावा धर्मशाला में लगभग 40 मिलीमीटर, बिलासपुर ज़िला के नैना देवी में 28.2 मिलीमीटर, मंडी ज़िला में 26.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई है। जी बिल्कुल श्रोतों, तो हिमाचल में अब अगले 3 दिन फिर से 7, 8 और 9 तारीख को जो है वो फिर से कहीं ना कहीं बारिश का कहर आप सभी को झेलना पड़ सकता है। श्रोताओं, और आप सभी से ये गुजारिश भी है हमारी कि आप सभी जो है वो जब ज़रूरी हो तभी जो है वो यहाँ वहाँ जाएं, भारी बारिश में या जब बिजली कड़क रही है तब ना जाएं, जब तूफान चला है तब ना जाएं। इन चीज़ों का ख़ास ख्याल जो है वो आप सभी ज़रूर रखें। श्रोताओं, कार्यक्रम आरजे सचिन कपूर के साथ सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला। जानकारियों का सिलसिला पिटारा यूं ही खुलता रहेगा, चलता रहेगा, बने रहेगा, जुड़े रहेगा रेडियो गुंजन की इसी

एफएम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सभी ने ट्यून किया है वेड़ी गुंजन धर्मशाला, और कार्यक्रम इस समय चल रहा है श्रोतों गुड इवनिंग धर्मशाला। तू जाने ना गीत के बोलते अजब प्रेम की गजब कहानी से लिया गया ये गीत है, और आतिफ असलम की आवाज़ में ये प्यारा सा गीत आप सभी ने वेड़ी गुंजन धर्मशाला में सुना। आइए श्रोतों कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अगली जानकारी के साथ आपको रूबरू करवाते हैं। बाल विकास समिति ज़िला कांगड़ा ने ज़िला के स्कूलों में छात्रों के उत्पीड़न के चलते हो रही आत्महत्याओं पर गहरी चिंता जाहिर की है। समिति ने पिछले कल खुंडिया थाना क्षेत्र के तहत एक 14 वर्षीय स्कूली छात्रा द्वारा देहरा उपमंडल के लोहर सुनहेता में स्थित स्कूल व हॉस्टल में हुए कथित उत्पीड़न के चलते आत्महत्या किए जाने के मामले में कड़ा संज्ञान लेते हुए पुलिस थाना खुंडिया से इस मामले की जांच की स्टेटस रिपोर्ट जो है वो की श्रोतों। ये जानकारी ज़िला कांगड़ा बाल विकास समिति के अध्यक्ष विक्रमजीत शर्मा ने दी। उन्होंने बताया कि विभिन्न समाचार माध्यमों से मिली जानकारी के आधार पर उनकी अध्यक्षता में इस समिति के सदस्यों संगीता गौतम, विजय कुमार, विकास और नरेश कुमारी ने बैठक करके इस मामले पर चर्चा की और इसकी स्टेटस रिपोर्ट जो है वो की दी श्रोतों। रिपोर्ट मिलने के बाद समिति नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई अमल में लाएगी। तो जानकारियों का पिटारा जो है वो श्रोतों यूं ही चलता रहेगा। आप सभी बने हुए हैं समय आरजे सचिन कपूर के साथ कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला सुन रहे हैं। बखूबी आप सभी जानकारियों का सिलसिला जो है वो भी चला हुआ है वो आप बखूबी सुन रहे होंगे, और साथ ही साथ गीत संगीत का सिलसिला जो है वो भी चला हुआ है श्रोतों। तो आइए कार्यक्रम को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और लेके चलते हैं आप सभी को इस गीत की ओर।

शोधो एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज पर हवेली गुंजन धर्मशाला आप सभी ने अट्यून किया है और मैं हूं आपके साथ आपका अपना आरजे वेड़ी जो कि सचिन कपूर। कार्यक्रम इस समय गुड इवनिंग धर्मशाला चला हुआ है श्रोताओं, और कार्यक्रम में हम आप तक जो है वो अनेक जानकारियां जो है वो पहुंचा रहे हैं श्रोताओं। आइए कार्यक्रम को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और अगली जानकारी के साथ आपको रूबरू करवाते हैं। क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय कुल्लू द्वारा जुलाई 2026 के लिए वाहन की पासिंग और ड्राइविंग टेस्ट का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। श्रोताओं, आरटीओ कुल्लू आकांक्षा शर्मा ने बताया कि निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आरटीओ कुल्लू में 6, 13, 18, 23 और 28 जुलाई को वाहनों की पासिंग तथा 27 जुलाई को ड्राइविंग टेस्ट का आयोजन होगा। जी बिल्कुल श्रोताओं, आरएलए कुल्लू में 9 जुलाई को जो है वो ड्राइविंग टेस्ट होंगे। उन्होंने बताया कि आरएलए मनाली में 7 तथा 22 जुलाई को जो है वो वाहन पासिंग और 8 जुलाई को जो है वो ड्राइविंग टेस्ट आयोजित किया जाएगा। श्रोताओं, कार्यक्रम में जानकारियों का सिलसिला जो है वो यूं ही चलता रहेगा, पिटारा यूं ही खुलता रहेगा। आप सभी इस समय बने हुए हैं वेड़ी गुंजन की गूंज के साथ श्रोताओं, और पाकिस्तान सरकार के खिलाफ मदद की आस में जो है वो आंदोलनकारी एलओसी तोड़ने के लिए भी तैयार। जी बिल्कुल, पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर पीओके में हालत पूरी तरह बेकाबू हो चुके हैं। सरकार की जो है वो 600 से ज़्यादा सामाजिक कार्यकर्ताओं की सामूहिक गिरफ्तारी के बाद पूरे इलाके में पाकिस्तान के खिलाफ विद्रोह छिड़ गया है। आंदोलन के सबसे बड़े चेहरे शौकत नवाज मीर और मीर को नज़रबंद किए जाने से नाराज जम्मू कश्मीर ज्वाइंट आवाम एक्शन कमेटी ने अब सीधे इस्लामाबाद को चुनौती दे दी है। जी बिल्कुल श्रोताओं, पाकिस्तान फोर्स ने निहत्ते लोगों पर चलाई गोलियां श्रोताओं। कार्यक्रम में जानकारियों का सिलसिला पिटारा यूं ही खुलता रहेगा, चलता रहेगा। आई श्रोताओं, लेके चलते हैं आप सभी श्रोताओं को इस प्यारे से गीत की ओर।

0: बोलो भाई।
1: बस बताने आया हूँ, स्वच्छता की परीक्षा शुरू हो चुकी है, तैयार हो ना।
0: स्वच्छ सर्वेक्षण तो अभी कर लीजिए ना, आइए।
2: हमारा घर स्वच्छता की हर परीक्षा में अव्वल ही आएगा, और तो और हम सब शौचालय का भी इस्तेमाल करते हैं।
1: पर इस परीक्षा में तो आप सब फेल हो गए।
0: फेल?
1: स्वच्छता की असली परीक्षा सिर्फ अपने अपने घरों की नहीं, हमारे पूरे गाँव की है। आखिर गाँव भी तो हम सबका घर है, क्यों? अब तो गाँव खुले में शौच मुक्त भी है। मिलके साफ रखेंगे तो गांव को मिलेगा फर्स्ट क्लास। तो शुरू कर दो परीक्षा की तैयारी।

0: अरे देवा, बड़ा झटका लगा है।
1: तुम्हारे भी अकाउंट से 5 लाख जाते तो ऐसा ही होता।
2: मेरे अकाउंट से 5 लाख?
1: पाटिल फोकस। सॉरी, ये पढ़ो।
3: डियर यूजर, योर बैंक अकाउंट विल ब्लॉक टुडे। प्लीज इमीडिएटली अपडेट KYC। लिंक भी है।
4: अरे मैडम, ये बैंक का ऐप लगता है।
1: KYC अपडेट करने के लिए ऐप डाउनलोड। स्ट्रेंज, दिखाओ। यहाँ इन्होंने बैंक का समझ के फेक ऐप डाउनलोड किया, यूजर आईडी, पासवर्ड, ATM पिन, अकाउंट नंबर डाला।
2: और वहाँ फ्रॉडस्टर्स को मिल गया एंट्री इधर, डिटेल्स उधर।
1: जीनियस पाटिल,
2: थैंक यू। पर मैडम, ये OTP?
1: वो भी ऐप से ऑटो फॉरवर्ड हो जाता है।
2: ओह माय फ्रॉड।
1: तुम तो समझ गए। और आप अनजान लिंक से कोई ऐप डाउनलोड ना करें। अक्सर फ्रॉडस्टर्स नकली बैंक ऑफिशियल्स बनके ऐप्स डाउनलोड करवाते हैं और फोन से आपके बैंक के सारे डिटेल्स कॉपी करके अकाउंट से पैसा चुरा लेते हैं। बैंकिंग ऐप्स सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट से ही डाउनलोड करें। सतर्क रहें। आइए मिलकर चीट्स को बीट करें।
5: तुम लोगों को खोने से डरते हो मित्र, कभी ये भी सोचो कि कहीं इस चक्कर में तुम खुद को तो नहीं खो रहे। जो तुम्हारी खामोशी को नहीं समझ सकता, वो तुम्हारे शब्दों को भी कभी नहीं समझ पाएगा। अकेले चलने का साहस रखो मित्र, क्योंकि यहाँ सलाह देने वाले हजारों मिलेंगे पर साथ देने वाला कोई नहीं। जिंदगी में कुछ लोग तुम्हें सिर्फ ये सिखाने आते हैं कि हर किसी पर भरोसा कभी नहीं करना चाहिए। जितना तुम लोगों के सामने सीधे बनोगे मित्र, ये दुनिया तुम्हें उतना ही ज्यादा उलझाती चली जाएगी।
6: क्या आप नहीं चाहते कि आपका व्यापार छूले आसमान की ऊंचाइयां? तो अपने व्यापार को कीजिए प्रचारित सही तरीके से सही जगह पर। अब विज्ञापन दीजिए और बन जाइए हर किसी की पहली पसंद। व्यापार को मिलेगी नई पहचान, ग्राहकों की संख्या में होगा जबरदस्त इजाफा और आपका मुनाफा बस पूछिए मत। हमारे साथ जुड़िए और देखिए फर्क खुद। अपने व्यापार को दें नई उड़ान। विज्ञापन देने के लिए आज ही संपर्क करें 9816473615 पर। आप बढ़ेंगे तभी तो देश बढ़ेगा।
7: नमस्ते, मैं विकास हूँ।
8: अरे बहू, देख क्या रही हो? प्रगति खुद चलकर हमारे दरवाजे पर आई है, उसका स्वागत करो।
9: पापा जी, ये कह रहे विकास और आप कह रहे प्रगति?
10: ये जनगणना के लिए आए हैं। जनगणना से हर जन की प्रगति और विकास दोनों होता है।
7: जी हाँ, मैं पूछूंगा कुछ सवाल और आपके द्वारा दी गई सही और सटीक जानकारी से एकत्र होंगे कुछ आंकड़े, जिससे देश बनाएगा नीतियां और योजनाएं और उससे हर घर तक पहुंचेगी प्रगति और विकास।
9: अब समझी, जनगणना से हमारी प्रगति और हमारा विकास। स्वागत है
11: अंकल, मेरे लिए भी कुछ है?
7: जी हाँ, एक उज्जवल कल। देश में जनगणना 2027 शुरू हो चुकी है। जब इन्यूमरेटर आपके घर आए तो उनका स्वागत कीजिए, उन्हें सही और सटीक जानकारी दीजिए, क्योंकि आपके दिए गए सही जवाब से ही देश आगे बढ़ेगा। चलो निभाएं अपनी जिम्मेदारी, करें जनगणना में भागीदारी।
12: हमारी जनगणना, हमारा विकास।
13: और भाई शुक्ला, तेरी TB के क्या हाल हैं?
14: अरे भाई, 2-4 हफ्ते का इलाज करवाया और TB की हो गई अजामत।
15: ये लीजिए हुजूर, आपकी ये हजामत भी पूरी हो गई।
14: ये क्या, आधी दाढ़ी? भाई कर क्या रहे हो?
15: कमाल करते हैं आपकी, आधी दाढ़ी मंजूर नहीं, टीबी का आधा अधूरा इलाज मंजूर है आपको।
14: है?
15: याद रखिए, टीबी का आधा अधूरा इलाज करवाइएगा तो टीबी आपको दोबारा हो सकता है, इसलिए टीबी से मुक्ति पाने के लिए टीबी का पूरा इलाज करवाइए, फुल कोर्स। इंडिया वर्सेस टीबी, टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
14: मम्मी, पति और पत्नी के गुस्से में क्या अंतर होता है?
16: पति का गुस्सा खांसी जुकाम की तरह होता है, जो आता है चला जाता है, किसी को पता ही नहीं चलता। और पत्नी का गुस्सा कोरोना वायरस की तरह होता है, जो उसके संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति को प्रभावित करता है।
14: बात तो सही है।

0: श्रोता एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सभी ने ट्यून किया है वेड़ी गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला आप सभी सुन रहे थे। श्रोताओं अब 7:45 हो गए हैं और वक्त हो गया है वेड़ी गुंजन धर्मशाला में प्रादेशिक समाचारों का।
1: संगठन की मजबूती के लिए आपसी तालमेल व अनुशासन से कार्य करने का किया आह्वान। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए नियमित जागरूकता अभियान चलाए जाने पर दिया बल। और प्रदेश में मॉनसून की वर्षा का क्रम रुक रुक कर जारी, आगामी 24 घंटों के दौरान मंडी, कांगड़ा, शिमला व सोलन जिलों में भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला से मंडी चंडीगढ़ और कुल्लू मंडी चंडीगढ़ के बीच प्रतिदिन चलने वाली हेलीकॉप्टर सेवाओं का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ किया। मंडी चंडीगढ़ हेलीकॉप्टर सेवा केंद्र सरकार की क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान के तहत संचालित की जाएगी, जबकि कुल्लू मंडी चंडीगढ़ के लिए हेरिटेज एविएशन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा गैर आरसीएस मॉडल के अंतर्गत इस सेवा का संचालन किया जाएगा। ये सेवाएं नवनिर्मित कंगनीधार हेलीपोर्ट से संचालित होंगी। मंडी चंडीगढ़ सेक्टर के लिए किराया 3,500 रुपये निर्धारित किया गया है, जबकि कुल्लू मंडी चंडीगढ़ के लिए 8,500 रुपये किराया तय किया गया है। इस अवसर पर मंडी और कुल्लू जिलों के लोगों को बधाई देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के दूर दराज और पहाड़ी क्षेत्रों में हवाई संपर्क को सुदृढ़ बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि हेलीकॉप्टर सेवाओं की शुरुआत के साथ हवाई संपर्क के क्षेत्र में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन सेवाओं से यात्रा समय में उल्लेखनीय कमी आएगी, आपातकालीन सेवाओं की क्षमता मजबूत होगी और पर्यटन को बढ़ावा मिलने सहित स्थानीय निवासियों व पर्यटकों को बेहतर सुविधा मिलेगी।
2: मंडी वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मंडी के लिए ये एक ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि मंडी से चंडीगढ़ की डायरेक्ट फ्लाइट आपको हेलीकॉप्टर के रूप में उपलब्ध करवाई जा रही है। निश्चित रूप से एयर कनेक्टिविटी से जोड़ना प्रदेश के विकास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। हमारा ये प्रयास है कि सभी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में हमारे हेलीपोर्ट्स बने। अभी ये डेली फ्लाइट्स होगी, धीरे धीरे कुछ समय में 5-7 सालों में आप देखेंगे कि हिमाचल प्रदेश के ऊपर हेलीकॉप्टर्स उड़ा करेंगे और आपको आए दिन 2-2 घंटे बाद आपको फ्लाइट की सर्विसेज उपलब्ध होगी।
1: पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सुक्खू सरकार पर आरोप लगाया है कि सरकार जनता की सुविधा से ज्यादा अपनी राजनीति को प्राथमिकता दे रही है। एक बयान में उन्होंने कहा कि मंडी जिले के द्रंग विधानसभा क्षेत्र के देवरी में स्कूल का बहुमंजिला भवन पिछले 7 महीनों से तैयार है, लेकिन वहां पढ़ने वाले सैकड़ों बच्चे आज भी 2 नालों के बीच किराए के 4 कमरों में 7 कक्षाएं लगाने को मजबूर हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि इस स्कूल भवन पर शिक्षा मंत्री के नाम की उद्घाटन पट्टिका भी लग चुकी थी, जिसे उखड़वा दिया गया है। नेता प्रतिपक्ष ने तंज कसते हुए कहा कि व्यवस्था परिवर्तन की सरकार में एक शिक्षा मंत्री स्कूल भवन का भी उद्घाटन नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने सरकार पर विपक्षी विधायकों की अनदेखी करने और प्रदेश में 2000 से ज्यादा स्कूलों को बंद करने का भी आरोप लगाया। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल ने पार्टी नेताओं व कार्यकर्ताओं से वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव और संगठन की मजबूती के लिए आपसी तालमेल व अनुशासन से कार्य करने का आह्वान किया है। रजनी पाटिल की अध्यक्षता में शिमला में कांग्रेस की 3 दिनों तक मंथन बैठक आयोजित की गई, जिसमें संगठन को मजबूत बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। उन्होंने प्रदेश में संगठन विस्तार अभियान व पार्टी के सदस्यता अभियान को तय समय सीमा में पूरा करने को भी कहा है।
3: लोगों के कुछ गिले शिकवे थे, हमारी बात नहीं मानी जाती है, जो भी कुछ है उसको हम सब सीएम के सामने बैठ के सबसे बात करवाई, सब मंत्रियों को बोला तो वो हमने सबसे बात। अभी धीरे धीरे हमारे वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी, हमारे सब कमिटीज बन रही है और एक बार पूरा हो जाएगा तो हम सरकार के साथ उसका तालमेल रखेंगे और सरकार के साथ मिलकर सब काम करेंगे। अनुशासन तो संगठन में होना चाहिए।
1: रजनी पाटिल ने कहा कि कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में एक कनेक्ट सेंटर स्थापित किया गया है, जो सीधे AICC को रिपोर्ट करेगा। राजस्व व बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने आज किन्नौर जिला में कल्पा विकास खंड की सांगला घाटी के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय शोंग में निर्मित बास्केटबॉल कोर्ट और आंगनबाड़ी केंद्र बानो शोंग का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार गुणात्मक शिक्षा के सुधार के लिए व्यापक कदम उठा रही है और राज्य में 150 सरकारी स्कूलों में CBSE पैटर्न के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जा रही है। नगर व ग्राम नियोजन मंत्री राजेश धर्माणी ने हिमुडा को प्रदेश में कार्यान्वित की जा रही और प्रस्तावित सभी विकास परियोजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। शिमला में आज हिमुडा के निदेशक मंडल की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने अधिकारियों को सभी परियोजनाओं को समयबद्ध पूरा करने को कहा ताकि लोगों को गुणवत्तापूर्ण आवास और बेहतर शहरी सुविधाओं का लाभ जल्द सुनिश्चित किया जा सके। राजेश धर्माणी ने कहा कि सुनियोजित भूमि अधिग्रहण से आने वाले वर्षों में हिमुडा की योजनाबद्ध विकास परियोजनाओं को और मजबूती मिलेगी। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, xhandle@AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। लोक निर्माण व शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने युवाओं में नशे की बढ़ती प्रवृत्ति पर चिंता जताई है। उन्होंने आज तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा के जन्म दिवस के अवसर पर छोटा शिमला स्थित तिब्बतीयन स्कूल में आयोजित एक कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। विक्रमादित्य सिंह ने शिक्षकों से विद्यार्थियों को नशे जैसी बुराई से दूर रखने के लिए नियमित तौर पर जागरूकता अभियान चलाने का आग्रह किया। लोक निर्माण मंत्री ने कहा कि प्रदेश के विकास के लिए सड़कों और आधारभूत ढांचे का निर्माण आवश्यक है, लेकिन कोई भी विकास कार्य पर्यावरण की कीमत पर नहीं होना चाहिए। इस बीच विक्रमादित्य सिंह ने शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के बसंतपुर का दौरा किया और स्थानीय लोगों की सभी उचित मांगों को चरणबद्ध ढंग से पूरा करने का आश्वासन दिया। प्रदेश भाजपा के मुख्य प्रवक्ता राजेंद्र राणा ने कहा है कि हमीरपुर जिला परिषद में भाजपा समर्थित सदस्यों की प्रचंड जीत प्रदेश की कांग्रेस सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ जनता के आक्रोश का स्पष्ट संदेश है। एक बयान में उन्होंने कहा कि हमीरपुर जिला परिषद के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का चयन पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से विचार विमर्श, आपसी तालमेल और सर्वसम्मति से लिया गया है। राजेंद्र राणा ने कहा कि भाजपा ने एक बार फिर ये सिद्ध कर दिया है कि संगठन सर्वोपरि की भावना के साथ कार्य करते हुए प्रत्येक निर्णय सामूहिक सहमति और संगठनात्मक अनुशासन के आधार पर लेता है। उन्होंने कहा कि जिला परिषद चुनावों का ये परिणाम केवल एक ट्रेलर है, जबकि वास्तविक तस्वीर वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में सामने आएगी। चंबा जिला के जनजातीय क्षेत्र पांगी घाटी की शौर पंचायत में पिछले 2 महीनों से रसोई गैस सिलेंडरों की आपूर्ति ठप है, जिससे लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। शौर पंचायत के उप प्रधान निहाल सिंह भारद्वाज ने पांगी प्रशासन से पंचायत में जल्द से जल्द रसोई गैस सिलेंडर की आपूर्ति करने की मांग की है ताकि लोगों को राहत मिल सके।
4: मैं निहाल सिंह भारद्वाज जो प्रधान ग्राम पंचायत शाहौर तहसील पांगी, तो हमारे ग्राम पंचायत शाहौर में 2 महीनों से सिलेंडर की आपूर्ति नहीं हो पा रही, जिसके कारण घाटी में लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा। मेरा पांगी प्रशासन और हिमाचल सरकार से मेरा दो हाथ जोड़कर निवेदन है कि घाटी में सिलेंडर की आपूर्ति की जाए ताकि लोगों को असुविधा का सामना न करना पड़े।
1: प्रदेश में मानसून की वर्षा का क्रम रुक रुक कर जारी है। बीते 24 घंटों के दौरान राज्य के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम जबकि कई स्थानों पर भारी वर्षा दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के दौरान कांगड़ा, मंडी, शिमला व सोलन जिले में भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जबकि बिलासपुर, हमीरपुर और कुल्लू जिले के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए संबंधित जिला प्रशासन ने लोगों को नदी नालों, भूस्खलन संभावित क्षेत्रों और ऊंचाई वाले इलाकों में न जाने की सलाह दी है। प्रदेश भाजपा सह प्रभारी संजय टंडन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश विशेषकर कांगड़ा संसदीय क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए अभूतपूर्व सहयोग दिया है। वे आज धर्मशाला में पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान के तहत आयोजित प्रशिक्षण वर्ग को संबोधित कर रहे थे। संजय टंडन ने कहा कि केंद्र सरकार ने हिमाचल को विकास, स्वास्थ्य, सड़क, शिक्षा और आधारभूत ढांचे के क्षेत्र में ऐतिहासिक सौगातें दी हैं, लेकिन प्रदेश की वर्तमान कांग्रेस सरकार इन संसाधनों का प्रभावी उपयोग करने में पूरी तरह विफल रही है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंडी चंडीगढ़ और कुल्लू मंडी चंडीगढ़ के बीच प्रतिदिन चलने वाली हेलीकॉप्टर सेवाओं का किया शुभारंभ। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का आरोप, जनता की सुविधा से ज्यादा अपनी राजनीति को प्राथमिकता दे रही सुक्खू सरकार। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल ने पार्टी कार्यकर्ताओं से संगठन की मजबूती के लिए आपसी तालमेल व अनुशासन से कार्य करने का किया आह्वान। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए नियमित जागरूकता अभियान चलाए जाने पर दिया बल। और प्रदेश में मॉनसून की वर्षा का क्रम रुक रुक कर जारी, आगामी 24 घंटों के दौरान मंडी, कांगड़ा, शिमला व सोलन जिले में भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।
0: तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ना कि जो 24 घंटे के दौरान जो है हमारे कांगड़ा में भी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जो है वो जारी है। जी बिल्कुल। तो आप सभी भी जो है वो खास ख्याल रखें, आप सभी भी जो है वो खास ध्यान ज़रूर रखें श्रोताओं। और जाते जाते तो बस यही कहना चाहूँगा मैं आप सभी को कि हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और वेड़ी गुंजन को यूँ सुनते रहिए, सुनाते रहिए, माँ बाप की सेवा करते रहिए और साथ ही साथ किसी का भी बुरा जो है वो मत कीजिए श्रोतों। अपनी ओर से हर किसी का अच्छा करने की कोशिश जो है वो ज़रूर कीजिए, हेल्प करने की कोशिश जो है वो ज़रूर कीजिए, कभी किसी का दिल जो है वो ना दुखाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं यानी सचिन कपूर ले लेता हूँ आपसे इजाज़त। नमस्ते धर्मशाला।

0: बोलो भाई।
1: बस बताने आया हूँ, स्वच्छता की परीक्षा शुरू हो चुकी है, तैयार हो ना।
2: स्वच्छ सर्वेक्षण तो अभी कर लीजिए ना, आइए।
3: हमारा घर स्वच्छता की हर परीक्षा में अव्वल ही आएगा, और तो और हम सब शौचालय का भी इस्तेमाल करते हैं।
1: पर इस परीक्षा में तो आप सब फेल हो गए।
2: फेल?
1: स्वच्छता की असली परीक्षा सिर्फ अपने अपने घरों की नहीं, हमारे पूरे गांव की है। आखिर गांव भी तो हम सबका घर है। क्यों? अब तो गांव खुले में शौच मुक्त भी है। मिलके साफ रखेंगे तो गांव को मिलेगा फर्स्ट क्लास। तो शुरू कर दो परीक्षा की तैयारी,

0: अरे देवा, बड़ा झटका लगा है।
1: तुम्हारे भी अकाउंट से 5 लाख जाते तो ऐसा ही होता।
2: मेरे अकाउंट से 5 लाख?
1: पाटिल फोकस।
2: सॉरी,
1: ये पढ़ो।
3: डियर यूजर, योर बैंक अकाउंट विल ब्लॉक टुडे, प्लीज इमीडिएटली अपडेट KYC। लिंक भी है।
4: अरे मैडम, ये बैंक का ऐप लगता है।
1: KYC अपडेट करने के लिए ऐप डाउनलोड? स्ट्रेंज, दिखाओ। यहाँ इन्होंने बैंक का समझ के फेक ऐप डाउनलोड किया, यूजर आईडी, पासवर्ड, ATM पिन, अकाउंट नंबर डाला। और
2: वहाँ फ्रॉडस्टर्स को मिल गया एंट्री, इधर डिटेल्स उधर।
1: जीनियस पाटिल,
2: थैंक यू। पर मैडम, ये OTP?
1: वो भी ऐप से ऑटो फॉरवर्ड हो जाता है।
2: ओह माय फ्रॉड।
1: तुम तो समझ गए, और आप अनजान लिंक से कोई ऐप डाउनलोड ना करें। अक्सर फ्रॉडस्टर्स नकली बैंक ऑफिशियल्स बनके ऐप्स डाउनलोड करवाते हैं और फोन से आपके बैंक के सारे डिटेल्स कॉपी करके अकाउंट से पैसा चुरा लेते हैं। बैंकिंग ऐप्स सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट से ही डाउनलोड करें। सतर्क रहें, आइए मिलकर चीट्स को बीट करें।
5: तुम लोगों को खोने से डरते हो मित्र, कभी ये भी सोचो कि कहीं इस चक्कर में तुम खुद को तो नहीं खो रहे। जो तुम्हारी खामोशी को नहीं समझ सकता, वो तुम्हारे शब्दों को भी कभी नहीं समझ पाएगा। अकेले चलने का साहस रखो मित्र, क्योंकि यहाँ सलाह देने वाले हजारों मिलेंगे पर साथ देने वाला कोई नहीं। जिंदगी में कुछ लोग तुम्हें सिर्फ ये सिखाने आते हैं कि हर किसी पर भरोसा कभी नहीं करना चाहिए। जितना तुम लोगों के सामने सीधे बनोगे मित्र, ये दुनिया तुम्हें उतना ही ज्यादा उलझाती चली जाएगी।
6: आप नहीं चाहते कि आपका व्यापार छूले आसमान की ऊंचाइयां, तो अपने व्यापार को कीजिए प्रचारित सही तरीके से सही जगह पर। अब विज्ञापन दीजिए और बन जाइए हर किसी की पहली पसंद। व्यापार को मिलेगी नई पहचान, ग्राहकों की संख्या में होगा जबरदस्त इजाफा और आपका मुनाफा बस पूछिए मत। हमारे साथ जुड़िए और देखिए फर्क खुद। अपने व्यापार को दें नई उड़ान। विज्ञापन देने के लिए आज ही संपर्क करें 9816473615 पर। आप बढ़ेंगे तभी तो देश बढ़ेगा।
7: नमस्ते, मैं विकास हूँ।
8: अरे बहू, देख क्या रही हो, प्रगति खुद चलकर हमारे दरवाजे पर आई है, उसका स्वागत करो।
9: पापा जी, ये कह रहे विकास और आप कह रहे प्रगति?
7: ये जनगणना के लिए आए हैं। जनगणना से हर जन की प्रगति और विकास दोनों होता है।
10: जी हाँ, मैं पूछूंगा कुछ सवाल और आपके द्वारा दी गई सही और सटीक जानकारी से एकत्र होंगे कुछ आंकड़े, जिससे देश बनाएगा नीतियां और योजनाएं और उससे हर घर तक पहुंचेगी प्रगति और विकास।
9: अब समझी, जनगणना से हमारी प्रगति और हमारा विकास। स्वागत है
11: अंकल, मेरे लिए भी बचे?
10: जी हाँ, एक उज्जवल कल। देश में जनगणना 2027 शुरू हो चुकी है। जब इन्यूमरेटर आपके घर आए तो उनका स्वागत कीजिए, उन्हें सही और सटीक जानकारी दीजिए, क्योंकि आपके दिए गए सही जवाब से ही देश आगे बढ़ेगा। चलो निभाएं अपनी जिम्मेदारी, करें जनगणना में भागीदारी।
12: हमारी जनगणना, हमारा विकास।
13: और भाई शुक्ला, तेरी TB के क्या हाल हैं?
14: अरे भाई, 2-4 हफ्ते का इलाज करवाया और TB की हो गई अजामत।
15: ये लीजिए हुजूर, आपकी ये हजामत भी पूरी हो गई।
14: ये क्या, आधी दाढ़ी? भाई कर क्या रहे हो?
15: कमाल करते हैं आपकी, आधी दाढ़ी मंजूर नहीं, TB का आधा अधूरा इलाज मंजूर है आपको।
14: है?
15: याद रखिए, TB का आधा अधूरा इलाज करवाइएगा तो TB आपको दोबारा हो सकता है, इसलिए TB से मुक्ति पाने के लिए TB का पूरा इलाज करवाइए, फुल कोर्स। इंडिया वर्सेस TB, TB हारेगा, देश जीतेगा।
14: मम्मी, पति और पत्नी के गुस्से में क्या अंतर होता है?
16: पति का गुस्सा खांसी जुकाम की तरह होता है, जो आता है चला जाता है, किसी को पता ही नहीं चलता, और पत्नी का गुस्सा कोरोना वायरस की तरह होता है, जो उसके संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति को प्रभावित करता है।
14: बात तो सही है।

0: बोलो भाई।
1: बस बताने आया हूँ, स्वच्छता की परीक्षा शुरू हो चुकी है, तैयार हो ना।
2: स्वच्छ सर्वेक्षण तो अभी कर लीजिए ना, आइए।
3: हमारा घर स्वच्छता की हर परीक्षा में अव्वल ही आएगा, और तो और हम सब शौचालय का भी इस्तेमाल करते हैं।
1: पर इस परीक्षा में तो आप सब फेल हो गए।
2: फेल?
1: स्वच्छता की असली परीक्षा सिर्फ अपने अपने घरों की नहीं, हमारे पूरे गाँव की है। आखिर गाँव भी तो हम सबका घर है। क्यों, अब तो गाँव खुले में शौच मुक्त भी है। मिलके साफ रखेंगे तो गांव को मिलेगा फर्स्ट क्लास। तो शुरू कर दो परीक्षा की तैयारी,

0: अरे देवा, बड़ा झटका लगा है।
1: तुम्हारे भी अकाउंट से 5 लाख जाते तो ऐसा ही होता।
2: मेरे अकाउंट से 5 लाख?
1: पाटिल फोकस।
2: सॉरी,
1: ये पढ़ो।
3: डियर यूजर, योर बैंक अकाउंट विल ब्लॉक टुडे, प्लीज इमीडिएटली अपडेट KYC। लिंक भी है।
4: अरे मैडम, ये बैंक का ऐप लगता है।
1: KYC अपडेट करने के लिए ऐप डाउनलोड? स्ट्रेंज, दिखाओ। यहाँ इन्होंने बैंक का समझ के फेक ऐप डाउनलोड किया, यूजर आईडी, पासवर्ड, ATM पिन, अकाउंट नंबर डाला।
3: और वहाँ फ्रॉडस्टर्स को मिल गया एंट्री, इधर डिटेल्स उधर।
1: जीनियस पाटिल,
3: थैंक यू। पर मैडम, ये OTP?
1: वो भी ऐप से ऑटो फॉरवर्ड हो जाता है।
3: ओह माय फ्रॉड।
1: तुम तो समझ गए, और आप अनजान लिंक से कोई ऐप डाउनलोड ना करें। अक्सर फ्रॉडस्टर्स नकली बैंक ऑफिशियल्स बनके ऐप्स डाउनलोड करवाते हैं और फोन से आपके बैंक के सारे डिटेल्स कॉपी करके अकाउंट से पैसा चुरा लेते हैं। बैंकिंग ऐप्स सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट से ही डाउनलोड करें। सतर्क रहें, आइए मिलकर चीट्स को बीट करें।
5: तुम लोगों को खोने से डरते हो मित्र, कभी ये भी सोचो कि कहीं इस चक्कर में तुम खुद को तो नहीं खो रहे। जो तुम्हारी खामोशी को नहीं समझ सकता, वो तुम्हारे शब्दों को भी कभी नहीं समझ पाएगा। अकेले चलने का साहस रखो मित्र, क्योंकि यहां सलाह देने वाले हजारों मिलेंगे पर साथ देने वाला कोई नहीं। जिंदगी में कुछ लोग तुम्हें सिर्फ ये सिखाने आते हैं कि हर किसी पर भरोसा कभी नहीं करना चाहिए। जितना तुम लोगों के सामने सीधे बनोगे मित्र, ये दुनिया तुम्हें उतना ही ज्यादा उलझाती चली जाएगी।
6: क्या आप नहीं चाहते कि आपका व्यापार छूले आसमान की ऊंचाइयां? तो अपने व्यापार को कीजिए प्रचारित सही तरीके से सही जगह पर। अब विज्ञापन दीजिए और बन जाइए हर किसी की पहली पसंद। व्यापार को मिलेगी नई पहचान, ग्राहकों की संख्या में होगा जबरदस्त इजाफा और आपका मुनाफा बस पूछिए मत। हमारे साथ जुड़िए और देखिए फर्क खुद। अपने व्यापार को दें नई उड़ान। विज्ञापन देने के लिए आज ही संपर्क करें 9816473615 पर। आप बढ़ेंगे तभी तो देश बढ़ेगा।
7: नमस्ते, मैं विकास हूँ।
8: अरे बहू, देख क्या रही हो, प्रगति खुद चलकर हमारे दरवाजे पर आई है, उसका स्वागत करो।
9: पापा जी, ये कह रहे विकास और आप कह रहे प्रगति?
7: ये जनगणना के लिए आए हैं। जनगणना से हर जन की प्रगति और विकास दोनों होता है। जी हाँ, मैं पूछूंगा कुछ सवाल और आपके द्वारा दी गई सही और सटीक जानकारी से एकत्र होंगे कुछ आंकड़े, जिससे देश बनाएगा नीतियां और योजनाएं और उससे हर घर तक पहुंचेगी प्रगति और विकास।
9: अब समझी, जनगणना से हमारी प्रगति और हमारा विकास। स्वागत है
10: अंकल, मेरे लिए भी बचे?
7: जी हाँ, एक उज्जवल कल। देश में जनगणना 2027 शुरू हो चुकी है। जब इन्यूमरेटर आपके घर आए तो उनका स्वागत कीजिए, उन्हें सही और सटीक जानकारी दीजिए, क्योंकि आपके दिए गए सही जवाब से ही देश आगे बढ़ेगा। चलो निभाएं अपनी जिम्मेदारी, करें जनगणना में भागीदारी।
11: हमारी जनगणना, हमारा विकास।
12: और भाई शुक्ला, तेरी TB के क्या हाल हैं?
13: अरे भाई, 2-4 हफ्ते का इलाज करवाया और TB की हो गई अजामत।
14: ये लीजिए हुजूर, आपकी ये हजामत भी पूरी हो गई।
13: ये क्या, आधी दाढ़ी? भाई कर क्या रहे हो?
14: कमाल करते हैं आप, आधी दाढ़ी मंजूर नहीं, TB का आधा अधूरा इलाज मंजूर है आपको।
13: है?
14: याद रखिए, TB का आधा अधूरा इलाज करवाइएगा तो TB आपको दोबारा हो सकता है, इसलिए TB से मुक्ति पाने के लिए TB का पूरा इलाज करवाइए, फुल कोर्स। इंडिया वर्सेस TB, TB हारेगा, देश जीतेगा।
13: मम्मी, पति और पत्नी के गुस्से में क्या अंतर होता है?
15: पति का गुस्सा खांसी जुकाम की तरह होता है, जो आता है चला जाता है, किसी को पता ही नहीं चलता। और पत्नी का गुस्सा कोरोना वायरस की तरह होता है, जो उसके संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति को प्रभावित करता है।
13: बात तो सही है।

सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने अपने होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो श्रोताओं, करते हैं अपने कार्यक्रम की शुरुआत इस प्यारे से गीत के साथ। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

91.2 MHz पर ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत अपनी रेडियो शशि के साथ। तो श्रोताओं, कार्यक्रम का नाम है गीत सुहाने नए पुराने। तो फिर से बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला, और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने।

ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, आप सभी ने फोन किया है अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और इस वक्त आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर। ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

91.2 MHz पर। यह आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

0: बोलो भाई।
1: बस बताने आया हूँ, स्वच्छता की परीक्षा शुरू हो चुकी है, तैयार हो ना?
2: स्वच्छ सर्वेक्षण तो अभी कर लीजिए ना, आइए।
3: हमारा घर स्वच्छता की हर परीक्षा में अव्वल ही आएगा, और तो और हम सब शौचालय का भी इस्तेमाल करते हैं।
1: पर इस परीक्षा में तो आप सब फेल हो गए।
2: फेल?
1: स्वच्छता की असली परीक्षा सिर्फ अपने अपने घरों की नहीं, हमारे पूरे गाँव की है। आखिर गाँव भी तो हम सबका घर है, क्यों? अब तो गाँव खुले में शौच मुक्त भी है, मिलके साफ रखेंगे तो गांव को मिलेगा फर्स्ट क्लास। तो शुरू कर दो परीक्षा की तैयारी,

0: अरे देवा, बड़ा झटका लगा है।
1: तुम्हारे भी अकाउंट से 5 लाख जाते तो ऐसा ही होता।
2: मेरे अकाउंट से 5 लाख?
1: पाटिल फोकस।
2: सॉरी,
1: ये पढ़ो।
3: डियर यूजर, योर बैंक अकाउंट विल ब्लॉक टुडे, प्लीज इमीडिएटली अपडेट KYC। लिंक भी है।
4: अरे मैडम, ये बैंक का ऐप लगता है।
1: KYC अपडेट करने के लिए ऐप डाउनलोड? स्ट्रेंज, दिखाओ। यहाँ इन्होंने बैंक का समझ के फेक ऐप डाउनलोड किया, यूजर आईडी, पासवर्ड, ATM पिन, अकाउंट नंबर डाला। और
2: वहाँ फ्रॉडस्टर्स को मिल गया एंट्री, इधर डिटेल्स उधर।
1: जीनियस पाटिल,
2: थैंक यू। पर मैडम, ये OTP?
1: वो भी ऐप से ऑटो फॉरवर्ड हो जाता है।
2: ओह माय फ्रॉड।
1: तुम तो समझ गए, और आप अनजान लिंक से कोई ऐप डाउनलोड ना करें। अक्सर फ्रॉडस्टर्स नकली बैंक ऑफिशियल्स बनके ऐप्स डाउनलोड करवाते हैं और फोन से आपके बैंक के सारे डिटेल्स कॉपी करके अकाउंट से पैसा चुरा लेते हैं। बैंकिंग ऐप्स सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट से ही डाउनलोड करें। सतर्क रहें, आइए मिलकर चीट्स को बीट करें।
5: तुम लोगों को खोने से डरते हो मित्र, कभी ये भी सोचो कि कहीं इस चक्कर में तुम खुद को तो नहीं खो रहे। जो तुम्हारी खामोशी को नहीं समझ सकता, वो तुम्हारे शब्दों को भी कभी नहीं समझ पाएगा। अकेले चलने का साहस रखो मित्र, क्योंकि यहां सलाह देने वाले हजारों मिलेंगे पर साथ देने वाला कोई नहीं। जिंदगी में कुछ लोग तुम्हें सिर्फ ये सिखाने आते हैं कि हर किसी पर भरोसा कभी नहीं करना चाहिए। जितना तुम लोगों के सामने सीधे बनोगे मित्र, ये दुनिया तुम्हें उतना ही ज्यादा उलझाती चली जाएगी।
6: क्या आप नहीं चाहते कि आपका व्यापार छूले आसमान की ऊंचाइयां? तो अपने व्यापार को कीजिए प्रचारित सही तरीके से सही जगह पर। अब विज्ञापन दीजिए और बन जाइए हर किसी की पहली पसंद। व्यापार को मिलेगी नई पहचान, ग्राहकों की संख्या में होगा जबरदस्त इजाफा और आपका मुनाफा बस पूछिए मत। हमारे साथ जुड़िए और देखिए फर्क खुद। अपने व्यापार को दें नई उड़ान। विज्ञापन देने के लिए आज ही संपर्क करें 9816473615 पर। आप बढ़ेंगे तभी तो देश बढ़ेगा।
7: नमस्ते, मैं विकास हूँ।
8: अरे बहू, देख क्या रही हो, प्रगति खुद चलकर हमारे दरवाजे पर आई है, उसका स्वागत करो।
9: पापा जी, ये कह रहे विकास और आप कह रहे प्रगति?
10: ये जनगणना के लिए आए हैं। जनगणना से हर जन की प्रगति और विकास दोनों होता है।
7: जी हाँ, मैं पूछूंगा कुछ सवाल और आपके द्वारा दी गई सही और सटीक जानकारी से एकत्र होंगे कुछ आंकड़े, जिससे देश बनाएगा नीतियां और योजनाएं और उससे हर घर तक पहुंचेगी प्रगति और विकास।
9: अब समझी, जनगणना से हमारी प्रगति और हमारा विकास। स्वागत है
11: अंकल, मेरे लिए भी बचे?
7: जी हाँ, एक उज्जवल कल। देश में जनगणना 2027 शुरू हो चुकी है। जब इन्यूमरेटर आपके घर आए तो उनका स्वागत कीजिए, उन्हें सही और सटीक जानकारी दीजिए, क्योंकि आपके दिए गए सही जवाब से ही देश आगे बढ़ेगा। चलो निभाएं अपनी जिम्मेदारी, करें जनगणना में भागीदारी।
12: हमारी जनगणना, हमारा विकास।
13: और भाई शुक्ला, तेरी टीबी के क्या हाल हैं?
14: अरे भाई, 2-4 हफ्ते का इलाज करवाया और टीबी की हो गई अजामत।
15: ये लीजिए हुजूर, आपकी ये हजामत भी पूरी हो गई।
14: ये क्या, आधी दाढ़ी? भाई कर क्या रहे हो?
15: कमाल करते हैं आप, आधी दाढ़ी मंजूर नहीं, टीबी का आधा अधूरा इलाज मंजूर है आपको।
14: है?
15: हाँ? याद रखिए, टीबी का आधा अधूरा इलाज करवाइएगा तो टीबी आपको दोबारा हो सकता है, इसलिए टीबी से मुक्ति पाने के लिए टीबी का पूरा इलाज करवाइए, फुल कोर्स। इंडिया वर्सेस टीबी, टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
14: मम्मी, पति और पत्नी के गुस्से में क्या अंतर होता है?
16: पति का गुस्सा खांसी जुकाम की तरह होता है, जो आता है चला जाता है, किसी को पता ही नहीं चलता। और पत्नी का गुस्सा कोरोना वायरस की तरह होता है, जो उसके संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति को प्रभावित करता है।
14: बात तो सही है।

दुनिया के किसी भी कोने में रहा, तुमसे कितना भी फासला रहा, यकीन मानो बचपन से आज तक हर पल हर मोड़ तुम्हें साथ पाया। समझ नहीं आता इस रिश्ते को क्या कहूं यार, तुम कहो तो आज इसे एक नाम दूं,

91.2 MHz पर हम बोल रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला से, और श्रोताओं कार्यक्रम आप सभी इस वक्त सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने।

भी हो धन लुटने का डर है, घबराई हो लुटने का डर है, घबराई हो चिंतित थी, शर्माई।

92.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। तो आइए श्रोताओं, सुनते हैं सुंदरकांड। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।